आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

भगवान बुद्ध उत्तर देलखिन, सुखी रहब बड़ सोझ अछि, बड़ सरल अछि, कामना के त्याग कऽ दिय अहाँ सुखी रहब। सुमंतक पुछलकनि, प्रभु कामना के त्याग कऽ देने तो कर्मों के त्याग भ जतेक, आ जँ कर्मे नहि कयल जतेक तो संसार यात्रा कोना पूर्ण हेतैक। भगवान बुद्ध ओकर शंकाक समाधान करैत कहलखिन, कामनाक त्यागक अर्थ कर्मक त्याग नहि थिक। कामनाक त्याग भेल महत्वाकांक्षा, लुलुपता आ संग्रह करक प्रवृत्तिक त्याग। कर्म सँ विरति कोना संभव अछि? संसारी जीवधारीकेँ कर्म तऽ करहि पड़तैक, किन्तु ओ कर्म कामना रहित हेबाक चाही। जतबा सँ संसार यात्रा सुगमतापूर्वक चलैत रहे ततबाक लेल प्रयास करक चाही, ताहिसँ अधिक लेल नहि। भगवान बुद्ध

0: कोनो नव गप नहीं कहलखिन। श्रीमद भगवत गीता निष्काम कर्मक आदेश दे छे। कर्म आ फल प्राप्तिक सोझ संबंध छे। निष्काम कर्म के निहार कर्म फल सँ सर्वथा निर्लिप्त रहे छे आ तैं सुखी सेहो रहे छे। जखने कर्म संगे कामना के योग भ जाय छे तखने दुखक आरंभ सेहो भ जाय छे। सुखक आधार संतोष के मानल गेले छे। संतोषी व्यक्ति सुखी होय छे। संतोष रहित व्यक्ति कतबो संपत्तिक स्वामी क्याक न भ जाओ सुख ओकरा लेल आकाश कुसुम सदृश मनल रहे छे। तैं कहल गेले ये जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। महात्मा कबीर जखन कहे छथि साई उतना दीजिए जा में कुटुंब समाये, तो वो प्रकारांतरे श्रीमद भगवत गीता आ भगवान तथागतिक उक्ति के दोहरबे छथि। महान दार्शनिक गेराल्ट कहने छथि संतोष निर्धन व्यक्ति के निजी बैंक थिकैक जाहि में प्रचुर धन सतत भरल रहै छैक। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अहुना जब विचार कयल जाय जे संतोषी निर्धन आ असंतुष्ट धनवान में वास्तविक धनवान के, तो उत्तर हैत संतोषी निर्धन। कोना धनवान के जतेक होय छैक ओकर लालसा ओहिना बढ़ले जाय छैक। ओ स्वयं के सतत अभावग्रस्त पबै अछि। संपन्नताक मध्य ओ विपन्नता सँ आक्रांत रहै अछि। दोसर दिस निर्धन व्यक्ति के धनक कोनो लालसे नहि होय छैक। ओकरा जतबा छैक ताहि सँ तृप्ति छैक। एहि प्रसंग में महात्मा सुकरातक उक्ति विचारणीय अछि। एक बेर महात्मा सुकरात अपना शिष्य लोकनि सँ कहने रहथि संतोष ईश्वर प्रदत्त संपदा थिक आ तृष्णा अज्ञानक असुर द्वारा थोपल गेल निर्धनता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुनिए किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है कम लागत में मत्स्य पालन। जानकारी दे रहे हैं गोपी चंद्र झा।
1: श्रोता लोकन सुप्रभात। आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। कम लागत में माछ पालन शुरू करबाक लेल पारंपरिक पोखरि पद्धति सबसे सस्ता और किफायती मानल जाइत अछि। कम लागत में माछ पालनक मुख्य तरीका उचित माछ प्रजाति के चयन, कम खर्च और बेसी मुनाफा के लेल रोहू, कतला और ग्रास कार्प जेहन माछ पोसी। ई स्थानीय बाजार में आसानी से बिकैत अछि और एकर देखभाल आसान अछि। कम लागत में माछ पालन शुरू करबाक लेल बायोफ्लॉक तकनीक या कम जगह वाला छोटगर पोखरिक उपयोग सबसे निक विकल्प अछि। कम लागत में माछ पालनक तरीका बायोफ्लॉक तकनीक, एहि में कम जल और छोटगर टैंक में बेसी माछ पोसल जाइत अछि। एहि में अलग से महग जलक फिल्टरक आवश्यकता नहीं होइत अछि। कम खर्च वाला माछ कतला, रोहू और मृगाला जेहन माछ पोसी। रोहू माछ 8 से 10 मास में तैयार भ जाइत अछि और बाजार में एकर भारी मांग रहित अछि। धानक संग माछ पोषण। धानक खेत में जल जमा कऽ कम खर्च में माछ पोषण कयल जा सकैत अछि, जहि कारणे एकटा खेत से दोहरा मुनाफा भेटैत अछि। टैंक रिसर्कुलेटिंग।

0: एकबाग कल्चर सिस्टमक द्वारा कयल जाइत अछि। एहिमे पैघ पोखरिक आवश्यकता नहि होइत अछि, परञ्च घरक छत, आँगन या छोटगर प्लॉट पर सिंथेटिक या सीमेंटक गोल टैंक राखि कऽ कम जल आओर कम खर्च आओर कम जलमे बेसी माछ पोसल जा सकैत अछि। उचित तरीका आओर तकनीकक चुनाव। बायोफ्लाग तकनीक, एहि जलमे मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया तैयार कयल जाइत अछि जे माछक मल के प्रोटीन युक्त भोजनमे बदलि दैत अछि। एहिमे जल बेर बेर बदलै के आवश्यकता नहि पड़ैत अछि। टैंकक आकार, अहाँ 10-15 फीट व्यास वाला टर्पोलिन टैंक या सीमेंटक टैंक के उपयोग कऽ सकै छी। ऑक्सीजन पंप, टैंक में लगातार ऑक्सीजन सप्लाईक लेल एयरेटर पंप लगेने आवश्यक अछि, ताकि माछ के सांस लै में कोनो प्रकार के दिक्कत नहि हुए। कम जगह और टैंक सिस्टमक लेल तिलापिया, पंगेशियस, सिंघी या मांगुर या कॉमन कार्प उपयुक्त अछि, जे कम ऑक्सीजन और कम जगह में तेजी से बैठ सकैत अछि। तेजी से बदलत समय में जहाँ खेती के लगातार लागत बढ़ रहल अछि, ओहिठाम मछली पालन किसानक लेल कम खर्च में बेसी मुनाफा दे वाला विकल्प बनि कऽ उभरि रहल अछि। माछ मात्र आमदनी के जरिया नहि अछि, परंतु स्वास्थ्यक लेल बेहतरीन प्रोटीन स्रोत अछि। अभी वाला समय में जलीय संसाधन के जरिए खाद्य उत्पादन भविष्यक सबसे पैघ जरूरत होयत। भारत में इंडियन मेजर कार्प्स के सबसे बेसी पैदावार होयत अछि, जाहिमे कतला, रोहू और मृगल प्रमुख अछि। एहि माछ के एक संग पोसे के तकनीक के पॉलीकल्चर कहै छी, जैसे उत्पादन बढ़ैत अछि और किसान के नीक आर्थिक लाभ भेटैत अछि। कम काटा या बिना काटा वाला माछ में पंगास जेहन विकल्प बेसी लोकप्रिय भऽ रहल अछि, किया तऽ ई कम जगह, कम लागत और कम समय में बेसी उत्पादन दैत अछि। माछ पालन में सबसे जल्दी और कम समय में तैयार होय वाला प्रमुख प्रजाति में पंगेशियस, तिलापिया और ब्लैक कार्प अछि। ई माछ मात्र 3-7 महीना के भीतर बाजार में बेचे योग्य आकार में तैयार भऽ जाय। पंगेशियस ई माछ लगभग 5-6 महीना में नीक विकास करैत अछि। तिलापिया ई 5-6 महीना में तैयार भऽ जाइत अछि आ ब्लैक कार्प ई प्रजाति लगभग 3-3.5 महीना में करीब 1 किलो को भऽ जाइत अछि। ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ई विदेशी कार्प भारतीय माछक तुलना में बहुत तेजी से बढ़ैत अछि। जयंती रोहू, उन्नत नस्ल के ई रोहू माछ 8-10 महीना में तैयार भऽ जाइत अछि। व्यापारिक स्तर पर पारंपरिक तरीका से माछ पालन शुरू करे के लेल कम से कम 1 एकड़ जमीन सबसे नीक और अनुशंसित मानल जाइत अछि। एहि के संगे आजुक कृषि चर्चा के समय संपन्न भेल। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।

0: चुनाव में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
4: ल्यूकोरिया हमारे समाज में बहुत ही आम बीमारी है, जो कि करीब 60% औरतों में पाया जाता है। किसी भी औरत में अगर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। यह डिस्चार्ज आमतौर से 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियों में या फिर गर्भावस्था के दौरान या अंडेदानी से अंडे निकलने के दौरान या मासिक से पहले बढ़ जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, वैसा ल्यूकोरिया जिसमें बदबू ना हो या जिसके कल्चर से कीड़े ना निकलें। यह या तो सर्विक्स से होता है या वजाइना से होता है। सर्विक्स से उस स्थिति में होता है जबकि सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाए या सर्विक्स की सतह पर जख्म हो जाए या बच्चा पैदा होने से सर्विक्स फट जाए, उस स्थिति में ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। वजाइनल ल्यूकोरिया, वजाइना की सतह से डिस्चार्ज उस समय बढ़ जाता है जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या अंडेदानी में ज़्यादा खून का जमना या पेल्विस में इन्फेक्शन होने से वजाइनल ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक, जो भी वजाइनल डिस्चार्ज पस की तरह हो और उसमें

0: बदबू हो और उसके कल्चर में कीड़ा निकले, उसे स्पेसिफिक ल्यूकोरिया कहते हैं। इसके कारण है ट्राइकोमोनियासिस। ये सबसे प्रमुख और सबसे आम कारण है। इसमें डिस्चार्ज, हरा, पतला और वजाइना की सतह पर दर्द का अनुभव, वजाइना की सतह में जलन और खुजली हो जाती है, मरीज को पेशाब में जलन, पेशाब करने के बाद दुखन, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द का अनुभव होता है। इस डिस्चार्ज के कल्चर से ट्राइकोमोनास कीड़ा मिलता है। इसका ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह, या टिनिडाजोल 300 मिलीग्राम की सुबह शाम एक सप्ताह। इसके अलावा सेक्निडाजोल की दो गोलियां 1000 मिलीग्राम जो बना देती हैं वो सिर्फ एक बार दी जाती हैं, या वजाइना यानी कि मासिक के रास्ते रखने की गोलियां जैसे बीटाडीन वजाइनल पेसरीज कहते हैं, या मलहम जिसे जेल कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कारण है कैंडिडियासिस। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो दही की तरह होता है और ये आमतौर से गर्भावस्था के दौरान या फिर डायबिटीज के मरीजों में पाया जाता है। इसमें भी वजाइना की सतह पर खुजली और जलन का अनुभव होता है। इसके अलावा पेशाब में भी जलन होती है। इसके ट्रीटमेंट में कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल की 150 मिलीग्राम की टैबलेट सिर्फ एक बार दी जाती हैं। इसके अलावा मासिक के रास्ते रखने की पेसरीज जिन्हें हम माइकोस्टैटिन पेसरीज कहते हैं वो भी दी जाती हैं। इनके अलावा क्लमाइडिया भी एक कारण है। इसमें पेशाब में भी जलन होती है, दुखन होती है और डिस्चार्ज होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम और रात यानी 4 टाइम 14 दिनों के लिए दिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट 100 मिलीग्राम की सुबह और शाम 14 दिनों के लिए, या फिर अमोक्सिसिलिन की 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह, या एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह तक दी जाती हैं। एक और प्रमुख कारण है गार्डेनेला वजाइनालिस वजिनाइटिस। इसमें जो डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया होता है वो मछली की तरह होता है, मछली की तरह की बदबू वाला होता है और ये भी हरे रंग का होता है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह शाम एक सप्ताह या 2 ग्राम की एक साथ दी जाती हैं। इनके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम 100 मिलीग्राम की गोलियां 14 दिन, या टेट्रासाइक्लिन की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह दोपहर शाम और रात 14 दिन तक दी जाती हैं। इसके अलावा रोगी को किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

देशगान अभी आप सुन रहे थे। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूजॉन AIR ऐप। आइए सुनते हैं भजन। भजन की शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गणेश वंदना से। स्वर है L. नितेश का।

सुस्मिता झा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है अनूप जलोटा का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत प्रधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरितमानस का, मुख्य स्वर है महेंद्र कपूर का।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

रामचरितमानस का। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

0: रोजगार सूचना आप सुना करते हैं दोपहर 2:10 पर। 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 3 बजे समय होगा सुगम संगीत का। सांतकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे सुगम संगीत। तरुण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम संध्या 5 बजे। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत 5:40 पर। विद्यापति गीत का समय होगा 6:10 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर आप सुना करते हैं संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी यह कार्यक्रम संबोधित है किसान भाइयों को, जिसका समय होगा संध्या 7 बजे। फिल्म संगीत का समय होगा 7:50 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुना करते हैं 8:15 से। चर्चा का विषय है यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी का समय होगा 10:00। और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों के रंग का समय होगा 10:30 से। यह था आज के होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

0: वक्तव्ये उक्तं यत् ब्रिक्स देशैः सतत विकासस्य 30-अधिक-2000तमवर्षस्य कार्यविधेः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिनः संयुक्त राष्ट्रसंघस्य रूपरेखा प्रबन्धस्य अथ पेरिस सन्धेः च पूर्व पूर्ण प्रभाविरूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशैः बलं प्रदत्तं यत् विकसितदेशेभ्यः वित्तीय सहायतायाः उपलब्धतया सह अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सुदृढीकर्तुं विकासशीलदेशानां पर्यावरण सम्बद्धानां जलवायु सम्बन्धानां च आह्वानानां प्रभाविरूपेण समाधानम् आवश्यकमस्ति। भारतम् अस्मिन् वर्षे सहनशीलतायै नवोन्मेषायै सहयोगायै सतत विकासाय च निर्माणम् इति विषय वस्तुना ब्रिक्स संघस्य अध्यक्षतां करोति। ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः सतत विकासस्य साधनरूपां चक्रीयार्थव्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु केरल आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः सङ्गृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालीयपटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं NTA संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्रपरीक्षणप्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीयग्रामीणबैङ्कसङ्घैः प्रवर्तमानवित्तवर्षस्य ऋणप्रदानक्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अङ्किता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैङ्कस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋणप्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस PNG कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा PNG कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और PNG नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू PNG कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। NTA ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासन

0: प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल नीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनैहार समस्त श्रोतागण के आजुक ए अंक में हम प्रवीण हमरा संगे शिवशंकर भाई नमस्कार करै छी।
1: नमस्कार आपको भी।
0: और कार्यक्रम के शुरुआत सब दिन शुभारंभ हम सब करै छी एकटा सुंदर सन विचार से।
1: उससे पहले हम सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करेंगे अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से।
0: आजुक सुविचार संत रहीम से लेल गेल अछि। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पै फिर नहीं जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दुनिया में एक से एक संत फकीर ला, अपन अपन उक्ति दौ कर संसार से गला। लेकिन ओ सुविचार हमर जीवन के एकटा मंत्र होइत अछि सफलता के। हम सब सहजता में यदि ओकरा अपना आत्मसात करै छी तऽ ज्ञान ई भेटैए जे दुनिया में प्रेम से पैघ किछु नहि होइ छै। आओर यदि कोनो कारणवश भूलवश

0: समय के दोष के चलते ओ संबंध प्रेम टूटे छे, ओके बाद अहाँ कतबो ओहि पर पॉलिश लगेबे, गांठ जोड़बे, तो ओहिमे हल्का न हल्का गांठ, जेना सूती धागा जे होइ छै बहुत ओकर नाजुक होइ छै, घिचबे टूटि जेतै बीच में सँ, ओहिके बाद अहाँ कतबो कोशिश करबै ओकरा ढंग से फेर से जोड़ि दिए तो ओ गांठ पड़िए जाइ छै। ओहिना ई प्रेम के एकटा महीन धागा जे छै हृदय से हृदय के, ओहिमे यदि वैचारिक मतभेद या कोनो तरहक मतभेद होइ छै तो मनभेद होइत ओ गांठ रहि जाइ छै। तैं केहनो परिस्थिति में प्रेम भाव नहि छोड़बाक चाही, हमरा अहाँ के इएह भाव छनि संत रहीम के।
1: जी
0: हाँ, और आब हम सब आगा बढ़ी, आइ 19 अगस्त अछि और एक के बाद हम सब सुनै छी एकटा मैथिली गीत।

0: रहिजोरे बटो ही जनक आंगन, अरविंद कुमार झा के स्वर में एखन एक मधुर मैथिली गीत सुनलहुँ। कार्यक्रम के आगाँ बढ़बैत
1: जी
0: आप समय भऽ रहल अछि हालचाल का,
1: तो आइए सुनते हैं हालचाल जो कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों पर आधारित होता है और हालचाल को लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं प्रवीण कुमार झा।
0: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार में BPSC देलन विज्ञापन TRI-4 के लेल 1 सितंबर से होयत आवेदन। शिक्षक सब के भर्ती होयत 32,388 पद के लेल। अभ्यर्थी सब 2 परीक्षा के माध्यम से एहिमे भर्ती लेल जायत। ग्राम पंचायत सँ राज्य स्तर तक आयोजित हुआ वाला अछि खेल प्रतियोगिता। खेल गतिविधि के लेल शारीरिक परीक्षा आवश्यक होइत अछि और प्रतिभा के निखार बचपने में देखल जाइत अछि। ओकरे देखैत 8 से 15 वर्ष के बच्चा बच्ची सब के लेल ई प्रतिभा खोज होयत। एहिमे अपन अपन प्रतिभा देवाक सबके मौका देल जायत। 6 खेल विधा हेतु एहिमे बच्चा सबके या बच्ची सबके लेल जायत प्रतिभा के अनुसार, और ई पूरा बिहार स्तर पर स्कूल में होयत। दरभंगा नव व्यवस्था निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से 1 रजिस्ट्री भेल। नव ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था सँ जमीन खरीदवा बेचवा के गति कम भ गेल अछि। पुरान व्यवस्था में पहले बुक स्टॉल के माध्यम से भेल रजिस्ट्री, आम जन के जमीन में आब ऑनलाइन खरीदना या बेचनाई करो पड़तन। 17 अगस्त से नव ऑनलाइन रजिस्ट्री आरंभ भेल अछि। घर बैसल ई निबंधन प्रक्रिया सेहो अहाँ कह सकैत छी, जेना कि ई निबंध पोर्टल पर जाकर अपन सबटा डिटेल ओहि पर दियौ। ओकर खाता बनाओ सबसे पहले, ओहि में विवरण भरू आ निबंध पोर्टल पर यूजर लॉगिंग बा रजिस्ट्रेशन के विकल्प दुनू में से कोनो पर क्लिक करू। निबंध कार्यालय कतौ अछि, अंचल मौजा और थाना नंबर की अछि, खाता खेसरा की अछि और जमाबंदी संख्या की अछि, जमीन के क्षेत्रफल की अछि और ओकर चौहद्दी संग जमीन के प्रकार और दुनू पक्ष यानि खरीदवला आ बेचवला के पूरा पूरा जानकारी ओहि पर हेबाक चाही। एहि संग स्लॉट बुकिंग आ शुल्क भुगतान सब विवरण ऑनलाइन के माध्यम से केला के बाद अपन सुविधा के अनुसार अहाँ समय आ तारीख दुनू पक्ष तय कर लिया और नजदीक के निबंधन कार्यालय में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्री के कागज लो लिया। ये हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहा जी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना ले। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित

0: तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार पुनः स्वागत है छाल चाल में। दरभंगा 33 के वी गंगवारा फीडर में किस तकनीकी खराबी के कारण ओकरा यूनिट के बदलाव के कारण काज भ होयत, जहि कारण दिन के आय 10 बजे से लऽ कऽ 11 बजे तक बिजली ओहि इलाका में जुड़ल उपभोक्ता सबके लेल बाधित रहत। मिथिला विश्वविद्यालय में अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह तक भ सकैत अछि छात्र संघ चुनाव। चुनाव के लऽ कऽ विभागाध्यक्ष और प्रधानाचार्य सबके ऑनलाइन बैठकी भेल। बिहार राज्य में 14 चीनी मिल नव खुलत, जैमे 36.92 करोड़ रुपया के निवेश प्रस्ताव मंजूरित भेल अछि। 25 लाख जीविका दीदी सबके लोन भेटतन। 8,000 सुधा भूत के लेल 67,000 रुपया जीविका दीदी सबके देल जायत। चारिटा नव कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एनरोलमेंट 31 अगस्त के बंद भ जायत। मिथिला विश्वविद्यालय में पहिल बेर राष्ट्रीय ऑनलाइन लॉगिंग प्लेटफॉर्म के जरिए से 4 कोर्स उपलब्ध भ जायत। और चलत चलत किछ मौसम के जानकारी लो ली। उत्तर बिहार के जिला में आज 16-22 अगस्त तक वर्षा के संभावना बन रहल अछि। संगे संगे ठनका और तेज हवा तेज बचास सेहो चल सकैत अछि। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकैत अछि और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री के बीच रह सकैत अछि। एहि संग हालचाल सम्पन्न भेल। नमस्कार।
3: हालचाल अभी आप सुन रहे थे प्रवीण कुमार झा से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज नेताजी सुभाष चंद्र जी को श्रद्धांजलि। आज ही के दिन उनकी विमान दुर्घटना से हत्या हो गई थी। फिर हम बात करते हैं, अभी जो समाज है उसमें महिलाओं की भूमिका की और उनका जो नेतृत्व बढ़ता रहा है, अभी बढ़ रहा है और इस तरह से समाज बदल रहा है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे।
2: निश्चित रूप से, और बहुत नीक विषय शिवशंकर जी अपने उठेलों हैं जे ई बदलैत परिवेश, बदलैत समाज, बदलैत दुनिया, सब व्यवस्था बदल रहा है। ऑफलाइन से ऑनलाइन के तरफ, यानी हम सब स्मार्ट युग बनबे लाबि गेल छी और संगे संगे से बदलैत महिला सबके भूमिका और ओकर परिवेश में कतेक तक ओ दुनिया में आगा बढ़ब में अपन भूमिका दऽ रहल छथि, ते संबंध में हम सब किछ आइ गप सब करब। सामाजिक तौर पर हम सब पहले से कृषि प्रधान देश में रहलों, गांव समाज के रहन सहन, बात व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई किछ अलग रहै छलैक और शहरीकरण के व्यवस्था किछ अलग रहै छलैक। औद्योगिकरण के युग भेलै, दुनिया बदललै, मोटर वाहन सब भेलै, तो आब सुदूर ग्रामीण के बच्चा सब सेहो शहर में नीक से नीक स्कूल आबि जाइए जे आसपास के शहर रहै छै। ओना गामो घर में बीच बीच में आब नीक नीक स्कूल सब खुलल अछि, तो और सरकारियो स्कूल सब में आब नीक पठन पाठन के प्रक्रिया भ रहल छै
3: और सरकार भी जो है महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारी बालिकाएं पढ़े, कैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इनके लिए सरकार भी पूरी

0: तरह से कोशिश कर रहे हैं
1: जी,
0: और पहले से बदलाव भी आया है, बहुत बदलाव आया है।
1: निश्चित
0: जो लड़कियां घर से नहीं निकलती थी, बहुत दूर नहीं जाती थी स्कूल होने, लेकिन उनको साइकिल राशि दे करके सरकार ने प्रोत्साहित किया है, उनको साधन मिला है स्कूल जाने का, तो संख्या भी बहुत बढ़ी है।
1: सत्य कहलहुँ जे एहि में अथक से प्रयास कयल गेल अछि जे बच्ची सबके खास कऽ शिक्षा सँ जोड़ल जाय, जे पहिले एकटा सीमा के बाद, पहिले तऽ बुझियौ मध्य स्कूल पास केलाके बाद बहुत बच्ची के विवाहदान भऽ जाइ छलै, ओकरा से भेज देल जाइ, शिक्षा दीक्षा समाप्त कऽ देल जाइ छलै ओहिठाम।
0: उसको रोकने के लिए सरकार ने अब क्या किया है जानते हैं प्रवीण जी?
1: जी, बाल विवाह नियम कानून लागू भऽ गेल,
0: वो तो है ही, साथ में कि आप यहाँ तक पढ़ेंगी और शादीशुदा नहीं रहेंगे तो आपको ये शिक्षा राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। और महिलाओं का बढ़ता नेतृत्व आज के बदलते समाज की सबसे मजबूत सच्चाई है। राजनीति, व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक मंचों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने पारंपरिक जो रूढ़ियाँ हैं उसको तोड़ा है। यह बदलाव न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत स्थिति को मजबूत कर रहा है बल्कि पूरे समाज की सोच, विकास और दिशा का भी एक नया आकार दे रहा है।
1: एक तो सत्य अछि जे पढ़ल लिखल जे बच्ची है ओ भविष्य में यदि ओ से माँ बनै अछि तो ओ परिवार के ओहि ढंग से पढ़ला लिखला के जे गुण होइ छै तै ढंग से आगा बढ़ैत अछि, परिवार में योगदान दैत अछि। और एक कुशल गृहिणी तो केवल घर में काज करै छथि, ओहो महान छथि, लेकिन एक कुशल महिला जे घर सहित बाहरों के काज कर रहल छथि, आइ काल्हि खास कर जे अहाँ चर्चा केलहुँ तऽ
0: दोनों तरफ सम्हालना,
1: एखन शिक्षो में अब जे नव नव बहाली भेलै मास्टरनी सबके और बहुत तरहक पुलिस में जे महिला सबके बच्ची सबके देखै छी तऽ एतेक मन में उत्साह जगैया कि ओ युग छलै आइ सँ 50 साल पहले जो महिला के नगण्य भूमिका रही चलिए, कतौ कतौ महिला के भूमिका सामने में अबै चलिए, लेकिन युग परिवर्तन एकरे कहै छै जे आइ अहाँ कतौ चल जाओ बढ़ चढ़ कऽ पुरुषक संग बड़ पुरुषो से बेसी आगू बढ़ चढ़ कऽ महिला के भूमिका आबि गेल छै और निश्चित रूप से समाज ओही कारण से बदलाव
0: बहुत कठिन होता है कि एक महिला के लिए कि बाहर भी संभालना घर भी संभालना,
1: हाँ
0: ये दोनों लेके बैलेंस करके चलती है
1: जी, ये तो और कठिन है। शंकर जी एक बार चर्चा करो, एक महिला के पारिवारिक भरण पोषण करब के मूल जिम्मेदारी रहे छे, परिवार में बहुत सदस्य रहे छे, काख्या नहीं सदस्य रहे छे, तैयो परिवार में एक धूरी होइत अछि,
0: अहाँ
1: जीवन में कतौ जाओ कमा खटाओ कहो, घर में लोग दूटा चीज जे कहे या तो सुखायल रोटी या जे किछु भेटले या नींद, ये दूटा अपन घर में जते निक लोग के लगे छे तो ओहि में महिला के भूमिका जे भय छन से बेसी रहे छन। और देखल गेलिए जे बहुतो पुरुष ओहि में सहयोग करै छथि, बहुतो एखनो तक घरक भूमिका में सहयोग नहीं करय चाहै छथि, हुनका ई भाव रहे छन यदि हम बाहर काज करै छी तो हम घर में क्या काज करब, अगर यह बात महिला काज करय वाली पर लागू भ जाए जे महिला कहि देथिन जे हम बाहर यदि काज करै छी तो हम घरक काज क्या करब तो विग्रह हेतै घर में, तै समन्वय बनेनाइ आवश्यक भ जाइ छै। और पारिवारिक विकास तक होइ छै तखने जखन दुनू पहिया एक रंग ढंग सँ संग संग लऽ चलै परिवार के।
0: तो चर्चा तो होती रहेगी प्रवीण जी,
1: हाँ हाँ,
0: लेकिन हम चाहते हैं कि श्रोताओं को एक गीत सुनवाएं और लिए चलते हैं ये गीत की ओर।

एखन ई फिल्म संगीत सुनलहुँ, नीक लागल हैत। हमसब गप सप करै छलहुँ हैं जे महिला के बढ़ैत नेतृत्व, मातृशक्ति के बढ़ैत शक्ति और बढ़ैत समाज। निश्चित रूप से हमसब कतौ जाओ आब पहिलका बात नहि रहलै, महिला अग्रणीय भूमिका में आयल छथि और समाजक बदलाव के मूल कारण वह छै जे शिक्षित परिवार त शिक्षित समाज और शिक्षित समाज त शिक्षित राष्ट्र।

0: হইতেছে?
1: কাহা যাতা হ্যায় কি দেখিয়ে, আগর এক পুরুষ পড় লিখ কে আগে বড়ে তো সির্ফ পুরুষ শিক্ষিত মানে যায়গে
0: জি,
1: লেকিন এক মহিলা আগর শিক্ষিত হতি হ্যায় তো এক পরিবার নাহি দো পরিবার শিক্ষিত হতা হ্যায়।
0: সত্য কহলো।
1: আর সমাজ মে বদলাব কে অভি যো ক্ষেত্র হ্যায় বো রাজনীতি আর শাসন মে মহিলাও কা বড়াবা হুয়া হ্যায়, পঞ্চায়েতো সে লেকর সংসদ তক মহিলাও কি উপস্থিতি বড়ি হ্যায়। নীতি নির্মাণ মে ভাগিদারি সে জনহিত মুদ্দো কো নই প্রাথমিকতা মিল রহে হ্যায়। আর দেখিয়েগা তো রাজনীতি মে ভি মহিলাও কি ভাগিদারি বহুত হদ তক অব আগে বড় চুকি হ্যায়।
0: सत्य कहलौं, राजनीति अहाँ क्या गप करै छी, महिला
1: और भी क्षेत्र हैं, हम बात करते हैं
0: कोनो क्षेत्र में एखन जाओ तो महिला की भूमिका अहाँ आप ओ युग वाला नहीं सोचियो, सब क्षेत्र में। और हम तो देखै छी जे विगत वर्ष में छात्र सब बेसी छात्रा सब शिक्षा में आगू आयल है और प्रतिशतों में देखेलक है जे एक नीक देश में पोस्ट निकली है ओमे छात्रों सब के विशेष योगदान छे तो सब स्तर में।
1: नहीं नहीं, देखिए आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हुई है, जैसे स्वरोजगार के क्षेत्र में स्टार्टअप और जो भी इस तरह की व्यवस्था है उसमें भी महिलाएं आगे बढ़ी हैं।
0: जी जी एकदम सत्य।
1: समूहों के जरिए महिलाएं उद्यमी बन रही हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ी है, इससे परिवार और समाज में उनकी आर्थिक हैसियत सुधरी है।
0: सत्य कहै छी।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं और जागरूक हुई हैं, शिक्षित महिलाएं न केवल खुद को आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी सशक्त कर रही है और उसको शिक्षा दे रही है और शिक्षा के लिए अलग जगा रही है कि हमारी बेटी है तो वो पढ़े। ठीक है,
0: एकदम सही कहलौं
1: जी।
0: देखियो ई एकदम सबसे पैघ सत्य कहलिए अहाँ, जे शिक्षित अगर परिवार में शिक्षित महिला छै तो आबा वाला पीढ़ी जे छै से निश्चित रूप से ओकर असर पड़िते छै। देखल गेलिए एखनो बहुतो क्षेत्र अछि जे शिक्षा मामला में एखनो पाछू अछि, तैं सरकार शिक्षा पर जोर दऽ रहल अछि। इसकुल में नव नव टीचर सब, नया युग के टीचर सब आबि रहल छथि, नव ढंग सब कोना पढ़ाई होए ओहि के बारे में सोचल जा रहल अछि, यानी चिंतन मनन हमेशा होइ छै। और कारण देखल गेल है जे हमर जे पूर्व मुख्यमंत्री छला एकटा, से कन्या शिक्षा के उत्थान हेतु ओकरा केना आगू बढ़ायल जेतै हेतु बहुत तरहक राज्यादि योग केलखिन, राज्य ओकरा सहायता देलखिन, जेना प्रोत्साहन राशि, इसकुल, बस्ता, फिर साइकिल देलखिन। समस्या अलै जे इसकुल दूर छै, बच्ची सब नहि सुरक्षा कारण से जा रहल छै, तऽ ग्रुप बना कऽ साइकिल, सबके साइकिल भेटलै, साइकिल से बच्ची सब जाय लागल, तऽ ई सब विकास सनी सनी जे भेलैया तकर परिणाम सामने मे छै जे हर क्षेत्र मे आब जे महिला अछि सो आगू अछि और आगू रह चाहि जाय, तखने समृद्धि देश बनत हमर और हम सब मजबूत होयब। जखन दुनू पक्ष हम सब मजबूत होयब तखने हम सब मजबूत भ सकै छी।
1: और इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है
0: जी,
1: सकारात्मक प्रभाव इस तरह पड़ा है कि महिला नेतृत्व, संतुलन और सबको साथ लेकर चलने की भावना को बढ़ावा देता है
0: जी।
1: आगे आते ही महिलाएं समाज की अन्य बालिकाओं और युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल कल्याण और सुरक्षा जैसे मुद्दों को अब नीतिगत स्तर पर अधिक गंभीरता से ले रही है।
0: सत्य कहलौं। और सरकारो महिला के सुविधा केना होटे, किए तऽ पूर्व किस तो अंतर छै ने, तै हर स्तर पर कार्यालय होय, ऑफिस या कोनो भाग होय, महिला के असुविधा नहि हेबाक चाही से सोच आब एलैए। ओना जनतो जागरूक छथि, महिला के आम सुरक्षा हेबाक चाही से भेटैत अछि, ओना आशा ई करै छी जे किछु त्रुटि होइत अछि ओ धीरे धीरे शिक्षासँ दूर होयत। आओ आजुक दिन हमसब बुध दिन कऽ सुनै छी मिथिला के आवाज, मिथिला के आवाज मे आइ लऽ कऽ आयल छी ई हम, तऽ आओ सुनै छी पहिले ई मिथिला के आवाज।
2: नमस्कार, मिथिला के आवाज मे आइ सब श्रोता के स्वागत अछि, हम प्रवीण, हम आयल छी आइ मधुबनी जिला के कोयलक गाँव, ओहिठाम हमरा गप सब भऽ रहल अछि।

0: एकटा सहायक व्याख्याता आशुतोष कुमार झासँ, ई श्रम एवं कल्याण विभागमे छथि, आ हिनकासँ सामाजिक सरोकार पर किछु गपशप करब। तऽ सबसँ पहिले अपनेके नमस्कार अइ।
1: नमस्कार। नमस्कार।
0: हम अपनेसँ पूछऽ चाहै छी जे श्रम एवं समाज कल्याण, यानि गीतोमे कहल गेल अछि अहाँ कर्म करू बिना फलके चिन्ता केने, तऽ श्रम केलावला आदमी जे श्रमसँ जीवैए ओ समाज कल्याणमे कतेक महत्व रखै छै, ताहिपर किछु प्रकाश दियौ।
1: श्रमसँ अहाँके आर्थिक सोर्सपर डेवलप होइए, आ आर्थिकसँ अर्थ भेल जे अहाँ जखने किछु काज करबै तऽ ओहिसँ किछु ने किछु अहाँके ओकर प्रतिफल भेटत, ओहिसँ पाइ भेटत आ अहाँ अपन विकास कऽ सकै छी। लेकिन समाजमे जे लेबर मजदूर वर्ग अइ तऽ ओकरामे कतबो कऽ कऽ कतबो पैसाके अर्निंग केलाके बावजूद ओकर ओतेक उत्थान या विकास नहि भऽ पबै छै, ओकरा लेल किछु ने किछु अलग तरहक किछु व्यवस्था कयल जाय जाहिसँ कि ओकर विकास भऽ सकै, ओकर कल्याण भऽ सकै। ओहि दुआरे श्रमके समाज कल्याणसँ जोड़ि कऽ तहन एकटा अलगसँ विभागके रचना कयल गेलै, जाहिमे जेना अहाँ देखबै जे बहुत लेबर रहैए, ओ बूढ़ बुजुर्ग रहैए, ओकरा वृद्धा पेंशन भेटै छै, महिला छथि हुनका सबके किछु किछु भेटै छनि, तहिना लेबर सब पर किछु अधिकार छै, कारखाना अधिनियम छै, श्रम अधिनियम छै, बहुत तरहके एहन तरहके काज छै जाहि तहत ओकरा प्रोटेक्शन भेटै छै, सुरक्षाके ओकर ख्याल राखल जाइ छै सरकारक दिससँ, जाहिमे ई विभाग अपन मंतव्य या अपन विचार किछु किछु टाइम समय टू समय गवर्नमेंट तक पहुँचाबै छै। ओकरे पढ़ाई रूपमे हमसब अपन बच्चाके बुझबै छियै जे अहाँ केना केना कोन कोन नियमके तहत कतौ कोनो फैक्ट्रीमे काज करब, अहाँके की सुविधा भेटत आ की अहाँ ओकर बारेमे कऽ सकै छी, आ सङ्गहि अहाँ अपना सोसाइटीमे ओकर कई तरहके रूप दऽ सकै छियै जाहिसँ कि फायदा सोसाइटीके होइ।
0: बहुत नीक, बहुत नीक। देखियौ, समाजसँ जुड़ल छै सब व्यवस्था, समाज जेहने होइ छै ओहने गतिविधि होइ छै, ओहने सांस्कृतिक धरोहर होइ छै, ओहने निखार होइ छै समाजमे, तऽ सामाजिक गतिविधि बनबऽके लेल श्रम जे छै से निश्चित रूपसँ आवश्यक छै। हँ, रूप अलग अलग छै, जेना केओ खेतमे श्रम करैए तऽ केओ ऑफिसमे श्रम करैए, केओ इसकुलमे श्रम करैए, तऽ ई एकटा रूप छै अलग अलग, लेकिन करऽके छै श्रम सबके, तऽ ई समावेशमे एकरा लैत हम एकेटा कहब जे अहाँ आजुक युगमे की कहऽ चाहै छियै नव पीढ़ीके?
1: मतलब हम हुनका इएह सन्देश देबऽ चाहबनि जे अपन हुनकर की कर्तव्य छनि आ हुनकर की अधिकार क्षेत्र छनि, अगर ओ अपन काज करता तऽ हुनका लेल तऽ किछु हुनकर व्यवस्था बेनिफिशियरी हेबाक चाही, ओकर प्रति हुनकर ज्ञान हेबाक चाही, तहिना ओ समाजोके आओर लोक जे होइ तकरो देथिन से हुनका बुझनाइ जरूरी छनि। आ सङ्गहि हमर सबके जे विभाग अइ या एहिसँ रिलेटेड जे गवर्नमेंटोके छै ओ अपन ई बतबऽ चाहै छै जे मानि लिअ जे एहन टाइपके फैक्ट्री जाहिमे पढ़ल लिखल नहि छथि, कम पढ़ल लिखल छथि, हुनका नहि बुझल छनि जे ओ जे अगर रिटायर करता तऽ हुनका की भेटतै, बेनिफिट भेटतनि, या ओ इंजोर्ड भऽ जेता तऽ हुनका की बेनिफिशरी भेटतनि, तऽ ओहिठाम ई सबके बुझनाइ या बुझनाइ नियमके ज्ञान रखनाइ ओ बहुत जरूरी छै, आ अहाँ ओ नियमके तहत ओहि आदमीके कतबा फायदा दिया सकै छै ई बुझनाइ बहुत जरूरी छै।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ श्रम एवं समाज कल्याणपर बहुत गूढ़ बात सब कहलहुँ, अहाँके मिथिला आवाजमे अपन आवाज देबऽके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: मिथिला की आवाज को लेकर उपस्थित है अभी प्रवीण कुमार झा
0: जी। सब बुधनिक हमसब मिथिला की आवाज नमस्कार मिथिला में सुनै छी। एखन छलाह प्रोफेसर आशुतोष कुमार झा जे श्रम एवं कल्याण विभाग में पढ़ाई करबै छथिन बच्चा सबके, तो हुनके से किछु गप केलहुँ। आशा करै छी अहाँ सबके नीक लागल होयत जे श्रमिक के अधिकार की छै और श्रमिक राष्ट्र निर्माण में की भूमिका

0: हुए थे ओना एखन तऽ भूमिकेके अपने सब गप करै छलहुँ हैं जे समाजमे बढ़ैत शिक्षित होइत महिला सबके भूमिका बढ़ि रहल अछि।
1: मतलब कि समाजमे महिलाओं की क्या भूमिका है?
0: जी जी जी,
1: साथ साथ उनकी चुनौतियाँ भी हैं, जैसे दोहरी जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी और काम के बीच संतुलन बनाने का जो संघर्ष आज भी बरकरार है, सामाजिक मानसिकताओं की बाधाएं भी हैं। कई क्षेत्रों में आज भी सोच महिलाओं को खुलकर निर्णय लेने से रोक सकती है। सुरक्षा है, संसाधन है, ये सब भी महिलाओं की चुनौतियां हैं। जैसे कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और समान अवसरों की जरूरत अभी भी है।
0: सत्य कहलहुँ, ओना जे दृष्टान्त होइए एहिमे इहो देखै छी जे प्रसाधनके असुविधा सेहो महिला सबके होइ छनि। ओना ऑफिस वगैरह सबमे, कार्यालय वगैरह सबमे आब विशेष सुविधा दऽ देल गेलैए, लेकिन आम महिलाके जे बाहर अबै छथि शहरमे, हुनका सबके वृहत स्तर पर जतय जमा होइ छथि ओहिठाम एखनो प्रसाधनके असुविधा देखल जाइ छै, ओहिमे विकासके आवश्यकता छै। बाटघाटमे नगर निगम द्वारा बहुत कम मात्रामे एखनो तक प्रसाधनके सुविधा देल गेलैए महिलाके लेल, खास कऽ ओना आब देखल गेलैए जे चौक चौराहा कतौ कतौ आवाज भेलापर से ई सुविधा से बहुत देल जा रहल अछि। तऽ ईसब देलाके बाद आरो महिला सब घरसँ निकलती, आओर खास कऽ जखन महिलाके गप करब तऽ बिहारमे बिना जीविका दीदीके महिलाके गप पूरा नहि भऽ सकत। एहिसँ पहिलका सरकार जे एकटा महिला विकासके लेल आ किछु कदम उठेलखिन जाहिमे नशापान पर शराबबन्दी सबटा कारण एकेटा रहै जे महिलाके शोषण कम होइ, महिला घरसँ आगू बढ़ै आओर ओतबे आगू ओतबे नहि बढ़ै, ओ सशक्त भऽ कऽ सामाजिक चेतनाके सेहो सशक्त करै आओर अग्रिम भऽ कऽ भूमिका निभाबै आओर पुरुषके कन्धासँ कन्धा मिलाकऽ आगू समाजके लऽ चलै, जाहिमे एखन देखल गेलै जे बहुत तक हद तक से कामयाबी भेटलैए, जागरूक भेलै है, ताहिमे कोनो शक नहि छै। आब महिलासभ घर त्याग कऽ बाहर कार्य योजना बनबै छथि, कार्य करै छथि, एखनो बहुत सखी बहिन पा सब छूटल छथि जिनका जीविका दीदी सब अपन समूह बना बना पर गामे पर एहन एहन लघु उद्योग आओर कुटीर उद्योग करऽके लेल प्रेरित कऽ रहल छथिन जे ओ सब जीवन यापन आगा कऽ सकैत आर्थिक रूपसँ सबल भऽ कऽ, जाहिमे सरकारो भूमिका दै छथिन आओर समय समय पर से हुनका सबके सहयोगो करै छथिन आओर सङ्गे सङ्गे सहयोगे नहि सब्सिडी बहुत तरहक मामलामे दै छथिन। जेना एखने किछु दिन पहिले से चुनावसँ पहिले एकटा आयल रहै जे 10-10 हजार कम महिला सबके खातामे गेल रहनि, ओ खाय लए नहि गेल रहनि, जे चुनाव छै तैं दऽ देलकै तै लए नहि गेल रहै, ओ गेल रहै एहि दुआरे जे ओहि 10 हजारसँ अहाँ कोनो एकटा छोट छीन व्यवसाय शुरू करू आओर व्यवसायके रूपरेखा यदि बढ़बऽ चाहै छी तऽ अहाँ अपन समूह द्वारा बैंकसँ सम्पर्क करू आओर रूपरेखा यदि अहाँके नीक लागत जे नहि ठीक छै ई योजना तऋ ओहिपर अहाँके 2 लाख तकके से ऋण भेट सकैत अछि, जाहिमे सब्सिडी बादमे छोड़ल जायत, काज करतै कि से निर्भर छै। बहुतो आदमी सोचला जे ओहिना भेटलैए 10 हजार खा लै छी आओर निश्चित रूपसँ बहुतो आदमी खा कऽ बैसल छथि, इहो हम जनै छी, लेकिन बहुतो एहन छथि जे ओहि 10 हजारपर नहि रुकली, ओ आइ 1-1.5 लाखके ओ धन्धा कऽ कऽ आगाँ बढ़ रहल छथि ऋणके माध्यमसँ आओर जीविका दीदी ओहिमे सहयोग करै छथिन। तैँ बदलऽके लेल समाज बदली या राष्ट्र बदली ओहिके लेल सबसँ पहिले जरूरी छै शिक्षा, जे शिक्षा आब व्यापक रूपमे पसरि रहल अछि, समाजमे बहुत कम जगह छै जतय लोक एखनो अशिक्षित अछि, शिक्षा जगह जगह आबि गेल छै आओर शिक्षा एहन चीज छै जे सब किछु आदमीके जागरूक कऽ दै छै।
1: परिवार आओर संस्कार की धुरी भी है महिला, महिला एक माँ पत्नी बहन और बेटी के रूप में परिवार को प्रेम स्नेह और एकता के सूत्र में भी बांधती है। संस्कारों की जननी भी हैं महिलाएं, बच्चों के शुरुआती शिक्षक के रूप में उनमें नैतिक

0: मूल्य, संस्कृति और अच्छे संस्कार भी महिलाएं ही विकसित करती हैं। आर्थिक योगदान भी महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाएं नौकरी, व्यवसाय और कृषि के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित और स्वस्थ कर रही है।
1: सत कह रहा हूँ। और देखियो जे शिक्षा के साथ साथ मनुष्य खोजी होइत अछि,
0: और भी भागीदारी है महिलाओं की, सक्रिय भागीदारी है। जैसे कि आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, प्रशासन, खेल और कला जैसे हर क्षेत्र में उच्च पदों पर देश को नेतृत्व कर रही है।
1: और संगे संगे खगोल विज्ञान के रोचक दुनिया में सेहो महिला अपन योगदान दऽ रहल छथि, जेना अंतरिक्ष में सेहो झंडा फहरेली है। तऽ कतौ जाओ और खगोल विज्ञान तो एकटा रोचक दुनिया छैहे, और ओहि के जटिल रहस्य के जानय के लेल और समाज कल्याण हेतै ओहि सँ तै के लेल महिला सेहो एखन से अंतरिक्ष में छथि और जा रहल छथि। बेर बेर गेली है कैटा महिला, तो आप कोनो जगह अहाँ चलि जाओ, महिला के अहाँ भूमिका आगू भ के देख सकै छी। हाँ, और बहुत किछु आवश्यकता छै हुनका सुविधा के लेल, से आशा करै छी जे धीरे धीरे भ जेतनि, तऽ महिला सशक्त भूमिका में और एति समाज कल्याण के लेल, राष्ट्र कल्याण के लेल। आओ, आप समय कहित अछि जे एकटा किछु गीत संगीत के आनंद ली, हम संगे श्रोतागण।

0: कहित अछि जे हमरा एहि अंकसँ जेबाक समय आबि गेल अछि, तै हमरा प्रवीणके
1: और शिवशंकर को
0: दिय आज्ञा। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक त इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: समस्याएं हैं, तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी, सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
5: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
6: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
10: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
9: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए

0: विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए चार स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में

0: सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केवंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है।

2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष दो में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें

0: लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफार्क की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: of humanitarian workers, but they need protection and funding, not just applause. Trump cites CEC, India poll rules to push US voter ID bill, states Hindustan Times. Pakistan Supreme Court orders Imran Khan be moved to hospital, reports the Asian Age. And finally, vocational education third language must for class 9 from the current academic session, writes The Times of India about Delhi government's revised class 9 examination and promotion policy. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protests. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satender Jain and five others in the Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। दिल्ली सरकार के बदनवानी मुखालिफ शोबे ने जल बोर्ड रिश्वत केस में साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन और पांच दीगर अफराद को गिरफ्तार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से मिसाइल खतरे का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सभी तिजारती और माली लेन देन मुअत्तल कर दिए हैं। और नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में आज FIH मर्दों के हॉकी वर्ल्ड कप के पूल डी के अहम मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को फरोग देने के लिए तरगीब की स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे मुल्क में घरों तक पाइप के जरिए माहौलियात के लिए साजगार, महफूज और कम खर्च खाना पकाने की गैस पहुंचाना है। मस्कूरा स्कीम का इतलाक अगले महीने की पहली तारीख से होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि पीएनजी कनेक्शन की तादाद में तेजी के साथ तौसी की खातिर ये स्कीम बनाई गई है ताकि मजीद कुनबे जल्द से जल्द अपनी रसोई में पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकें। फिलहाल मुल्क में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मस्कूरा स्कीम 6 महीने के अरसे में 2 मरहलों में नाफिज की जाएगी। वजारत ने कहा है कि पाइप के जरिए पहुंचाई जाने वाली कुदरती गैस, LPG सिलेंडर और खाना पकाने के काम आने वाली रिवायती ईंधन का एक महफूज और ज्यादा सहूलत वाला मुतबादिल है। इम्तिहानात कराने वाली एजेंसी NTA ने 600 माहिरीन को हटाकर और नए माहिरीन को शामिल करके इम्तिहानात से मुतालिक अपनी टीम की तश्कील नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर तालीम की वजारत ने कहा है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच को मुस्तहकम बनाने की खातिर NTA सवाल नामों को चेक करने का 4 सथी निज़ाम नाफिज करेगी। इसके अलावा ये एजेंसी अगले 2-3 हफ्तों के दौरान 20-25 अहदेदारों को भी शामिल करेगी। इसके साथ साथ इम्तिहान कराने वाली एजेंसी NTA के दफातर नए मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे जहां CISF की टीमों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। इम्तिहानात को खुश उसलूबी के साथ कराने के लिए सिक्योरिटी और मुतालिका बुनियादी ढांचे की तमाम जरूरी सहूलियात दस्तियाब कराने की वजीर तालीम प्रहलाद जोशी की हिदायत के तनाजुर में NTA ने यह फैसला किया है। झारखंड सरकार ने तलबा के एहतजाज के तनाजुर में कल रात उन 44 भर्ती इम्तिहानात की फहरिस्त जारी की है जो बेजाबतगियों की वजह से मनसूख किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: झारखंड सरकार ने
1: नोटिफिकेशन

0: सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा, सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 राइफल से फायरिंग में कोई छात्र नहीं हुआ घायल। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन PNG को घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। यह स्कीम 1 सितंबर से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा PNG कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और PNG नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू PNG कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपने टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA ने यह फैसला शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन के दौरान सीवान में AK-47 राइफल से फायरिंग किए जाने की बात स्वीकार की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच फंस जाने के कारण एक सिपाही ने AK-47 से हवा में फायरिंग की थी। इस फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक पुलिस बल के इस्तेमाल के आरोपों से इनकार किया। हलफनामे में कहा गया है कि आंदोलन के दौरान घायल हुए 3 प्रदर्शनकारी AK-47 से चली गोली से घायल नहीं हुए थे और वे उस स्थान पर भी मौजूद नहीं थे जहां इस राइफल से फायरिंग की गई थी। राज्य सरकार ने कहा कि घटना से जुड़े तथ्यों की जांच अभी जारी है। इसमें इस्तेमाल हुए हथियार के प्रकार, फायरिंग की दूरी और गोली चलाए जाने के कोण समेत अन्य पहलुओं का पता लगाया जा रहा है। साथ ही फायरिंग करने वाले सिपाही को निलंबित किया जा चुका है और उस पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इधर आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल आज पटना में लोक भवन मार्च निकालेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सिवान और जहानाबाद में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किसके आदेश पर हुई, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर छात्रों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया।
2: जब लॉन्ग मार्च करने का समय था, इनको गली गली घूमने का था बांकीपुर में, तो ये विदेश यात्रा कर रहे थे बांकीपुर उपचुनाव में, और आज नकली आंसू, घड़ियालू आंसू बहाने के लिए ये आए हैं राजभवन मार्च, छात्र आंदोलन। न इनके पास छात्र है, न इनके पास आंदोलन है। आज ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं।
0: बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को एकल चरण में कराने समेत अन्य मांगों को लेकर पटना के कर्दनीबाग धरनास्थल पर अभ्यर्थी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में कल से सैकड़ों अभ्यर्थी धरनास्थल पर बैठे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित कर दिया है। योजना एवं विकास विभाग के अनुसार

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। बिहार सरकार ने

0: योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक इंटर से लेकर स्नातक पास 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवकों को नौकरी की तलाश के दौरान सहायता दी जाएगी। पात्र युवाओं को पहले 2 वर्षों तक हर महीने 1,000 रूपये स्वयं सहायता भत्ता मिलेगा। सरकार ने योजना के विस्तारित कार्यकाल के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने चयनित 155 सरस्वती विद्यानिकेतन मॉडल प्लस टू विद्यालयों में जेईई और नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू कर दी है। यह सुविधा कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि 700 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
1: हम लोग इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप का भी शुरुआत किए हैं जो 700 मॉडल स्कूल्स में लागू रहेंगे। 24 घंटे टीचर्स उपलब्ध रहेंगे। कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता हो, शाम में बच्चे उस ऐप में जाकर के टीचर से संपर्क कर सकते हैं।
0: पटना के ज्ञान भवन में आज से 23 अगस्त तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस मेले में देश विदेश की 80 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। विभाग ने लगभग 20,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मेले का उद्घाटन विभागीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद करेंगे। बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश में जन कल्याण संवाद अभियान की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कृषि अनुसंधान को खेत तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसान, महिला, युवा और श्रमिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में जल्द ही ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था शुरू होगी। इसके तहत मुजफ्फरपुर और मुंगेर के राजस्व न्यायालयों में प्रायोगिक तौर पर वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था शुरू हो गई है। इस व्यवस्था के तहत वादी और उनके अधिवक्ता कहीं से भी संबंधित राजस्व न्यायालय की सुनवाई में ऑनलाइन शामिल हो सकेंगे। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि दोनों जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद वर्चुअल सुनवाई की सुविधा पूरे राज्य में लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां राजस्व न्यायालयों में इस तरह की अत्याधुनिक वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुपौल दौरे पर रहेंगे। श्री चौधरी बलुआ बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही वे निर्माणाधीन कोसी मेची लिंक परियोजना का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज औरंगाबाद

0: कैमूर और रोहतास जिले में भारी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 19 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में अनेक स्थानों पर एवं उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
0: बिहार क्रिकेट संघ ने घरेलू सत्र 2026-27 के लिए फिटनेस और स्किल कैंप के लिए 57 खिलाड़ियों की पहली सूची जारी की है। सूची में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। कैंप 22 अगस्त से पटना में शुरू होगा। पटना की एक अदालत ने टीपीएस कॉलेज के प्रोफेसर शिवनारायण राम हत्याकांड में उनके भाई समेत 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 4 दोषियों पर 15,000 और 2 पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2020 का है। पटना की निगरानी अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में तलसिंह सराय के तत्कालीन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार मेवल को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में पटना के पीटा से एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसके बैंक खाते से डिजिटल अरेस्ट से संबंधित लगभग 1,05,00,000 रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। खगड़िया जिले के महेशकूट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 62 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज के वार्ड संख्या 3 में आपसी विवाद में अपराधियों ने दादा और पोती की हत्या कर दी। मुंगेर की एक अदालत ने मिनीगन फैक्ट्री संचालन के दोषी मोहम्मद इरफान को 7 साल कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, शिक्षक भर्ती के लिए 32,388 पदों पर चयन के लिए 2 परीक्षाएं होंगी। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, टीआरई में पहली बार होगी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले होंगे शामिल। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार पुलिस में तबादला, 5 एसपी समेत 18 आईपीएस का ट्रांसफर, AK-47 कांड और भरत मामले का सर सिवान भोजपुर के एसपी बदले। प्रभात खबर की सुर्खी है, इस बार दिव्या गायत्री सहित 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार सिपाही भर्ती की 3 लिखित परीक्षाओं का रिजल्ट जारी। आज अखबार लिखता है, पटना में होने वाले जाम पर हाई कोर्ट सख्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा, सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 राइफल से फायरिंग में कोई छात्र नहीं हुआ घायल। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर।
3: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांटलेट पर 15,000 प्रति एकड़ तक आकर्षक अनुदान का लाभ उठाइए।
2: योजना का लाभ लेने के लिए ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्नत बीज अपनाइए, अधिक उपज पाइए।
3: गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य

0: पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है। लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: पहले हम अपने इस मौजू की शुरुआत जावेद आलम साहब, जो राष्ट्रीय सहारा अखबार से जुड़े हुए हैं, उनसे इस मौजू पे बातचीत करते हैं। जावेद साहब, आप हमें बताएं कि फोटोग्राफी की दुनिया जो बहुत अच्छी रही है बहुत जमाने से और आज के दौर में और भी अच्छी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आज की जो फोटोग्राफी है और जो पहले की जो फोटोग्राफी थी, इसमें क्या तब्दीली आई है, कितना फर्क हुआ है, कितने उतार चढ़ाव आए?
1: जी शुक्रिया। जब हम लोगों ने फोटोग्राफी शुरू की, खासकर मैंने, उस जमाने में हमारे यहाँ कैमरा बहुत कम हुआ करते थे और विदेशों से कोई अगर हमारे रिश्तेदार कहीं विदेश में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, उन्होंने लाके कैमरा दिया, शौक या फोटोग्राफी शुरू किया। और उस जमाने में फोटोग्राफी बहुत ही टफ, जिस तरह से अगर हमको फोटो खींच करके अगर प्रिंट करना है या अखबार में देना है
0: जी,
1: तो बहुत ही टफ काम होता था। नेगेटिव का जमाना था, फोटो खींचते थे, उसको स्टूडियो में डेवलप करते थे, फिर जा करके उसको प्रिंट करते थे, यानी बहुत सारे प्रोसेस होते थे, उसको सुखाते थे। उस जमाने में कहीं ब्लोअर भी नहीं होता था, सनलाइट में सुखाते थे और उसके बाद वो अखबार में जाता। लेकिन आज के दौर में फोटोग्राफी बहुत ही आसान और हो गया है। अगर आज आप कैमरा खरीदते हैं, कल से आप फोटोग्राफर बन गए। चाहे आपको उसका डिस्टेंस का पता नहीं हो, क्या डिस्टेंस होना चाहिए फोटोग्राफी का, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या लाइट होना चाहिए,
0: यही मैं अभी आपसे सवाल करने वाली। हर चीज का एक सिस्टम होता है। आज लोग फोटो खींच तो लेते हैं, क्लिक करते हैं जरूर, लेकिन क्या उसको फोटोग्राफी कहा जाएगा? फोटोग्राफर आज भी बहुत अच्छे हैं, आज के दौर में ऐसा नहीं, बल्कि बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं इस दुनिया में, और खासतौर से उनके लिए तो चूंकि अब सभी के हाथ में कैमरा हो गया है मोबाइल के थ्रू, तो जिन लोगों में ये काबिलियत हो रही है वो तो अच्छा कर ही रहे होंगे। आप इस पर क्या है?
1: नहीं, अब फोटोग्राफी कई तरह से लोग करते हैं, मोबाइल है, कहीं गया फोटो कर लिया, और कुछ लोग फोटोग्राफी सीखते हैं, वो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मेहनत करते हैं, उसको सारे चीज की जानकारी लेनी पड़ती है कि कितना रेजोल्यूशन में फोटो खींचे, लाइट का क्या सिस्टम होना चाहिए, हम जब सब्जेक्ट को लेते हैं तो क्या सन किधर है, अगर आउटडोर करते हैं, इंडोर करते हैं, ये सारी चीज को हमको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी फोटोग्राफी होती है। और उसके साथ साथ फोटोग्राफी में कैमरा भी एक माने रखता है। कैमरा आप जितना अच्छा, जितना बढ़िया कैमरा लेंगे उतनी अच्छी फोटोग्राफी होगी। जिस तरह से अधिकतर आज जो कैमरा आया है जिसमें हमको फ्लैश की जरूरत नहीं पड़ती है, कम से कम लाइट में बिना फ्लैश लाइट के हम फोटोग्राफी करते हैं और वो अच्छी फोटोग्राफी होती है, उसी को अच्छी फोटोग्राफी मानी जाती है। फ्लैश में थोड़ा सा फ्लैश चलाने पर फ्लैट हो जाता है, कभी ओवर हो जाता है, कभी अंडर हो जाता है।
0: लेकिन आज भी जो आप लोगों के हाथ में इतने कीमती कैमराज होते हैं
1: जी,
0: वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत महंगे भी होते
1: बिल्कुल,
0: हैं, और उनके लेंस भी जाहिर है कि ज्यादा अच्छे होते होंगे, तो उसमें तो फ्लैश होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं होगा?
1: हमको जज करना पड़ता है कि हम कहाँ पर फ्लैश का इस्तेमाल करें, कहाँ पर नहीं करें। और जो नए फोटोग्राफर हैं, जो फोटोग्राफी नहीं जानते हैं, तो वो कैमरा लिया, चाहे किधर की लाइट हो, कैसी लाइट हो, वो फ्लैश चला के फोटोग्राफी करते हैं।
0: अच्छा साइमा, आप ये हमें बताएं कि चूंकि आप नए दौर की अभी पैशनेट एक फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट भी हैं, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में जो जो फोटोग्राफर हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं या नहीं, क्योंकि आप तो इस प्रोफेशन से जुड़ चुकी हैं?
2: मैम, आजकल डिजिटल का ज़माना आ गया है, कहीं भी देखिए लोग आजकल जो कैमरा जो आ गए हैं वो मिररलेस कैमरा आ गए हैं, जो पहले फिल्म वाले रोल फिल्म वाले जमान पुराने ज़माने में रोल फिल्म के कैमरे आते थे, आज जो है उससे बिल्कुल अलग नए दौर में तुरंत उससे आप वाईफाई का ज़माना आ गया है कैमरा में, उससे तुरंत हम डेवलप कर लेते हैं और फोटो तुरंत जो है कहीं भी पब्लिश के लिए दे दी जाती है।
0: पहले फोटोग्राफ का रोजगार बहुत महदूद दायरा था, आज उसके दायरे बहुत वसी हो गए हैं, तो आपको लगता है कि अभी बहुत एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को इस फील्ड में?
2: जी मैम, ये बहुत अभी जो दौर चल रहा है, जो डिजिटल का जमाना आया है, इसमें बहुत सारी फोटोग्राफी जो बहुत अच्छा अभी एक फील्ड माना जा रहा है, इसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जैसा मैं इवेंट्स में करती हूँ, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कमा जा सकते
0: हैं। आज़ाद साहब, आप मुझे बताइए, आप तो बहुत ही सीनियर, बहुत जमाने से फोटोग्राफी के दुनिया में हैं, आपने सारे मरहले को देखा, आपने उस दौर से अपनी फोटोग्राफी शुरू की जब इसके वसायल बहुत कम हुआ करते थे, तो आज के दौर में और पहले के दौर में फोटोग्राफी सी हुआ है, कितना ये रोजगार से जुड़ा है, और पहले आसान तो था ही नहीं, और अब कितना आसान हो गया है और कितनी इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी?
3: पहले तो महदूद कैमरा होता था, जैसे याशिका लाइका कैमरा 35 का होता था, 120 होता, माइमा होता था, याशिका होता था, मिलॉन

0: होता था, तो 120 से पहले बॉक्स भी को लोग खींचते थे,
1: अच्छा
0: उसके बाद फिर याशिका वाला जब कैमरा आया 120 का, फिर 35 में तब्दील हो गया निकोन वगैरह की तरह से ब्लैक एंड वाइट, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त डेवलप था।
1: जी
0: और उसकी फोटोग्राफी भी होती थी तो उसमें लाइट शेड देख करके लोग फोटोग्राफी करते थे
1: हाँ
0: कि फिगर कैसा है, फिगर का जो फोटो खिंचाने वाला है उसकी कलर क्या है, उस पर भी अपर्चर और इसको देख करके लोग बैकग्राउंड देख करके भी सेट करते थे, लाइटिंग भी, तो उसमें एक निखार आता था, उसमें खूबसूरती पैदा होती थी। आज तो डिजिटल से खींचा और ये कर गया, लेकिन कल जो लाइटिंग करके सेट करके जो लोग फोटोग्राफ करते थे कि भाई कौन किधर बैठा है, बैकग्राउंड क्या है और क्या उसका रिजल्ट आएगा, फिर वो डेवलप करके अपने अपने अंदाज से उसको लाइटिंग से सेट करते थे, डीप प्रिंट निकालते थे, तो वो एक तस्वीर एक उभर के आती थी,
1: जी
0: जैसे तस्वीर अपनी कहानी बयान कर रही हो। तो अब वो दौर ऐसा ऐसा चेंज होता गया, कैमरा ऐसा ऐसा आते गए, फिर कलर का इजाद हो गया।
1: कुछ सालों तक रखा जा सकता है अगर उस, क्योंकि अब तो हार्ड पेपर में फोटोग्राफ्स बहुत कम ही निकालते हैं लोग, लेकिन अगर उसको निकाला जाए तो क्या वो रहता
0: जो
1: है
0: जो
1: उतना?
0: प्रिंट अभी बन रहा है, जो शीट में या शादी ब्याह के जो बनता है या लोग लार्ज करके रखते हैं, तो वो कलर में भी टाइमिंग है, ऐसा नहीं कि 10 20 40 साल में ख़त्म हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट तो 100 साल 200 साल से भी 150 साल भी उसको रखते थे फाइल से। आज भी मेरे पास 40 साल पहले की तस्वीरें सब बना के रखी, जो मैं क्लिक से फ़ोटो खींचा करता था।
1: जी
0: फिल्मों में भी मैंने किया है, 100 रुपये महीने पे हमने काम किया, स्टिल फोटोग्राफी की है, तो हमको बताता था किस एंगल से लेना है, ऐसे लीजिए, इस तरह से लीजिए, बैकग्राउंड देखिए इस तरह है, आप यहाँ आइए, तो वो सब एक सीखने का मौका हमें वहाँ भी मिला। और हम फिर यहाँ आए तो डबल रोल ट्रिपल रोल भी फोटोग्राफ करना शुरू
1: आज
0: किया।
1: तो आज आपको क्या लगता है कि आज इसमें रोजगार ज्यादा मिल रहा है लोगों को, बच्चों को? एक तो पैशन भी हो गया है, लोगों में जुनून हो गया है, उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया है और काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, तो ये पहले से ज्यादा नेबल हो गया है
0: हाँ,
1: बहुत।
0: पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी कम हो गया है, जैसे अब कम पैसे में मामूली 2000 कैमरे लीजिए और मोबाइल लीजिए, उसे भी लोग खींचना शुरू कर दिए, या अपने बहुत सारे हैं लोग घर के लोग हैं अपना खींचते कीजिए, उसमें कोई लड़का है
1: मोबाइल से खींच
0: मोबाइल
1: रहे
0: से
1: हैं
0: खींचना
1: जी
0: किया, और अपने आजकल पोर्टर बन गया, किस तरह से घूम रहे हैं ये हो रहे हैं इवन देखा, और उसके बाद कहीं किसी यूट्यूब में या इसमें डाल दिया उस, तो उसे फ़ायदा हो जाता था अच्छा खासा, और अभी रोज़गार बढ़ रहा है इसमें।
1: अब तो बढ़ रहा है,
0: हाँ, अब तो
1: रोजगार बढ़ रहा
0: देखता
1: है।
0: कि हमें पैसा आना चाहिए, क्वालिटी हो या नहीं हो सिर्फ पैसा आना चाहिए, मेरी अर्निंग होनी चाहिए, हम फैमिली मेंटेन करें। अब कुछ लोग कि ये बहुत पैसा खर्च करके अच्छे प्रोफेशनल बन के बहुत पैसा कमा रहे हैं।
1: तो आप इसको इसको क्या समझेंगे, अच्छी अलामत या फिर मतलब ये कि पैसा कमाना भी जरूरी है?
0: नहीं, महसूस लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं ये वर्क करते हैं, अपने आप क्वालिटी को दिखाने के लिए या हाई अपने आप को कुछ अच्छा शो करने के लिए भी इसको आप फील्ड में आते हैं, बाकी उनका बिजनेस है, दोनों काम करते हैं,
1: दोनों
0: ये
1: काम
0: भी
1: करते
0: काम
1: हैं
0: हो वो भी काम हो।
1: जी। जावेद साहब, आप बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि इससे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं उन पर कुछ ऐसा असर, खराब असर पड़ रहा है? जब चूंकि अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल से फोटो खींच ली जाती है, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ इससे एक फायदा भी है कि कभी आप एट्रैंडम, चूंकि हम लोग जब आप मीडिया फील्ड में होते हैं तो मीडिया फील्ड में अचानक से जब किसी चीज़ की कोई तस्वीर चाहिए होती है तो अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल से खींच करके आप अखबार में दे देते हैं, तो ये दोनों ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बातें हैं
0: जी
1: इसमें।
0: जी इसमें यह है कि आज के दौर में जैसे कोई घटना कहीं पर घटी तो मैं दूर में अगर हूँ, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ, और मैं अगल बगल में किसी को फ़ोन कर दिया कि भाई तुम कहाँ हो, अगल बगल में अगर वो अज्ञात अगर मोबाइल से ही वो शूट कर लिया, वो एक तरह से आसानी हो गई। लेकिन जहाँ पर स्टेज की फोटोग्राफी करनी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की करनी है या प्रेसिडेंट की करनी है या मुख्यमंत्री का करना है, तो वहाँ पर इस तरह से उसके लिए प्रोफेशनल होना चाहिए।
1: जी, आपके कहने का मतलब कि खास मौजू, खास वक्त
0: जी,
1: और खास चीजों की अहमियत आज भी है
0: आज
1: और
0: भी है,
1: हमेशा कायम
0: बिल्कुल
1: रहेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसके लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत
0: जरूरत
1: है।
0: है।
1: आपने तो ट्रेनिंग ली होगी साइमा, चूंकि इन लोगों के वक्त में ट्रेनिंग का दौर तो था नहीं, तो आपको ये लगता है कि आज के दौर में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी हैं?
0: ग्रेजुएशन के दौर में मैंने मास कम्युनिकेशन में जब नाम लिखाया
2: तो वहां मैंने स्पेशल सब्जेक्ट अपना रखा, फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन किया।
1: तो आपको वो सारे वसाइल मुहैया करा गए।
2: जी, फिर हमने कॉलेज में कैमरा खरीदा जो कि
1: अच्छा,
2: हमारा पहला डिजिटल कैमरा था, निकॉन का D3100। उससे करते करते अभी हमको फोटोग्राफी, मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी
1: जब
2: उसी
1: आपने
2: से की।
1: इंस्टीट्यूशन में जब इसकी

0: ट्रेनिंग ली, तो
1: जी
0: वहाँ आपको कोई कैमरा दिया गया था वहाँ,
1: जी
0: मतलब एक
1: जी
0: जनरल
1: जी
0: कैमरा रहा होगा।
1: जी जी जी कॉलेज का कैमरा।
0: यानी अब जो दौर है उसमें ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आजाद साहब, आप लोगों का तो दौर जो था उस जमाने में तो इसकी ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी, इस हिसाब से तो ये आज अहमियत इसकी बढ़ी है।
1: नहीं, पहले तो ट्रेनिंग क्या, वो जो लोग नेशनल में आए तो खासकर कुछ जो बड़े बड़े फोटोग्राफर थे उसके एंगल को एडप्ट करते थे, उनसे पूछते रहते थे, उनसे मालूम करते रहते थे। और जब प्रिंट वगैरह भी बनाते थे तो उनसे स्टूडियो वाले से भी मना करते कि भाई अगर हमें बनाना हो, हम अपने यहाँ बनाए, आपके यहाँ आएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, जल्दी मिलेगा और हमें फर्स्ट पेज पर देना है, पेपर में छपना है। तो वो ऐसा से उनसे खींच करके यानी सीख करके उनसे वो फिर हम अपना वो काम कर लेते थे अपने ही घर पे। और फिर यही तो प्रेस में भी एल हो जाते थे, जो अपना जल्द प्रिंट बनाया दे दिया ला करके।
0: फोटोग्राफी का जो एक ये रहा पहले, अब तो है कि चूंकि अब सब डिजिटल हो गया है और कंप्यूटर पर बैठ करके उसको एडिट कर दिया, उसको ऐड कर दिया, उसको पेपर में डाल दिया, लेकिन पहले तो उसके लिए भी प्लेट तैयार की जाती थी ना जावेद
1: बिल्कुल
0: साहब।
1: बिल्कुल,
0: हाँ हाँ
1: पहले क्या होता कि जैसे हम लोग फोटोग्राफ किया तो हमें देना है तो
0: जी
1: हम ब्लॉक वाले के यहाँ जाते थे, तो ब्लॉक वाला वो फिल्म सिलेक्शन होता था फोटो, और ब्लॉक वाले वो हट से फिल्म बनाते हैं उसका। फिल्म बनाने के बाद हम लोग वो ऐसे ही सुखाते हुए, क्योंकि वक्त कम होता था, दूसरे शहरों में भी जाना होता था, स्टेट में जाना होता
0: तो आप लोग
1: था,
0: उसको कैसे
1: तो हम लोग
0: सुखाते थे?
1: जल्दी उसे फिल्म बनाया, पाँच
0: हाँ
1: 10 मिनट बना, लेके दौड़े जाते थे प्रेस में
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: भाई, और उसको हाथ में से सुखाते जाते, वहाँ पहुँचा तो सूख जाता था, फिर फर्स्ट पेज पे वो निकल जाता था, इसलिए कि फर्स्ट एडिशन सेकंड एडिशन भी फिल्म के जरिए बनता था, वो लग गया। उसके बाद फिर उसका फिल्म तैयार हो, प्रोसेस हुआ, फिर प्रिंटिंग होता था।
0: जावेद साहब, आप लोगों के वक्त में तो डिजिटल थोड़ा अर्लियर इसमें ही आ गया, तो आज के दौर में डिजिटल जब आप डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, जब उसको कंप्यूटर पे एकत्र, कभी ऐसा भी होता होगा जब आपका कैमरा या डिजिटल कैमरा या वो चीजें साथ नहीं देती होंगी, तब वैसे वक्त में आप क्या करते हैं? क्योंकि एक फोटोग्राफर की ये बड़ी जिम्मेदारी
1: जी
0: होती है कि
1: हाँ,
0: जिस फोटोग्राफ के लिए कहा गया है उसे वो चाहिए ही चाहिए, तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है, कभी डिलीट हो गया या तब वैसी हालत में आप क्या करते हैं?
2: नहीं, अगर अगर हम फोटोग्राफी कर लिए, किसी कारणवश वो इरेज हो गया, डिलीट हो गया,
0: जी
2: तो वो एक चिप से, कार्ड से कंप्यूटर में डाल करके हम उसको रिकवर करते हैं, और रिकवर करने से वो तस्वीरें हमको दोबारा
0: जबकि ये
2: मिल
0: इसके
2: जाती हैं।
0: बरअक्स पूरा पहले के इसमें, अगर आप तो फिर आप वो फोटो नहीं
1: लाइट लग
0: नहीं
1: जाता था, जैसे डेवलपिंग हम लोग करते हैं
0: जी
1: तो डेवलप करते करते हुआ कि कोई लाइट खुल गया या ओवर कर दिया, बहुत
0: हाँ
1: ज़्यादा डीप हो गया, तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसका केमिकल मिलता था,
0: जी
1: उसको हल्का करने के लिए जब फिल्म हल्की हो गई तो प्रिंट निकल जाता था।
0: तब
1: ऐसा
0: तो
1: नहीं
0: काफी
1: कि
0: वक्त लगता
1: हाँ,
0: होगा
1: नहीं
0: उसमें।
1: वक्त नहीं लगता था, 2-10 मिनट लगा, अब ओवर हो गया या अंडर हो गया, तो अंडर होने में ज़्यादा परेशानी होती थी। ओवर हो
0: अच्छा
1: जाने पे तो रिड्यूस होता था, लेकिन अंडर में वो एकदम ब्लैंक हो जाता था, तो फिर फोटोज़ की क्लियर आएगी नहीं, ना क्लियर छप सकता था।
0: यानी पहले से आज के दौर में ये बहुत आसान भी हुआ है, और चूंकि प्रोफेशनल भी थोड़ा ये ज्यादा
1: हम लोग
0: बैरियर
1: तो
0: हुआ
1: कभी
0: है।
1: अभी कभी अब डिजिटल का ज़माना नहीं था उस वक्त, लेकिन हम लोग क्या करते कि जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, अब फोटो कहाँ से चाहिए, तो टीवी में हम लोग ले लेते थे फोटो,
0: जी
1: ब्लैक एंड वाइट टीवी था,
0: जी
1: स्टूडियो में देख प्रेस में लगा हुआ था, फोटोग्राफ किया, फ़ौरन गए बनवाने के लिए, प्रिंट बनवाया आला करके यहाँ दे दिया।
0: तो खैर बहुत अच्छी बात है। तो हम ओवरऑल इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बदलती दुनिया में जो फोटोग्राफी का जो सिस्टम बदला है उसका मनफी असर भी है और उसका मजबूत असर भी है। मनफी असर ज्यादा नहीं है, मजबूत असर ज्यादा, यानी पॉजिटिव ये ज्यादा है उसका
1: अभी तो ये हो गया
0: असर।
1: कि जो प्रोफेशनल हैं वो
0: जी
1: तो गंवा रहे हैं, लेकिन जो प्रेस वाले हैं उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना मेहनत करते हैं वो, जितना दौड़ धूप करके। अभी फोटो दूसरा आदमी खींच लिया ऐसे और जा करके न्यूज़ के साथ वो भेज दिया पेपर वाले के लिए, अब वो
0: जी
1: जो प्रोफेशनल खींचते थे या प्रेस वाले हैं तो उनको मिल जाता था, वो उससे काम ले लेते थे,
0: जी
1: बहुत सारे लोग उसको ऐसा ऐसा छटने लगे।
2: हम दिन भर अगर 10 इवेंट करते हैं, अच्छा अच्छा इवेंट कर लिए, और वो अखबार में हमने लीज किया, कंप्यूटर पर डाला, साइट पे डाल दिया, लेकिन जो लोग अपने से फोटोग्राफी करके वो लेके आते हैं ऑफिस में, उसका पैरवी होता है,
0: जी
2: उनकी फोटो छप जाती है, हम लोग जब मेहनत किया
1: नहीं
2: वो नहीं
0: छपती।
2: छपता है,
0: अच्छा
2: डिजिटल
0: अच्छा
2: डिजिटल के ज़माने में।
0: डिजिटल, यानी इसका ये नेगेटिव असर ये
2: जी
0: रहा
2: जी
0: रहा
2: जी जी
0: इसका कि लोग जो प्रोफेशनल हैं, जो जिन्होंने मेहनत किया उन्हें
2: हाँ
0: मेहनत का फल नहीं मिला, और जिन्होंने बस शौकिया ये किया उन्हें मिल गया। वो फोटोग्राफर्स जितने हैं उन्हें उनकी हौसला अफजाई करने के लिए या उनकी फोटोग्राफी को एक

0: प्लेटफॉर्म देने के लिए नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कभी कभी गैलरी भी लगाई जाती है। उसमें फोटोग्राफर्स को कितनी हौसला अफजाई मिलती है, उससे कितना उन लोगों में इंकरेजमेंट होता है।
1: नहीं, इसमें इससे आम फोटोग्राफर को या खास करके बारे में काम करने वाले फोटो जर्नलिस्ट को इससे फायदा नहीं होता। उसमें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्राइवेट फोटोग्राफी करते हैं, जो उन लोगों से जुड़े होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांस मिलता है।
0: यानी साइमा, आपको इस तरह का मौका
1: हाँ,
0: मिला? आप तो इस तरह के लोगों से और एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा कभी आपको मौका मिला जहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ्स, कुछ खास फोटोग्राफ्स, क्योंकि सारी फोटोग्राफ्स तो खास होती नहीं है, कभी कभी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आज़ाद साहब की कई फोटोग्राफी मैंने देखी है जो बहुत अच्छे एंगल से ली गई है और उसे बहुत दिनों तक बड़ा अच्छा ये किया जाए। तो आपको ऐसा कभी मिला मौका के, और आप ऐसा लगता है कि यहाँ पे उसका कोई फायदा मिला होगा? आपके यहाँ, आपके साथ ऐसा हुआ है?
2: जी, मेरे साथ हुआ है। ज्ञान भवन में फोटो वीडियो एक्सपो लगा था, जिसमें मेरी खींची एक महिला जो कि गमला और पेंट करती है, वो रंग रही थी और मैंने उसको कैप्चर किया था। वो मेरी फोटो सबसे खास है और वो डिस्प्ले की गई थी फोटो एग्जिबिशन।
0: पहले फोटो गैलरी, फोटो एग्जीबिशन इस तरह का कोई इनकार नहीं किया जाता था जिससे फोटोग्राफर की हौसला अफजाई हो, बहुत कम पैमाने पर किया जाता था। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए जिससे बदलती दुनिया में और भी उसको फरोग मिल सके?
3: बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए। पहले भी हुआ करता था, ऐसा है नहीं कि पहले
0: अच्छा
3: एग्जीबिशन शुरू हुआ करता था।
1: पहले
0: जी,
1: एग्जीबिशन तो लगता था, अब नहीं लग रहा,
0: अब नहीं,
1: सरकार
0: कितने
1: सरकार की
0: सालों से
1: तरफ से।
0: नहीं लग रहा।
1: हाँ,
0: उसमें उसमें
1: नहीं,
0: उनकी हौसला अफजाई की
1: उसमें
0: जाती थी
1: उसमें हाँ
0: फोटोग्राफर की।
1: पार्टिसिपेंट होता था, उसमें
0: जी
1: लोगों को प्राइज मिलते थे, पैसे भी
0: जी
1: मिलते थे।
0: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए, बहुत शुक्रिया जावेद आलम साहब, बहुत शुक्रिया साइमा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट फोटोग्राफर आज़ाद साहब का।
4: सामिन, आज आलमी योम फोटोग्राफी है, इस मुनासबत से पेश खिदमत था ये मुज़ाकरा बदलती दुनिया में बदलती फोटोग्राफी। इसके शुरका थे जनाब मुश्ताक अहमद, जनाब जावेद आलम, मोहतरमा सीमा अहमद और निज़ामत थी सरीन फातमा की। अब पेश खिदमत एक मकाला, मौजू है उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात। मकाला निगार हैं मोहतरमा ज़र निगार यास्मीन।
5: उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात। जदीदियत के अहम रुझानात क्या हैं, इस तहरीक का आगाज़ कब हुआ और क्यों हुआ? इस तरह की तमहीदी गुफ्तगू के बग़ैर अपनी इस बात का आगाज़ करना बेहतर है, ताकि उर्दू गज़ल पर इस तहरीक के असरात का एक अजमाली जायज़ा सामने आ सके। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर किसी भी बातचीत का आगाज़ करने से पहले ये वाजे कर देना ज़रूरी है कि यहाँ इजहार ख्याल की दो समतें होंगी। एक तो ये कि उर्दू गज़ल के मौजूआत पर इस तहरीक का क्या असर हुआ, और दूसरे ये कि गर्चे अगर मौजूआत अपना उसलूब खुद मुंतखब या मुतय्यन करते हैं, मगर असालीब में वाकई कोई तब्दीली आई या नहीं, अगर हाँ तो क्या और किस कदर। इन्हीं दो निकात को लेकर आगे बढ़ती हूँ। सिर्फ ये कह देना भी गलत होगा कि उर्दू गज़ल की रवायत में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के ही बयानात मौजूद हैं। मीर के यहाँ गमज़ात के साथ साथ अपने अहद के जो दुख दर्द मौजूद हैं, उनसे न सिर्फ पूरी उर्दू दुनिया वाकिफ है, बल्कि उनमें से बाज़ बयानात तो आज भी कदरे बामानी और रिलेवेंट हैं कि हैरत होती है। मसलन, मीर साहब, ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार, और ये शेर देखिए कि सहल सी जिंदगी ये काम के तई अपने ऊपर न कीजिए दुश्वार। गालिब की दूरबीनी तो मशहूर जमाना है, मैं अंदली पे गुलशन ना आफरीदा हूँ का दावा सिर्फ दावा नहीं हकीकत है, और असलूब भी मुलाजा हूँ। ना गुले नगमा हूँ ना पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। तू और आराइशे खमे का कुल, मैं और अंदेशे हाय दूर दराज। कौन कह सकता है कि ये अंदाज़े बयां इस्तारातो कनाया से खाली है, मगर असल सवाल अपनी जगह रह जाता है कि ये तो जदीद तर्ज फिक्र या तर्ज इजहार के सिर्फ चंद मिसालें हैं। मजमूई तौर पर उर्दू गज़ल जदीदियत की तहरीक से कब, किस तरह और किस हद तक मुतासिर हुई, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें 1960 के फौरन बाद के शेरी सरमाए का जायजा लेना हो।

0: कम नहीं, ठहरा हुआ कहीं पे मेरा दिल कहीं रवां, ठहरा हुआ कहीं पे मेरा दिल कहीं रवां, अबरू सा गम ख्याल के धारे से कम नहीं, अबरू सा गम ख्याल के धारे से कम नहीं। मक्ता मुलाजा कीजिए, अपनी ज़ुबाँ का ज़ख़्म तो भर जाएगा मगर, अपनी ज़ुबाँ का ज़ख़्म तो भर जाएगा मगर, अख्तर ये फ़ायदा भी खसारे से कम नहीं, अख्तर ये फ़ायदा भी खसारे से कम नहीं।
1: सामिन कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब शाहिद अख्तर। इसी के साथ आज का उर्दू पूरा अंजुमन अब यहीं अख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। फिर मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहि सं गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल हमालू माँ।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
2: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
6: भोर होते उठ जाओ, किएक तो

0: द्योतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि। फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि। ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जँ नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगम से। गायक कलाकार हैं मुकेश और लता मंगेशकर। गीत हसरत जयपुरी की है और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

संगम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर। इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीतकार थे हसरत जयपुरी। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कश्मीर की कली से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत SH बिहारी का है और इस गीत को संगीत से संवारा है OP नैयर ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420 2233।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420 2233 पर कॉल करें।

सरगम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल सरों में। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज़ AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म महल से, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: निगाहें मस्ताना देख सम

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रांति से, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीत संतोष आनंद का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोकगीत। पहला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है संगीता सिन्हा का।

मीरा मिश्रा और सहेलियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये नाचारी लोकगीत के अंतर्गत। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं ममता देवी के स्वर में।

ममता देवी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। अगला लोकगीत हम आपको सुनवाते हैं मीरा मिश्रा एवं सहेलियों के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज। आइए इनसे सुनते हैं बांसुरी वादन पर राग अहिर भैरव, अलाप, जोध और झाला।
1: नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान पंडित किशन महाराज जी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे अपने गुरु की छवि दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनके साथ एक मंच पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है और ये संभव हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं इस लायक तो नहीं हूं, मगर जो भी मैंने टूटा फूटा सीखा है वो प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य महाराज जी, चाचा जी से आशीर्वाद चाहता हूं और उपस्थित गुणीजनों से सबसे मैं इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहिर भैरव, आलाप जोड़ झाला और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

श्रोता भी आप सुन रहे थे रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज से बांसुरी वादन पर राग अहिर भैरव अलाप जोध और झाला। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
2: जी,
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
3: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
2: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
3: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
2: जी,
3: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
2: जी,
3: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
2: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
3: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
2: जी,
3: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
2: जी,
3: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
2: जी,
3: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
2: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
3: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
2: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
3: मार्केटिंग गुरु
2: या म्यूजिक गुरु।
3: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
2: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
3: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
2: जी
3: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
4: नमस्कार साथियों, कलकल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती है।
5: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
4: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
5: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
4: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
6: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।

0: क्यों? मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है। मैं नीचे क्यों जाऊं?
1: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
0: अच्छा, वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
2: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
0: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है? पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
1: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
0: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
0: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी। उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
0: हाँ अब मैं क्या करूं।
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
1: कूद जाओ ना।
0: कूद जाऊं?
1: डरो मत।
0: हाँ?
1: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
0: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
2: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं,

0: अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
1: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते? उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
2: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
2: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
2: अच्छा,
3: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
2: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
0: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदूसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।

इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखो मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी, पानी, पानी।

0: 啊，
1: 你好，爸，
0: 你，
1: एक बार फिर कोशिश करो,
0: पा,
1: हाँ,
0: नि,
2: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
3: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
4: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
4: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार। उमंग।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर सेलिब्रिटी से। गायक कलाकार हैं अभिलिप्सा पांडा। गीत रचना योगेश पंडित ने की है

राज बर्मन को भी आप सुन रहे थे फिल्म मिशन मंजू में। संगीत निर्देशन राघव सचर ने किया था। गीत रचना रोहित शर्मा ने की थी। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सिमर कौर और नवी शरण की आवाज में, फिल्म हीर एक्सप्रेस से। गीत के बोल लिखे हैं हरमनजीत ने, संगीत दिया है अव्य शरा ने।

गीतकार एमटी तुड़ाज और संगीत निर्देशन अर्को ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म रक्षाबंधन से। गायक कलाकार हैं हिमेश रेशमिया और निहाल तौरो। गीत रचना इरशाद कामिल ने की है और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का यह गीत। गीत रचना अमिता भट्टाचार्य ने की थी, संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आँखों की गुस्ताखियाँ से। गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा, गीत और संगीत दोनों ही विशाल मिश्रा के हैं।

विशाल मिश्रा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का यह गीत। इसी के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार श्रोता बहनों, आज इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानती हैं बहनों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे मिलते हैं समसामयिक मुद्दों पर चर्चा लेकर, साथ ही फिल्म संगीत का भी भरपूर आनंद लेते हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि आज प्रारंभ में हमारी चर्चा का विषय है विश्व फोटोग्राफी दिवस और आगे चर्चा है विश्व मानवतावादी दिवस पर। तो आइए पहले हम विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कुछ बातचीत कर लें। प्यारी बहनों, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी की कला, इतिहास और समाज में उसके महत्व को समझने तथा फोटोग्राफरों के लिए योगदान और सम्मान देने का अवसर है। श्रोता बहनों, एक तस्वीर केवल किसी क्षण को नहीं दर्शाती, बल्कि वह उस समय की भावनाओं, घटनाओं और परिस्थितियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। बहनों, फोटोग्राफी का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पुराना है। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने डैगेरोटाइप प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहनों, आज फोटोग्राफी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फोन के कैमरे ने इसे आम लोगों तक पहुंचा दिया है। जन्मदिन, विवाह, यात्राएं, प्राकृतिक दृश्य, रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे पल, हम तस्वीरों के माध्यम से उन्हें संजोकर रखते हैं। सोशल मीडिया के दौर में फोटोग्राफी अभिव्यक्ति और संवाद का एक प्रभावी माध्यम भी बन गई है। बहनों, फोटोग्राफी का महत्व केवल सुंदर तस्वीरें लेने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पत्रकारिता में तस्वीरें घटनाओं की वास्तविकता को सामने लाती है, विज्ञान में शोध और खोजों को दर्ज करती है तथा इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रमाण के रूप में काम करती है। बहनों, वन्य जीव और प्रकृति फोटोग्राफी पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहनों, एक अच्छी तस्वीर के पीछे केवल आधुनिक कैमरा नहीं, बल्कि फोटोग्राफर की दृष्टि, धैर्य, रचनात्मकता और सही क्षण को पहचानने की क्षमता होती है। तो श्रोताओं, वास्तव में फोटोग्राफी हमें यह सिखाती है कि साधारण दिखाई देने वाली क्षणों में भी असाधारण सुंदरता छिपी हुई है। यह दिन हमें प्रेरणा देता है कि अपने आसपास की दुनिया को केवल देखें ही नहीं, बल्कि उसे संवेदनशील और रचनात्मक समझें। तो श्रोताओं, आगे पुनः हम आपसे बातचीत करेंगे। आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता बहनों, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं नारी संसार। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं छोटी मुलाकात आधारित वार्ता, विषय है आत्मरक्षा। वार्ताकार हैं रजनी कुमारी।

नमस्कार बहनों, मैं हूँ रजनी। नारी संसार के एक छोटी मुलाकात अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किशोरियों के लिए आत्मरक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास के टिप्स के बारे में। श्रोता बहनों, किशोरावस्था वह समय है जब हमारी बेटियाँ और बहनें नई चुनौतियों का सामना करती हैं। यह समय है उन्हें मजबूत बनाने का। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। लड़कियों को सिखाइए कि अनजान लोगों से दूरी बनाए रखे, खतरनाक परिस्थिति में मदद मांगे और जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के छोटे छोटे गुर का इस्तेमाल करे। साथ ही साइबर सुरक्षा को ना भूले। सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतना चाहिए। पासवर्ड मजबूत रखे। अजनबियों से बातचीत नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। बेटियां खुद पर भरोसा रखें, अपनी राय खुलकर रखें। खेलों, भाषण, नृत्य या नाटक जैसी गतिविधियों में भाग लें। जब आप खुद पर भरोसा रखती हैं, तो लोग भी आप पर भरोसा करते हैं। यानी कि आपको अपने आप पर पहले खुद पर भरोसा रखना आना चाहिए, तभी आप सशक्त बन पाएंगी। तो बहनों, आज अपनी बेटियों को सिखाइए सुरक्षित रहना, सतर्क रहना और आत्मविश्वासी बनना। यही नारी संसार का संदेश है और नारी संसार के इस अंक के जरिए मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियाँ कहीं से कतई कमजोर नहीं है। वो खुद पे जब तक आत्मविश्वास नहीं करेगी, खुद अपनी शक्ति पहचानेगी नहीं जब तक, तब तक औरों के सामने और दुनिया के सामने कमजोर प्रतीत होंगी। तो खुद अपनी शक्ति को सशक्त बनाइए और आत्मविश्वास जगाइए ताकि

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800420233 पर कॉल करें।
2: श्रोताबहनों, स्वागत है पुनः आपका नारी संसार कार्यक्रम में। आइए हम पुनः कुछ बातचीत करें। विषय है विश्व मानवतावादी दिवस। प्यारी बहनों, विश्व मानवतावादी दिवस मानवता, करुणा, समानता और विवेकपूर्ण सोच के मूल्यों को समर्पित दिवस है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन का वास्तविक महत्व एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग और संवेदनशीलता में है। श्रोताबहनों, मानवता का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सम्मान, अधिकार और गरिमा को स्वीकार करना भी है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से उठकर जरूरतमंदों की मदद करना तथा समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ाना मानवतावाद की पहचान है। श्रोताओं, आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, मानवता और सह अस्तित्व की भावना पहले से अधिक आवश्यक है। हमें अपने व्यवहार और कार्यों के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित, सम्मानित और समान अवसर प्राप्त कर सके। श्रोताओं, मानवतावाद हमें तर्क, विवेक और मानवीय मूल्यों के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, दूसरों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करना तथा समाज में शांति और सहयोग की भावना बढ़ाना मानवतावाद के महत्वपूर्ण पहलू है। प्यारी बहनों, वर्तमान काल में दुनिया बहुत से सामाजिक और मानवीय चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में हमें अपने छोटे छोटे कार्यों से भी मानवता की सेवा करनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना भी मानवता की सच्ची मिसाल है। तो बहनों, प्रेम, करुणा और सहयोग के माध्यम से ही हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बहनों, आगे पुनः हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्यारी बहनों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है हर दिन कुछ खास का। हर दिन कुछ खास में आज हम बातें करते हैं जिसका विषय है आत्मविश्वास बढ़ाएं और सफल होते जाएं। बहनों, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। वैसे सफलता किसी भी रूप में हो सकती है, फिर वह चाहे आपका घर हो, करियर हो या कोई और काम हो। सफलता तभी हासिल होगी जब आप खुद को लेकर विश्वास से भरे रहेंगे। श्रोता बहनों, आत्मविश्वास का होना आपके जीवन की सबसे अच्छी क्वालिटी है। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हर कोई आपसे इम्प्रेस रहेगा। बहनों, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हर कोई आपसे इम्प्रेस रहेगा, इसलिए कुछ बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। श्रोताओं, गलतियां करने से ना डरें। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो गलती ना करे। गलती करने से आपका बुरा नहीं होगा, बल्कि बुरा तब कहा जाएगा जब आप अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लेंगे। दरअसल आप गलतियों से ही सीखते हैं। जो बार बार असफल होता है उसे सफलता जरूर हासिल होती है। श्रोताओं, इसलिए जब भी कोई नया काम करने जाएं उसके पहले हिचकिचाएं नहीं,

को दोहराते रहें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को स्टेज पर जाने से डर लगता है या कुछ में आत्मविश्वास की कमी होती है। श्रोताओं, ऐसे में आप उस चीज़ को बार बार करें ताकि आपका मनोबल बढ़े। इससे आप जिस चीज़ को करने से हिचकिचाते हैं वह आपकी ताकत भी बन सकती है। खास तैयारी करें। श्रोताओं, जिंदगी में मौके हजार मिलते हैं, लेकिन फिर भी हर मौके को अंतिम मानकर चलें। जैसे आप किसी प्रतियोगिता, क्विज या डिबेट में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाएं, ताकि मौके पर आपका आत्मविश्वास जरा भी कम ना हो। परिणाम चाहे जो भी हो, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि यही आप कर सकते हैं और यही आपको करना चाहिए। तो बहनों, चलते चलते पुनः हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: बहनों, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.5%

0: 6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
1: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक

0: प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधा प्रतिशत गिरावट का रुख है। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारी स्टूडियो के घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे दोपहर 1:15 पर। दो बजकर दस मिनट पर हम आपको सुनाएंगे रोजगार सूचना। सुगम संगीत का आनंद लेंगे दिन के 3:00।

युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी हम आपको सुनवाएंगे। संध्या 5 बजे युवाणी में श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 5:40 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:10 पर।

गाम घर कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:30 पर। गाम घर कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे घर आंगन, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7 बजे, संध्या काल में आप फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे 7:50 पर।

मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगारहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। श्रोता आज रात्रि काल में 10 बजे आनंद लेंगे लोक गीतों का हमारे लोक माधुरी कार्यक्रम में। गीतों के रंग का आनंद लेंगे 10:30 पर। सभा की समाप्ति 11:10 पर समाप्त की जाएगी।

0: श्रोताओं, भी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की,
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी,
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: श्रोतो, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

राजेंद्र मेहता, मुकेश और महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म विराग से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए सुनते हैं फिल्म बैराग का यह गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म वैराग्य का यह गीत। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म 9-2-11 से। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी ने की है, संगीत दिया है SD बर्मन ने।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बाहर के। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म आया सावन झूम के। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बाहर के। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, गीत रचना आनंद बख्शी ने की थी। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी से। संगीत निर्देशन चित्रगुप्त ने किया है।

शाहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म नील कमल से। संगीत निर्देशन रवि ने किया था, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी। श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म गीत से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर। गीत रचना हसरत जयपुरी ने की।

आपकी कसम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन ने किया था। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सफ़र अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सुपौल जिले के दौरे के क्रम में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री चौधरी ने बलुआ बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के छातापुर प्रखंड के चैनपुर में निर्माणाधीन कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना का स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजना कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक के खिलाफ पिछले दिनों आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज पटना में लोकभवन मार्च निकाला गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में गांधी मैदान के निकट जेपी गोलंबर से मार्च आगे बढ़ता हुआ डाक बंगला चौराहा पहुंचा। आयकर गोलंबर के करीब पहुंचने पर मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य पार्टी

0: नेताओं को हिरासत में ले लिया है। श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मार्च लोक भवन तक था, लेकिन बीच रास्ते में ही मार्च को रोक दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आज अपराह्न 5 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। पटना के ज्ञान भवन में आज से 5 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित इस मेले में 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। रोजगार मेले से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-29-65-65-6 पर संपर्क किया जा सकता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की कम दबाव वाली पट्टी ट्रफ रेखा पटना के दीघा से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा के हिलसा में सबसे अधिक 78.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश के कारण राज्य से होकर गुजरने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान के अत्यंत करीब पहुंच गया है। गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रेवा घाट, वैशाली के हाजीपुर और गोपालगंज के डुमरिया घाट में लगातार बढ़ रहा है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान को पार कर गया है। वहीं कटिहार के कुर्सेला और किशनगंज के तैयबपुर में भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज कृषि टास्क फोर्स की बैठक हो गई। इस दौरान ड्रोन के जरिए कीटनाशक और तरल उर्वरक के छिड़काव को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को केसीसी ऋण योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में केंद्र सरकार प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 10 दिवसीय मशरूम और गोपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन आरसीटी के निदेशक मुन्ना मिश्र ने किया। अरवल के पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप असीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज सुपौल जिला के दौरा के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। जनाब चौधरी ने बलुआ बाजार में साबिक वजीर आला आजहानी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की बरसी पर उनके मुजस्मा का इजरा किया। वजीर आला ने जिला के छातापुर ब्लॉक के चैनपुर में जेरे तामीर कोसी मेची बैन रियासती लिंक प्रोजेक्ट के मुकाम का भी जायजा लिया और अफसरान के साथ जायजा मीटिंग भी की। इस दौरान उन्होंने अफसरान को प्रोजेक्ट के काम को मियारी ढंग से वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। पेपर लीक के खिलाफ गुज़श्ता दिनों तहरीक कर रहे

0: है तलबा पर लाठी चार्ज और फायरिंग के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से आज पटना में लोक भवन मार्च निकाला गया। पार्टी के सीनियर लीडर और कानून साज असेंबली में हिजब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव की कयादत में गांधी मैदान के करीब जेपी गोलंबर से मार्च आगे बढ़ता हुआ डाक बंगला चौराहा पहुंचा। इनकम टैक्स गोलंबर के करीब मार्च को आगे बढ़ने से रोका गया। इस दौरान मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर राजद रहनुमा तेजस्वी प्रसाद यादव और दीगर लीडरान को हिरासत में ले लिया। जनाब यादव ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उनका मार्च लोकभवन तक था, लेकिन दरमियान में ही रास्ते में मार्च को रोक दिया गया। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना की मीटिंग होगी। सेक्रेटेरिएट वाक़ई काबीना ऑडिटोरियम में आज शाम 5 बजे ये मीटिंग मुनक़िद की जाएगी। मीटिंग में कई अहम उमूर पर मुहर लगने का इम्कान है। पटना के ज्ञान भवन में आज से 5 रोज़ा रोजगार मेले का इनाकाद किया जा रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की जानिब से मुनक़दा इस मेले में 20,000 से ज़ायद नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का हदफ रखा गया है। मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों के मारूफ कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। रोज़गार मेले से मुतालिक मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-295-6565 पर राबता किया जा सकता है। जुनूब मगरिब मानसून के कम दबाव वाली पट्टी ट्रफ रेखा पटना दीघा से होकर गुजर रही है। इसके असर से रियासत के जुनूब मगरिब और जुनूब वस्त खित्तों में बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नालंदा के हिलसा में सबसे ज़्यादा 78.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रोहतास और आसपास के इलाकों में कई मकामात पर शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रियासत के शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब खित्तों में कई मकामात पर तेज़ हवा, बिजली गरजने और बिजली गिरने का खदशा जाहिर किया जाता है। शुमाल भारत की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश के सबब रियासत से होकर गुजरने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत मुख्तलिफ नदियों की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक गंगा नदी की आबी सतह पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान के इंतहाए करीब पहुंच गई है। गंडक नदी की आबी सतह मुजफ्फरपुर के रेवा घाट, वैशाली के हाजीपुर और गोपालगंज के डुमरिया घाट में लगातार बढ़ रही है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी की आबी सतह खगड़िया के बलतारा में लाल निशान को पार कर गई है। वहीं कटिहार के कुरसैला और किशनगंज के तैयबपुर में भी नदी की आबी सतह बढ़ रही है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में आज एग्रीकल्चर टास्क फोर्स की मीटिंग की गई। इस दौरान ड्रोन के जरिए जरासीम कुश और रकीक दवाओं का छिड़काव को फरोग देने के साथ ही किसानों को KCC कर्ज मंसूबा से जोड़ने की हिदायत दी गई है। मगरबी चंपारण जिला हेडक्वार्टर बेतिया में मरकजी हुकूमत के स्पॉन्सर्ड ग्रामीण स्वरोजगार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से 10 रोज़ा मशरूम और गाय परवरी तरबियती प्रोग्राम का इनअकाद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह RCT के डायरेक्टर मुन्ना मिश्रा ने किया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:10:54 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC की ओर से जूनियर इंजीनियर JEE भर्ती के लिए आवेदन किए गए हैं। भर्ती में कृषि इंजीनियर सहित संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड के योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन UPSSC की निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा निर्धारित तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। कृषि इंजीनियर से जुड़े पद के लिए संबंधित विषय की योग्यता जरूरी होगी। पदवार शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। इस पद के लिए आवेदन के लिए आप इसकी UPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित JEE भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। श्रोताओं, राजस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों पर बहाली की मांग की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी को पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अनुसार वेतन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में स्नातक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग संबंधित परिषद में पंजीकरण तथा देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2027 के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों की नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। इस पद के आवेदन के लिए इसकी अंतिम तिथि 21 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ रोजगार सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब

0: 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या

0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
3: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके

0: परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी उड़ीसा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध आर

0: डी कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गाँव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 2.35 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः पाना लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म सिंदूर से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म बरसात की रात से। गायक कलाकार कमल बारोत, सुमन कल्याणपुर। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चुपके चुपके से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। गीत रचना आनंद बख्शी ने की है। इस गीत को धुन दिया है SD बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारख का यह गीत। गीत रचना शैलेंद्र ने की थी और इस गीत को अपने धुनों से संवारा था सलील चौधरी ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म सबक से। गीतकार सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना ने दिया है।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सबक का यह गीत। गीतकार सावन कुमार, संगीत उषा खन्ना ने दिया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना से। गीत रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को धुन दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: अच्छा तो हम चलते
1: हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं मंजूर खां।

मंजूर खा के सुर में भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में, लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो 11 साल की उम्र थी उनकी। मंडप के बीच भाई भाभी के फोटो खींचते वक्त मैं भी हर फोटो में बीच में खड़ा हो जाता था।
0: और पहले ऐसा अक्सर होता था कि छोटे का नजर आ ही
1: नजर
0: जाता
1: आ
0: था।
1: ही जाता
0: पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा
1: था।
0: नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते
1: और
0: थे।
1: ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है। हमारी सगी कह रही है कि फोटो में तो एक ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये
0: चलिए
1: जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना?
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते
1: चलिए।
0: हैं।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए
0: और
1: सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लेकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं विविध भारती पर। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और हमने बहुत सारी बातें फोटोग्राफी के बारे में की। और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं, 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
1: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे।
0: जी।
1: तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी और करीब 4,000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और

0: ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है। तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
1: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी संवेदनाएं, हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
0: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है।
0: बिल्कुल
1: इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज़्यादा एक संवेदनशील दिल की ज़रूरत है।
0: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
1: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वह मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीज़ें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
0: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो, मानवता को लेके बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप हैं।
1: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीज़ें हैं ना, यही असली मानवता होती है।
0: हमारे एक सखी ने 4 शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
1: क्या बात है। तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्यौहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
1: बिल्कुल।
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्यौहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा आप लहरिया साड़ी ले आएं, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजें और ढेर सारे तस्वीरें खींचें, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग

0: तरह का श्रृंगार किया जाता है, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है तो जेवर अलग तरह के
1: अलग
0: होंगे,
1: होगा
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है तो
1: जी।
0: अलग तरह के होंगे, जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है, अब लहरिये में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
1: पैटर्न
0: हैं
1: जो
0: ना,
1: बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पे राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहाँ की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी,
0: हाँ
1: है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं हमारे,
0: हाँ
1: वो उनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
0: जो
1: जो
0: पारंपरिक चीजें हैं,
1: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
0: जैसे
1: और
0: आपने पहना
1: लाल कलर
0: जो
1: की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
0: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उस पर कुछ नारंगी या हरे रंग की
1: हाँ
0: धारियां होंगी, अगर
1: बिल्कुल,
0: गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना वो इसे और खूबसूरत बना देता
1: बिल्कुल
0: है।
1: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नज़ारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिज़ाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है, और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
1: अभी तो
0: जॉर्जेट,
1: बहुत
0: कॉटन
1: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली
0: जी, और
1: जी।
0: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
1: और हम अगला संदेश सुनाएं चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें ज़रूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई, ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़ कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे, इन जैसे हल्के और जो
0: हाँ
1: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके, ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियाँ, ये ताज़ा डिज़ाइन आजकल खूब वहाँ के मार्केट में आप देख सकते हैं।
0: सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया के, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहाँ महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
1: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है,
0: इसके अलावा
1: यहाँ तक कि
0: पगड़ियां भी
1: बांधने।
0: पहनी जाती हैं,
1: जी जी
0: पगड़ियों में भी लहरिया होता है, जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना ये हर उम्र की

0: लाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
1: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरे तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
0: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी बात की जाए। क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है, या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, और हम ऐसे ही किसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज़ बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और इसे आहार बना रहे पेट में। तो
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लिखकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ

0: मिर्चें मिलाएं, दो हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीज़ें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में एक चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह का कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, एक कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, एक कटोरी उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें, और थोड़ा सा चाहें तो शिमला मिर्ची डाल लें। सब कुछ मिक्स करके अपने हिसाब से मसाले डाल लें, टिकिया बनाकर इसे सेक लें।
0: और अभी गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

अच्छा, अगर झटपट से आपको बनाना है, कोई अचानक आ जाए, तो आप ऐसा करिए कि थोड़े से पोहे को पानी के में अंदर से धो के उसको निचो लीजिए, और फिर जो उबले हुए अगर आलू पड़े हैं फ्रिज में, तो उसको भी आप इसके साथ में मिक्स कर लीजिए, और फिर देखिएगा जब आप पोहा निचोड़ेंगे ना, तो अच्छे से वो फूल जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद। इसमें उबले हुए आप आलू डालिए, भुनी हुई अगर मूँगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए, एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगो कर उसे भी निचोड़ कर मसल कर

0: से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर, आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा, मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ में इकट्ठा हो जाए।
0: हाँ, टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट इसे आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए, किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज़ में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर, हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे झुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी

0: जी
1: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
0: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहाँ पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
1: हाँ, ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। व्हेन आई वाज इन कश्मीर,
0: जी
1: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ,
0: जी
1: पंकज रैना। रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं।
0: जी
1: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
0: अच्छा
1: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है,
0: जी
1: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे।
0: जी
1: वैसे वो J&K असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी। तो
0: जी
1: उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे। पिताजी
0: अच्छा
1: वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे J&K में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका,
0: क्या बात है।
1: उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा ये नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे, तो
0: अच्छा
1: हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गज़ल सिखाई थी, इसकी फैज़ अहमद फैज़ की। तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। वहाँ से
0: आपको
1: मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था
0: जी
1: 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहाँ से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने
0: मैं
1: लगा।
0: आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाने पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गज़ल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है। तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से
1: वो तो
0: तो
1: मेरी, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
0: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
1: दोनों जहान तेरी

0: लाके।
1: दोनों जहां तेरी।
0: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविज़न पे और रेडियो पे। फिर टेलीविज़न में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहाँ जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज़ में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने कहा था मैं भी गाऊँ, ज़िद की मैंने।
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूँ मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज़ एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज़ थी, ऐ मेरे
0: हाँ
1: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहाँ से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविज़न था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफ़ी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, हम अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कश्मीर
0: कश्मीर

0: का
1: का
0: है
1: रहने
0: जी
1: वाला है,
0: जी
1: या ये चेन्नई का रहने वाला है,
0: जी
1: या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
0: जी
1: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे,
0: जी
1: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे।
0: जी
1: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
0: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
1: हमारे
0: बने हैं,
1: शिक्षक
0: और
1: रहे हैं,
0: जी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद
1: करते हैं,
0: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
1: बिल्कुल
0: रहा है।
1: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक मतलब ये श्रोता हूं, मैं
0: जी
1: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
0: एट जी जी
1: सुनूं,
0: जी
1: या एक और है 107 पॉइंट, जैसे जैसे आकाश
0: आप
1: गोल्ड
0: जहाँ
1: है।
0: जहाँ शहर
1: हाँ
0: बदलेंगे हमारे नंबर्स
1: जी
0: बदल
1: जी
0: जाते हैं,
1: नंबर्स
0: इसलिए
1: बदल
0: आपको
1: जाते
0: अलग
1: हैं,
0: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
1: लेकिन
0: देता
1: मुझे
0: है।
1: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
0: जी
1: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
0: जी
1: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम मतलब प्रसारण होता है।
0: जी
1: मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
0: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
1: हम
0: अच्छा
1: हमेशा
0: चलता
1: साथ
0: जाता है।
1: हैं, हम
0: जी
1: हमेशा साथ,
0: तो अब हम वापस आपके
1: मेरे
0: जीवन
1: बचपन
0: पे
1: में
0: आ
1: चलते
0: जाते
1: हैं। फिर
0: हैं।
1: मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
0: जी
1: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
0: जी
1: अब भी है वो, जहाँ
0: जी
1: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
0: जी
1: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने
0: सेट
1: के
0: लगाने
1: लिए,
0: के लिए। जी
1: लगाने के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था। तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे,
0: जी
1: झुकाव था हमारा।
0: जी
1: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग ना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था
0: हाँ
1: J&K अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
0: जी
1: छोटे थे
0: जी
1: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
0: जी
1: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
0: जी
1: फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था। जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी, जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर
0: बीच
1: सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
0: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूँ तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या
1: बिल्कुल
0: गाता है। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
1: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
0: जी
1: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया।
0: सिखाया।
1: तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
0: अच्छा
1: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
0: जी
1: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
0: जी
1: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: होते थे। तो हमारा फिर

0: ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए तो फिर हम
1: पास हो
0: उसमें
1: गए
0: प्लेस
1: आप
0: करते थे।
1: जी
0: तो वहाँ से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी
1: हाँ
0: शुरुआत हुई। तो यहाँ से तो आना शुरू हुआ ही था जब कोई ना
1: जी
0: कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
1: जी
0: कि उन्होंने हमें खिलने दिया जैसे हम खिलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे। तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
1: हाँ
0: जाते थे, कभी वो लाते। तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से
1: जी
0: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था एक्चुअली, सच बताएं तो मेरे
1: निकल
0: भाग्य
1: पड़े थे,
0: में
1: मतलब
0: ऐसा था कि
1: भाग पड़े थे
0: मैं
1: या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग
1: अच्छा
0: के नहीं आया। तो
1: जी
0: मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया। और मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूज़िक भी सीख रहा
1: संगीत भी
0: था।
1: सीखा
0: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है। तो वहाँ हमने म्यूज़िक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी। और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
1: जी
0: रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
1: जी
0: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
1: एटीन
0: था।
1: ट्वेंटी ईयर्स का एज
0: हाँ
1: होगा, अठारह
0: उन्नीस
1: बीस
0: बीस
1: साल
0: साल की उम्र
1: हाँ
0: थी।
1: हाँ
0: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा। वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूज़िक में ऑडिशन दिया तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से। मैं
1: जी
0: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ
1: का साथ छोड़ा
0: रेडियो मेरे साथ में
1: नहीं
0: हमेशा रहा है।
1: जी
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना
1: हाँ,
0: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
1: और
0: प्रिपेयर भी
1: पढ़ते भी
0: करती
1: रहते थे
0: रहती थी।
1: जी जी
0: मुझसे
1: जी
0: ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
1: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
0: था
1: हैं
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
1: जी
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडलजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे। तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है।
1: जी
0: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
1: जी
0: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज़ की बात के बारे में कई बार बोला,
0: जी
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे 1 मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीज़ें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या
1: जी
0: वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट और सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ़ होती है
1: जी
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे
1: जी
0: मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ
0: ऐसा नहीं।
1: ये
0: मेरे मुझे
1: प्रश्न
0: कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज़ ऐसे कैसी होगी,
1: जी
0: आपके जैसे हमारी आवाज़ कैसे होगी।
1: हाँ
0: लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज़, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज़ वो नेचर से मिलती है।
1: जी
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज
0: के
1: का रियाज कैसे
0: जैसे
1: कर सकते हैं थोड़ा सा?
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है,
1: हाँ
0: मंदर सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो हैं उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैटरी होती है,
1: बेस
0: मतलब

0: काफी
1: बेस
0: अच्छा
1: वाला किया,
0: होता
1: तो
0: है।
1: उसमें
0: हाँ,
1: आप नीचे की तरफ सा
0: सा के बाद
1: नी, हाँ
0: नी।
1: नीचे आए,
0: जी
1: आ,
0: जी
1: आ, नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
0: जी
1: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना आप ऊपर छू सकते हैं। हमारे
0: अच्छा,
1: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खर्च का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
0: खुलती
1: जब
0: है
1: खुलती है।
0: जी।
1: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खर्च का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
0: जी
1: आ आ करके ही कर सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री

0: लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खर्च का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में, उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरी संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने
1: जी
0: बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है।
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल। मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग, या रेडियो एक्टिंग, या फिल्म की एक्टिंग, या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ, आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया। तो अगर आप जेन्युइनली, एनालिटिकली अपने उसको, जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते हैं
1: खुद के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या। और वैसे भी बहुत सारी, कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें, और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन से, वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप
0: हाँ, वो
1: वहां पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते हैं।
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दें ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है। जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज़ बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफ़ी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में मैं पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: रखा
1: है,
0: है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें
1: जी
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत है।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में।
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं
0: तो
1: उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से
1: जी,
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है, तो
0: अच्छा।
1: ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष,
0: जी जी
1: अब वो
0: जी
1: है
0: जी
1: नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना
0: बड़े
1: है।
0: महंगे हुआ करते थे।

0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे. एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे. एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम. एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट. तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी. तो फिर मेरे पास जब वो उस ज़माना वो था तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे. अच्छा उस वक्त ऐसा ज़माना था कि फ़ोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे. मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर. कभी कभी वो फ़ोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे.
1: हाँ.
0: और मेरी आंटी घर पर रहती थी, बोलती थी अरे बेटा किसी का फ़ोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बता दी नहीं, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था.
1: भूल गई.
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी. तो इस तरह का भी वक्त देखा है. तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था. उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय.
1: अच्छा.
0: आई थिंक दैट वाज फॉर कुछ साउथ के लिए था.
1: हाँ.
0: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था. ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी,
0: बहुत बड़े
1: जी,
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर. तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय. फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला. मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं. तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स. तो आई यूज्ड टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था. वहाँ लोगों से मिलना होता था, वहाँ बहुत लोग मिलते थे. कुछ वो मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे. इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के लोग थे. तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था. तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था. आई थिंक आई यूज्ड टू, मुझे लगता है अपने आप को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ. तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा. फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की. फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की. फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा. फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है. मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी.
1: हाँ.
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे भेजा था, बोला उनको ज़रूरत थी उस वक्त एक्टर्स की. तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का
1: जी.
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया. सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था. और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी. वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं. उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए. वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे. तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें. और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का था. मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोनीश बहल. तो वहाँ से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए. लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी. मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे. बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए. महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया. महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी.
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने उस
1: इतने समाने सारे में, सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं. अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
0: जी.
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी.
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा.
1: जी, ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे. आप दो पंक्तियां.
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर

0: का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि हाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट रहे
1: खुशी
0: हैं
1: है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों
0: जी
1: का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया था।
0: होगा।
1: तो
0: हाँ
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे, तो देव साहब

0: प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए
1: जी
0: कश्मीरी कम हियर, कम कम, व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
1: आप थोड़ा
0: करते
1: और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं
1: दें।
0: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी जी
0: था,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर,
1: जी
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर कुछ में भी था,
1: जी
0: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था,
1: जी
0: उनका आनंद डबिंग भी था,
1: जी
0: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका एक कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बैंड्रा में, मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे,
1: जी
0: लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया, तो मैं वहां गया था, तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था,
1: अच्छा
0: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब इट इज
1: उसी
0: इट
1: लूप
0: नॉट
1: में
0: मुझे
1: फंस
0: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
1: जाएंगे।
0: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायना आई एम रोल रियली सॉरी आई कॉन्ट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकेंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो
1: जी
0: मैं बहुत उनका फैन था, बहुत ज़बरदस्त फैन रहा हूँ उनकी फिल्मों का भी, तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा, इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था मुझे मालूम नहीं, ये
1: जी
0: मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियाँ थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था, मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव रोल में, नेगेटिव के लिए मेरा बहुत अच्छा एक
1: जी
0: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूँ, मेरी
1: जी
0: आवाज़ और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
1: कर
0: रोल विल
1: सकते हैं।
0: सूट मी, तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
1: गया
0: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
1: जी
0: देर हैज़ टू बी सम सपोर्ट, जैसे आप तो जानती हैं इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी
1: जी
0: का नाम नहीं ले रहा,
1: जी
0: लेकिन किया तो है ना हमारा,
1: जी
0: मेरा ऐसा कोई था नहीं, कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई
1: जी
0: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है,
1: जी
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था,
1: जी
0: मैं शोज भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग, और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग
0: करते
1: दोनों
0: थे, तो ऐसा ही हमारा
1: करते
0: भी कुछ वैसा ही था,
1: थे जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे यश
1: जी
0: चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो, तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे आई वॉज कॉल्ड 10 बजे मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में, तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूज़िक आता है वो ये, तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी है, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती हैं
1: थोड़ा
0: आप
1: सा आप
0: श्रोताओं
1: गा के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं
0: को
1: तक पहुंचा देंगे।
0: जो बन

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है,
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज़ ऑन एयर है जियो हॉट स्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीज़ें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज़ के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज़ का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं। इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है, इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता, तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या।
1: जी
0: आपकी चीज़ों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे।
1: जी
0: और उन सब चीज़ों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की ज़रूरत तो होती है। आपको
1: बिल्कुल
0: मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है,
1: जी
0: आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है
0: एनग्रॉस किया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम बिल्कुल युवाणी आप सबको अच्छा लग रहा होगा। ख़ासतौर पे हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, और उनको ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। हम बातें युवाओं की करते हैं, युवा देश के आन बान शान होते हैं। समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, और युवाओं को हमेशा चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को अगर करें तो सच्ची निष्ठा के साथ मन लगा कर करें, और ये कोशिश करें कि हम जो भी काम करें वो उसमें हमारा पूरा मन हो, और ये सोच कर हम करें कि जो जो भी रिज़ल्ट होगा, चाहे वो आगे चलकर हम इसके पीछे कुछ घाटा हो जाए हमें, या फिर हम कोशिश करते हैं कि हाँ ये चीज़ का जो हम कर रहे हैं उन चीज़ों से हमें कभी फेल भी हम हो सकते हैं, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में यूं ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए एक सच्चे मन के साथ, एक विश्वास के साथ कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, और किसी भी काम को जल्दबाजी भी करने की ज़रूरत नहीं है। श्रोताओं, युवाणी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनवाते हैं आपको रेडियो रिपोर्ट, हर घर तिरंगा।

हर घर तिरंगा विषय पर आधारित रेडियो रिपोर्ट के साथ मैं दीपक कुमार झा। नमस्कार। हर घर तिरंगा अभियान पिछले 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक मनाया गया। संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के निर्देशानुसार इस दौरान लोगों ने अपने घरों

0: संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना जगाना, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाना और तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव मजबूत करना है। यह नागरिकों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करता है। लोगों के दिलों में देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय ध्वज को केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित न रखकर हमें चाहिए कि हर नागरिक के दिल और घर से इसे जोड़ें। हमने इस अवसर पर दरभंगा शहर के विभिन्न सरकारी संस्थानों एवं आमजनों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम संबंधित बातचीत किया। दरभंगा जिला प्रशासन द्वारा भी पिछले 12 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत तिरंगा यात्रा और विभिन्न स्थलों पर स्थापित स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी से बातचीत करते हुए दरभंगा जिला के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम देशवासियों में एकता, अखंडता और सामूहिक राष्ट्र निर्माण की भावना का संचार करता है।
1: नमस्कार, मैं चंदन कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी दरभंगा। ये कार्यक्रम बेसिकली भारत सरकार के द्वारा आयोजित होती आ रही थी विगत कई वर्षों से, जिसे राज्य स्तर पर भी हम लोग मनाते हैं। और राज्य स्तर पर इस यात्रा का आयोजन दिनांक 13/8/2026 को आयोजित पटना में, और जिला स्तर पर हर जिले में 12/8/2026 को ये हर घर तिरंगा यात्रा 2026 था, जिसके तहत हम लोगों ने इस यात्रा को संपन्न किया है, जो कि कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत संबोधन हुआ, जिसके बाद बेता चौक से होते हुए सभी लोग जो माननीय प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला के हैं और इसके अतिरिक्त अन्य जो गणमान्य जनप्रतिनिधिगण थे वो सब भी उपस्थित थे, उन्होंने अपना कर्पूर जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया वहाँ उनकी प्रतिमा पर। उसके बाद फिर टावर पर महात्मा गांधी जी के भी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, और इसका समापन हुआ इस यात्रा का लोहिया चौक पर, और जिसमें कि अलग अलग संस्थान जैसे कि NSS, NCC, स्काउट एंड गाइड, माई युवा भारत, एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र के कई बच्चे, आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र के कई सारे जो प्रशिक्षक और प्रशिक्षु हैं वो सब लोग, और दरभंगा जिला के जिला स्तरीय और अन्य सभी पदाधिकारीगण इसमें उपस्थित थे। और यह सारा कार्यक्रम जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा के दिशा निर्देश के आलोक में सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई है। तो ये इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पज़ था कि लोगों के बीच राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सम्मान का जो एक मैसेज है उसको दोबारा से उसको रीइन्विगोरेट करना, और लोगों के बीच इस चीज़ का मैसेज देना कि कैसे यूनिटी और इंटीग्रिटी का आइडिया जो है एक इंडिया को एज अ होल नेशन बनाता है। तो इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम लोग इंडियन जो हम लोग का जो एक उस जो लार्जर कॉज को लेकर जो एक सॉलिडारिटी है उसको रिफ्लेक्ट करने का भी मेन पर्पज था। अभी मैं जिला खेल पदाधिकारी के रूप में भी अपना कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ, मुझे अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये सौंपा गया है। और ये खेल विभाग और कला संस्कृति विभाग दोनों ही विभाग से युवाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हो रही हैं जिसमें कि युवाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। उसमें जैसे कि आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र है जो कला एवं संस्कृति विभाग के अंदर आता है, और उस प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग छोटे बच्चों से लेकर किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण देते हैं, म्यूजिकल हो, डांस हो। इसके अतिरिक्त खेल में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ का बहुत ही बड़ा वो एक राज्यव्यापी देशव्यापी योजना है।
2: खेलो इंडिया के तहत
1: भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित की जाती है कि वो अलग अलग खेलों में बहुत ही इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करें। एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र है जो कि दरभंगा है, वो कुछ जिलों में है पूरे बिहार के, तो दरभंगा भी उसमें से एक जिला है। और ये खुशी की बात है कि यहाँ पे बैडमिंटन और हैंडबॉल के मेल प्लेयर्स के लिए जो अंडर 17 के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंशियल ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है।
2: चलते चलते दरभंगा जिला वासियों के जो हमारे यूथ हैं उनके लिए क्या संदेश होगा?
1: मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो खुद को पॉजिटिव रखें हर चीज को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर आर्ट एंड कल्चर या इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ भी जो जिस चीज को परस्यू कर रहे हैं, जो नेशन बिल्डिंग निगेटिव एक परसेप्शन है। एक्स्ट्रा करिकुलर बोलना भी क्या है कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसको चेंज किया गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर बोलने से ही लगता है कि वो एक्स्ट्रा है, अब वो भी मेन करिकुलर का पार्ट है। तो मैं यही बोलूंगा कि वो जो भी कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए और अपने आप को बिल्कुल फैसिनेट तरीके से उस पे काम करें।
0: दरभंगा डाक अधीक्षक

0: तक मंटू कुमार ने बताया कि डाक विभाग की ओर से भी दरभंगा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम किए गए। साथ ही उन्होंने बताया डाक विभाग की ओर से 25 रुपए में तिरंगा झंडा खरीदकर लोगों ने अपने अपने घरों पर फहराया।
1: नमस्कार, मैं डाक अधीक्षक के तौर पे यहाँ 27 जुलाई को योगदान दिया हूँ और हर घर तिरंगा के संदर्भ में दिनांक 13/8/2026 को हम लोगों ने प्रमंडलीय कार्यालय दरभंगा से दरभंगा प्रधान डाकघर के बीच में एक तिरंगा यात्रा शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि तिरंगा के प्रति हमारे नागरिकों के अंदर सम्मान बढ़े, राष्ट्रीय भावना से लोग ओतप्रोत हों और देश की एकता और अखंडता के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव और समृद्ध हो और सुदृढ़ हो। साथ ही डाक विभाग का ये भी एक संदेश था कि हम सिर्फ डाक सेवाओं के माध्यम से ही देश की सेवा नहीं करते हैं, बल्कि समाज के हर एक वर्ग के लिए अपनी सेवाएं ससमय उपलब्ध कराकर तथा अलग अलग समयों में जब भी आवश्यकता हुई है तो हम लोगों ने अपनी राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति स्नेह और प्रेम व्यक्त किया है। इसी संदर्भ में हमारे जितने कर्मचारी थे, हमारे डाकिया बंधु, हमारे प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर हैं, हमारा ASP, हमारे इंस्पेक्टर वर्ग के लोग, हमारे मेल ओवरसियर और हमारे सभी कर्मचारी यहाँ से हम लोग प्रस्थान किए थे डिविजनल ऑफिस से और यहाँ से हम लोग उसका समाप्ति किए थे प्रधान डाकघर में। और जितने भी लोग उसमें शामिल हुए थे, इस यात्रा के समाप्ति पर उन लोगों को भी एक मैसेज दिया गया था कि आप सभी लोग जिस पद पे भी बैठे हुए हैं वहाँ से देश के प्रत्येक नागरिक को और जिले के प्रत्येक नागरिक को जहाँ तक संभव हो सके अपना कंप्लीट योगदान डाक सेवाओं के माध्यम से समर्पित करते रहें। डाकघर के माध्यम से सरकार ने अब 25 रुपये में तिरंगा की भी बिक्री शुरू किया था, तो हमारा लक्ष्य ये भी था कि डाकघर से सभी लोग तिरंगा खरीदें और अपने घरों के ऊपर तिरंगा को फहराएं और ताकि देश को एक सूत्र में बांधने का यह भी एक तरीका है, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, तिरंगा के प्रति सम्मान ये दर्शाने का ये भी तरीका है, ताकि 15 अगस्त का जो दिन था वो सभी के मन में राष्ट्र प्रेम को और समर्पण को, देश के प्रति समर्पण को तिरंगा के माध्यम से प्रदर्शित करने का एक प्रयास था और उस प्रयास में भारत सरकार बहुत हद तक सफल हुई है और डाक विभाग भी उस मामले में पूर्णतः सफल रही है।
0: दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में भी वहां के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति का नारा लगाते हुए तिरंगा यात्रा निकाला गया। अवसर पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर चंदन कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान और गौरव एवं जिम्मेदारी की भावना को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर चंदन कुमार, प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान पर बात रख रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों एवं अन्य श्रोतागण, हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान, गौरव और जिम्मेदारी की भावना को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम है। मेरी आपसे निवेदन होगी कि इस अभियान से आप जुड़ें एवं युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति पूरी तरह जागरूक और प्रतिबद्ध हों। आप अपने देश की भावनाएं, देश के प्रति समर्पण इस अभियान से जुड़ कर के अपने अंदर ला सकते हैं। हमें अपने देश के लिए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हमेशा अपने दिल में सम्मान की भावना रखनी है और इसी भावना को मजबूत करता है हर घर तिरंगा। तो आइए हम सभी लोग इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और देश के शहीदों को नमन करें, आने वाले भविष्य में देश को तिरंगा का सम्मान सुनिश्चित करें। जय हिंद, वंदे मातरम।
0: BSNL के दरभंगा परिचालन प्रमुख नीरज कुमार ने आकाशवाणी से अपने बातों को साझा करते हुए बताया कि इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राहकों के लिए कई सारे सस्ते प्लान जारी किए गए हैं।
3: सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और देश हमारा जिस तरह गुलामी से आज़ादी पाया है उसी तरह आगे हमारा जो हम लोगों को

0: गंदी सोच है, उससे सबसे पहले आजादी मिले सभी नौजवानों को।
1: अभी जो है पिछले 9 तारीख से हर घर तिरंगा कार्यक्रम विभिन्न संस्थानों द्वारा एवं आमजनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर आपकी ओर से क्या कहना होगा?
0: हर घर तिरंगा के तहत हम लोग ने काम किया और इसी के तहत हमने अपने BSNL आवासीय परिसर में एक हर घर तिरंगा के तहत ही एक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति नाटक तथा गान की व्यवस्था थी, आयोजन किया गया। और इसमें हम लोग बच्चे का जो संस्कार होता है वो कैसे देश के प्रति देशभक्ति की भावना को जगाते हुए एक कार्यक्रम किया गया, जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक और सराहा गया। वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे इस कार्यक्रम को देखकर काफ़ी अभिभूत भी हुए और सराहा गया।
1: इसके अलावा हाथ में तिरंगा लेकर के जुलूस भी निकाला गया क्या?
0: इसके तहत हम लोगों की जो कॉलोनी के जो बच्चे थे उसमें हाथ में तिरंगा लेकर के जो हमारे कॉलोनी परिसर में ही चले थे ग्रुप में।
1: तो BSNL की ओर से जो भी कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अपने उपभोक्ताओं के लिए,
0: BSNL के द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ पर बस इतनी सी शुरुआत चाहिए कि एक मुहिम के साथ नए 1 रुपये का सिम जो बिल्कुल 1 रुपये में दिया जाएगा, उसकी शुरुआत पूरे अगस्त महीने तक के चलेगी। ये तो एक शुरुआत है और ये आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये काफ़ी आकर्षक प्लान हमारी ओर से लाया गया। और एक प्लान है आज़ादी का जश्न मनाएं तेज स्ट्रीमिंग और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ। 200 MBPS और 5000 GB का जो प्लान है हमारे पास वो 4x1 1111 रुपया प्रति माह के साथ एक लाया गया, जो कि काफ़ी 88 रुपये छूट उसमें है। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BSNL के तरफ से लाया गया और भी काफ़ी आकर्षक प्लान सब लाया गया, जिसमें ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं।
2: समस्तीपुर DRM कार्यालय में पदस्थापित रेलवे कर्मचारी शशि रंजन ने भी रेलवे कर्मचारियों द्वारा तिरंगा फहराने को लेकर अपना विचार हमसे साझा किया।
3: भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हर रेलवे कोनली पर तिरंगा झंडा फहराया गया। साथ ही सभी रेलवेज के कर्मचारियों के द्वारा तिरंगा झंडा लेकर घूमा गया और यह देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं से यह देखा गया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर शहीद अमर रहे कि जैसे कर्तव्य धन्यों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सभी रेल कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने रेलवे आवास पर तिरंगा झंडा लगाकर एवं मोहल्ले में कॉलोनी में रोड पर तिरंगा झंडा यात्रा निकालकर देशभक्ति से ओतप्रोत एवं देश को आगे बढ़ाने का कृत संकल्प लिया गया। साथ ही साथ हमारे देश की आन बान शान तिरंगा झंडा और 15 अगस्त को फहराकर देश के अंदर हम एकता बनता भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर स्वतंत्रता इसके बलिवेदी पर चढ़ने वाले हमारे वीर शहीद सपूतों को नमन करते हुए हम बड़ी धूमधाम से पूर्व मंडल समस्तीपुर मंडल के सभी जगहों पर धूमधाम से तिरंगा झंडा फहराया गया। समस्त वासवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
2: श्रोताओं, अब जब हम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो ही चुके हैं तो एक प्यारा सा देशभक्ति गीत भी सुनवाते हैं।

0: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के शोधार्थी राजनाथ पंडित ने आकाशवाणी से अपने बातों को साझा करते हुए बताया कि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान फिर एक बार देश भर में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन के उभरा है। उन्होंने अपने काव्य अंदाज में तिरंगा के प्रति अपने प्रेम को दिखाया।
1: नमस्ते, नमस्कार, जय मित्र।

0: के शोधार्थी राजनाथ पंडित ने आकाशवाणी से अपने बातों को साझा करते हुए बताया कि अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान फिर एक बार देश भर में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन के उभरा है। उन्होंने अपने काव्य अंदाज में तिरंगा के प्रति अपने प्रेम को दिखाया।
1: नमस्ते, नमस्कार, जय मिथिला, जय जानकी। हम राजनाथ पंडित, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के शोधार्थी छी। हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर हम अपन किछु बात राखे जा रहल छी। एखन हाल ही में हम सब देखलहुँ जे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह के संग मनेलहुँ। गाम से लऽ कऽ शहर धरि, विद्यालय से लऽ कऽ विश्वविद्यालय धरि सब ठाम तिरंगा शान से लहराइत देखल गेल। एहि अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान फेर एक बेर देश भरि में राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बनि कऽ उभरल। भाल हिमालय सागर पगतल हृदय बहैत अछि जिनकर गंगा, भारत दिस जे भ्रिकुटि देखाओल मर्दल गेल जनु कीट पतंगा, सगर विश्व में जकर वीरता और बलिदान बाजल डंका, आई धरा सँ आसमान धरि शान सँ पहरै हमर तिरंगा। भारतक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रक सम्मान, स्वाभिमान आ अखंडताक प्रतीक अछि। तिरंगाक केसरिया रंग साहस, त्याग आ बलिदानक संदेश दैत अछि। श्वेत रंग सत्य, शांति आ सद्भावक प्रतीक अछि। हरित रंग समृद्धि, विकास आ हरियर भविष्यक आशाक प्रतिनिधित्व करैत अछि। मध्यक अशोक चक्र निरंतर कर्म, प्रगति आ गतिशील भावनाक प्रेरणा दैत अछि। तिरंगा हमरा सबके स्मरण करबैत अछि जे स्वतंत्रता सहज रूपसँ प्राप्त नहि भेल छल। एकरा लेल अनगणित वीर पुत्र पुत्री अपन जीवन समर्पित कयलनि। एहि कारणे तिरंगाक सम्मान प्रत्येक भारतीय के नैतिक कर्तव्य अछि। हर घर तिरंगा अभियानक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के जन जन सँ जोड़ब आ नागरिक सबमे राष्ट्र प्रेम भावना के मजबूत करब अछि। जखन कोनो परिवार अपन घर पर तिरंगा फहरबैत अछि तखन ओ केवल ध्वजारोहण नहि करैत अछि बल्कि राष्ट्रक प्रति अपन सम्मान आ समर्पण व्यक्त करैत छथि। एहि अभियान सँ नव पीढ़ी स्वतंत्रता आंदोलनक इतिहास सँ परिचित होइत छथि। बच्चा सब जानै छथि जे तिरंगा केवल रंगक संयोजन नहि बल्कि त्याग, संघर्ष आ स्वतंत्रताक जीवन जीवित प्रतीक अछि। एहि अभियानक माध्यम सँ राष्ट्रीय एकता आ नागरिक कर्तव्यक भावना सेहो विकसित होइत अछि। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मिथिलाक योगदान अत्यंत गौरवपूर्ण रहल अछि। अंग्रेजी शासनक विरुद्ध चलल विभिन्न आंदोलन सबमे मिथिलाक लोक सब सक्रिय रूप सँ सहभागी रहला। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आ भारत छोड़ो आंदोलन में मिथिलाक युवक, छात्र, शिक्षक, किसान आ सामान्य नागरिक सब महत्वपूर्ण भूमिका निभौलनि। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आ लग पासक क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतनाक व्यापक प्रसार भेल। अनेक लोक जेल गेला, आर्थिक कष्ट सहलनि मुदा स्वतंत्रताक संघर्ष सँ पाछू नहि हटला। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संपूर्ण बिहार आ मिथिलाक गौरव छथि। हुनक त्याग, सादगी आ राष्ट्र सेवा आइयो करोड़ों लोक लेल प्रेरणाक स्रोत अछि। एकर अतिरिक्त अनेक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी छला जिनकर बलिदान स्वतंत्र भारतक आधारशिला बनल। मिथिलाक सांस्कृतिक परंपरा में राष्ट्रप्रेम आ सामाजिक दायित्व के भावना के गहराई सब देखल गेल अछि, समाहित कयल गेल अछि। माता सीता, विद्यापति, मंडन मिश्र, गार्गी आ याज्ञवल्क्य के भूमि मिथिला सदिखन उच्च आदर्श सबक वाहक रहल अछि। हाल ही में सम्पन्न भेल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिलाक गाम गाम में उत्सव के वातावरण देखल गेल। विद्यालय सबमे ध्वजारोहण के कार्यक्रम सब भेल। बच्चा सब देशभक्ति गीत प्रस्तुत कयलनि। युवा सब तिरंगा यात्रा निकाललनि। महिला सब सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेलनि। घर घर में तिरंगा फहराइत देखल गेल। मिथिलाक साहित्य आ संस्कृति सदिखन जन जागरणक माध्यम रहल अछि। स्वतंत्रता आंदोलनक समय कवि, लेखक आ पत्रकार सब अपन लेखनी सँ लोक सब में राष्ट्रीय चेतना जागृत कयलनि। लोकगीत, कविता, नाटक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सब राष्ट्र प्रेमक संदेश पसारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभौलनि। आइयो मिथिलाक चित्रकला, लोक साहित्य आ सांस्कृतिक परम्परा सब राष्ट्रीय एकताक संदेश दैत अछि। एहि कारणे मिथिलाक सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्र निर्माणक महत्वपूर्ण आधार मानल जाइत अछि। हर घर तिरंगा अभियान के केवल एक दिन के उत्सव सीमित नहीं रखबाक जरूरी अछि, आवश्यकता अछि, बल्कि तिरंगा के सम्मान तक

0: सार्थक होयत जखन हम सब एकर आदर्श के अपन जीवन में उतारब। युवा पीढ़ी जो स्वतंत्रता सेनानी सबक संघर्ष से प्रेरणा लकर ईमानदारी परिश्रम आ राष्ट्र सेवा के मार्ग अपनायत तो भारत निश्चित रूप से विश्वक अग्रणी राष्ट्रक रूप में स्थापित होयत। अय अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान हमरा सबके फेर स्मरण करौलक जे स्वतंत्रता केवल इतिहासक घटना नहीं बल्कि निरंतर जीवित चेतना अछि। मिथिलाक लोक सदिखन राष्ट्रहित में योगदान दैत आयल छथि आ आइयो राष्ट्र प्रेमक भावना ओतबे सशक्त अछि। तिरंगा हमरा सबक गौरव अछि। एहि ध्वजा में स्वतंत्रता सेनानी सबक बलिदान देशक सम्मान आ भविष्यक आशा समाहित अछि। आब हमर दायित्व अछि जे हम तिरंगाक आदर्श त्याग सत्य शांति एकता आ प्रगति के अपन जीवन में उतारी तखने धरा सँ आसमान धरि शान सँ पहरैत हमर तिरंगा भारतक गौरव गाथा संसार के सुनबैत रहत। जय हिंद जय जानकी।
1: पत्रकार सुधानंदन झा ने अपने संदेश में आकाशवाणी को बताया कि हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के दिलों और आत्मा में देशभक्ति की भावना को जगाना, भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और नागरिकों को अपने समाज और अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनने का संकल्प लेना है।
2: गोर लागे छे सब गोटे का। हम सुधानंदन झा आए अपने सबक बीच हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रमक विषय उद्देश्य आ महत्व पर अपन विचार साझा करबाक लेल उपस्थित छी। हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकारक एकटा जन भागीदारी पहल अछि जकर उद्देश्य देशक सब नागरिक के मन में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान देशभक्ति आ राष्ट्रीय गौरव के भावना के और मजबूत करबाक अछि। ई जे अभियान छै ई वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव यानी देश का आजादी के जखन 75 वर्ष पूरा भेल रहे तही के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ई आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियानक शुरुआत कयल गेल छलै। एहि अभियानक मूल उद्देश्य खाली घर पर तिरंगा फहरेनाय नहि छै अपितु तिरंगा के साथ सब भारतवासी के कोना भावनात्मक जुड़ाव सशक्त हुए मजबूत हुए ई उद्देश्य हमरा सबके मन में रखनाय छै। ई जे अभियान छै से हमरा अपना आप में एकता अखंडता भाईचारा आ राष्ट्र के प्रति जे हमर अहाँके कर्तव्य छै ओकरा मन पारैत अछि। ई अभियान सब साल मनायल जायत अछि जाहि में समस्त देश के अंदर घर दुकान अपन कार्यालय या अपन निजी व सरकारी संस्थान पर तिरंगा फहरायल जायत अछि। लोक सब अब तिरंगा के संगे अपन सेल्फी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करैत छथि और एकटा देखल गेलै जे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत के कोना कोना तक जे छै राष्ट्रीय भावना और मजबूत भ रहल छै। हमर सबक तिरंगा जे छै ओ केवल 3 रंग के ध्वज नहीं छे अपितु ई भारतक आन बान आ शानक प्रतीक अछि। एहिमे ओहि वीर सभक त्याग बलिदान सम्मान छुपल अछि जकरा हम सब स्मरण करैत एहि तिरंगा झंडा के फहराबैत छी। ई देशक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लेल जे अपन वर्चस्व और सर्वस्व निछावर कऽ देने छला हुनकर सबक याद में एकटा श्रद्धांजलि स्वरूप जे छै से हम सब एहि अभियान के मनबै छी। तऽ आओ सब गोटे से आग्रह अछि जे हम सब हर घर तिरंगा अभियान के उत्साहपूर्वक मनाबी एहिमे भाग ली और झंडा फहरा कऽ एकटा मजबूत एकजुट आ गौरवशाली भारत के निर्माण में अपन योगदान दी। जय हिंद वंदे मातरम।
1: इसी के साथ हर घर तिरंगा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए संकलन और वाचन दीपक कुमार झा का था और प्रस्तुतकर्ता थे अमरनाथ प्रसाद। नमस्कार।

0: न लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: इस विज्ञापन से पहले आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट हर घर तिरंगा। संकलन वाचन दीपक कुमार झा की थी, प्रस्तुति अमरनाथ प्रसाद की। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे युवाणी कार्यक्रम में कि युवाओं को किस तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़कर हमेशा उन तमाम कठिनाइयों से हम आगे बढ़कर अपने आप को पहचाने और अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस उद्देश्य की तरफ हम बढ़ते जाएं। और आकाशवाणी की दरभंगा के स्टूडियो से बढ़ते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि युवाओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा मैथिली गीत।

0: बच्चन, आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, और हम युवानी कार्यक्रम आप सबके सामने लेकर आए हैं। युवानी में हम लोग बातें कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, और विज्ञापन के माध्यम से भी आप सबको बताया गया कि जो सांप काट लेता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, ख़ासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, ख़ासतौर पे जहाँ पे नदियों के आसपास लोगों का घर होता है, वहाँ पर हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सांप काटने पर हमें तुरंत जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर इसका उपचार करना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक और मैथिली गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
1: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, यह था हमारा कार्यक्रम युवाणी। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी युवा दोस्त हैं उन्हें यह कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और इसी वादे के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए आज्ञा युवाणी कार्यक्रम से।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गाने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में श्रेया घोषाल और अभिषेक अरिजीत सिंह को। अगला गाना लिया है हमने फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, जिसे स्वर दिया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

0: की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। 6:30 पर आप सुनेंगे गाम घर। चर्चा का विषय है फोटोग्राफी दिवस और तुलसीदास की जयंती पर चर्चा होगा। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे पारा मेडिकल पारस।

शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे खेती गृहस्थी। चर्चा का विषय होगा फूलगोभी की उन्नत खेती। प्रादेशिक समाचार का समय होगा पटना केंद्र से 7:30 पर। वहीं फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 7:50 से। आठ बजे फिर फिल्म संगीत का समय होगा। वहीं 8:15 पर सिंगरहार कार्यक्रम का समय होगा।

5:55 पर कल सुबह आप सुन पाएंगे कृषि चर्चा। 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दरभंगा से सुबह स्वास्थ्य चर्चा। चर्चा का विषय है नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल।

7:05 पर आप सुन पाएंगे कल सुबह नमस्कार मिथिला। नौ बजकर पाँच मिनट पर आकाशवाणी पटना से आप सुन पाएंगे अंजुमन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से 9:50 पर और 10:30 से।

के 11 बजे आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत, कलाकार होंगे भीम सेन जोशी। फिल्म संगीत का समय होगा 12 बजे, वही नारी संसार का समय होगा 12:30 पर। 1:15 पर आप पुनः सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तीन बजे का समय होगा लोकगीतों का।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

अभी आप राम कुमार मलिक के स्वर में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे। अगला विद्यापति गीत कुमकुम झा के स्वर में।

नमस्कार। आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। राज्य कैबिनेट प्रदेश मे सड़क संपर्क के विस्तार देबाक लेल बक्सर आ भागलपुरक मध्य 336 किलोमीटर पैघ 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेबाक प्रस्ताव के मंजूरी देलक अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता मे आइ राज्य मंत्रिमंडलक बैसार मे एहि आशयक प्रस्ताव पारित कयल गेल। मंत्रिमंडल एक आन निर्णय मे राज्य मे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सँ संबंधित नव अवसर आ तकनीकक विकास लेल टायो संग एक समझौता कयलक अछि। एकर अतिरिक्त सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ बनेबाक लेल एहि वित्तीय वर्ष मे 11,000 निजी नलकूप लगेबाक निर्णय लेल गेल। राज्य कैबिनेट आइ कुल 13 प्रस्ताव के मंजूरी देलक अछि। केंद्र सरकार मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा राष्ट्रीय उच्च पथ के 4 लेन बनेबाक प्रस्ताव स्वीकृत कऽ लेलक अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अध्यक्षता मे आइ भेल केंद्रीय कैबिनेटक बैसार मे एहि संबंध मे प्रस्ताव पारित कयल गेल। करीब 82 किलोमीटर पैघ एहि हाईवेक निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड मे कयल जायत। एहि लेल 3,590 करोड़ टाका सँ बेसी राशि स्वीकृत कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि वास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। आइ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के हुनक पुण्यतिथिक अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुपौल जिलाक बलुआ बाजार मे हुनक प्रतिमाक अनावरण कयलनि आ पूर्व मुख्यमंत्री के श्रद्धांजलि देलनि। एकर बाद मुख्यमंत्री सुपौल जिलाक छातापुर प्रखंडक चैनपुर मे निर्माणाधीन कोशी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजनाक स्थल निरीक्षण कयलनि आ अधिकारी सभक संग समीक्षा बैसार सेहो कयलनि। एहि क्रम मे ओ परियोजनाक काज गुणवत्तापूर्ण ढंग सँ समय पर पूरा करबाक निर्देश देलनि। पेपर लीक मामिलाक विरुद्ध आंदोलन कऽ रहल छात्र लोकनि पर लाठीचार्ज आ फायरिंगक विरोध मे राष्ट्रीय जनता दल आइ पटना मे लोक भवन मार्च निकाललक। पार्टीक वरिष्ठ नेता आ विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादवक नेतृत्व मे गांधी मैदानक JP गोलंबर सँ मार्च आगू बढ़ैत डाक बंगला पहुँचल। जुलूस के आयकर गोलंबर लग आगू बढ़य सँ रोकल गेल। एहि क्रम मे प्रदर्शनकारी आ पुलिसक मध्य थोड़ बहुत धक्का मुक्की सेहो भेल। प्रशासन एहतियातक रूप में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आ आनो नेता के हिरासत में लऽ लेलक। बाद में हिनका लोकन के छोड़ी देल गेल। श्री यादव पत्रकार लोकन के जनौलनि जे हुनक मार्च लोक भवन धरि छल मुदा बीचहि बाट में मार्च के रोकि देल गेल। पटनाक ज्ञान भवन मे आइ सँ 5 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित कयल जा रहल अछि। युवा रोजगार आ कौशल विकास विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशनक दिस सँ आयोजित एहि मेला मे 20,000 सँ बेसी युवा लोकनि के रोजगार देबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। मेला मे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस आ रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रक प्रतिष्ठित कंपनी सब भाग लऽ रहल अछि। रोजगार मेला सँ संबंधित जनतब लेल टोल फ्री नंबर 1800-29656566 पर संपर्क कयल जा सकैत अछि। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनक ठहराव आइ सँ समस्तीपुरक कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू भऽ गेल। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ट्रेन के हरियर झंडी देखा कऽ आगा लेल विदा कयलनि। एहि अवसर पर समस्तीपुरक सांसद शाम्भवी चौधरी समेत रेलवेक अधिकारी लोक

0: कन उपस्थित छलाह। दरभंगा जिला के कीरतपुरक जक्सो जमालपुर में जल्दी ये उप डाकघर काज कर लागत। एकर अतिरिक्त जिला के बैरमपुर में सेहो उप डाकघर खोलबाक लेल प्रयास कयल जा रहल अछि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आ डाक विभागक अधिकारी लोकनि संग भेल बैसार में ई जनतब देल गेल। भागलपुर में काल्हि सँ शुरू भेल दू दिवसीय बिहुला विषहरी उत्सव आइ समाप्त भऽ रहल अछि। कला आ संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासनक संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में लोकगाथा, शास्त्रीय संगीत आ मंजूषा कलाक अतिरिक्त कतेको लोक लुभावन कार्यक्रम सँ लोक आनंदित भेलाह। दक्षिण पश्चिम मानसूनक कम दबाव वाला पट्टी ट्रफ रेखा पटनाक दिग्घा सँ गुजरि रहल अछि। एकर प्रभाव सँ प्रदेशक दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य भाग में बरखाक परिस्थिति बनल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर। इसके अंतर्गत आज सुनिए घर आंगन।

0: घर आंगन में सब श्रोता लोकन के स्वागतक संग मुनिक नमस्कार संगे लाल बहिन अहू के नमस्कार
1: नमस्कार मुनि बहिन आ संगे हमरो दिस आधी आबादी बहिन लोकन के कार्यक्रम घर आंगन में नमस्कार आ संग स्वागत से हो छन।
0: हाँ लाल बहिन अहाँ के घर में जे देखलो इतिक सुंदर फोटो छले जे मोन होय छले जे एकटक देखते रही इतिक सुंदर एकदम तरीका से सही सटीक कह सकै छी उ फोटो जे खींचल गेल छले जे एकदम प्राकृतिक जे मनोरम दृश्य अछि बुझि पड़ै छले केहन जे कि आँखि से सदह देख रहल छी बहुत निक लागल लाल बहिन फोटो।
1: ठीक है अहाँ कहलहुँ हैं मोनी बहिन कोनो कोनो चीज अहाँ के कोनो फोटो चित्र अहाँ के आँखि में गड़ि जाएत ओ अहाँ के एहन जचत जे अहाँ के हैत कि ओकरा एकटक निहारते रही। अहाँ ठीके कहलहुँ हैं आ बहुत गोटा के फोटो के बड्ड शौखो होइ छन ने आ अहाँ जे ई बात कहलहुँ तऽ हमरा मोन पड़ि गेल जे आइ 19 अगस्त अइ आइ विश्व फोटोग्राफी दिवस सेहो मनाओल जाइत अछि।
0: अच्छा
1: ओना तऽ बड़ गोटे के रुचि कहबे कैलमे एहिमे रहैत छनि आ कतेक गोटा के देखबनि घरमे तो अपन धियापुता अपन माँ पिताजी
0: फोटो
1: हाँ पूर्वज सबके तऽ रखबे करता घरमे जे जकरा अपना सब कहै छी जे रूम बैसै छी ड्रॉइंग रूम कहियो मुदा कतेक गोटा के देखबनि प्रकृति के चित्र सेहो देखबनि ओहिमे जतय घूमल लए जेतै खास कर नवयुवक लोकन के देखै छियनि जे कतौ घूमै टहलै लए जे जेता तऽ ओतऽ सँ ओ अन्ता फोटो आ ओ एतेक सुन्दर फोटो मोनी बहिन अहाँ जेना कहलहुँ हैं जे अहाँके ओ प्राकृतिक मनोरम चित्र हैत कि जे एकटक ओकरा निहारित रहै
0: एकदम अपन बैसकीमे जँ कोनो अपन सबके कुटुम्ब आबै छथिन देखै छथिन तऽ कहै छथिन कतेक सुन्दर ई
1: सबके नीक चीज तऽ सबके नीक लगै छै।
0: हाँ हाँ एकदम छै कि आइ जे विश्व फोटोग्राफी दिवस अपना सब मना रहल छी लाल बहिन तऽ एकर मुख्य उद्देश्य अछि फोटोग्राफीक कला इतिहास आ समाजमे एकर जे मनेबाक जे महत्व अछि एकर ओकरा प्रति जतेक लोक सब छथिन हुनका सब गोटेके जागरूक करी।
1: निश्चित रूपसँ ठीक है अहाँ कहलहुँ
0: आ फोटोग्राफीके माध्यमसँ अपन यादके महत्वपूर्ण घटना सबके सुरक्षित राखल जाइत अछि।
1: ई तऽ अहाँ बड्ड नीक अहाँ मोनी बहिन देखियौ अपना सबके आप तऽ लोक मने एकरा कनि विशेष मने विस्तार पूर्वक कहियौ लेकिन अदो कालसँ पहिनहो सँ अपना सबके याद आप तऽ मोबाइल घर घर हाथमे सबके भऽ गेलैए कैमरे छलै तऽ अपना सब रील भरबै छलहुँ हैं आ मुड़न उपनयन बच्चाके जन्म होइ छलै छठिहार जन्मदिन होइ छलैए तऽ एकटा यादगार बनि जाइ छलै ने आ जहिया नहि मोन लागत चाहे कोनो हैत तो फोटो के जन उठा कर देखबे एल्बम के निकालब तो हैत कि ओकरा निहारते रही
0: कतेक मन प्रसन्न होइत अछि पुरनका फोटो
1: मन प्रसन्न भ जाइ छै होइ छै कि जे देखते रहै हमरा तऽ कए दिन अपने एहन होइए मुनि बहिन अहाँके कहब जे कए दिन नहि मोन लागत नहि तऽ दुपहरिया मे हैत कि कनि एल्बम सब कनि फोटो निकालि कऽ देखिए धियापुता के छोट छोट फोटो माए बाबूजी के देखियनि।

0: किनको याद आबि जाइए तऽ कहबाके तात्पर्य जहन ओ रखने छी तहन ने देखब।
1: एकदम सही कहलहुँ लाल बहिन, जेना अपना सब सब छोट छोट सँ नमहर नमहर चीज जतेक पाबनि तिहार बियाह दान मुरन जने होइए
0: या मधुश्रावणी भेल हँ
1: हँ, जखन नेनपनमे धियापुता इसकुल जाइए ओकरो फोटो अपना सब यादक रूपमे सुरक्षित राखि एकरा राखैत छी, सहेज कऽ राखैत छी। आ आब तऽ देखिए रहल छी जेकि अपना सब आधुनिक समयमे छी, ई आधुनिक समयमे मोबाइल कैमरा डिजिटल तकनीक फोटोग्राफीके लेल बहुत सुलभ बना देल गेल अछि आ बहुत आसानीसँ सब गोटे फोटो एक एक चीजके सहेज कऽ राखि सकैत छथि। आ एहिसँ देखै छी जे कि एकटा रोजगार सेहो बैठ रहल
0: यऽ जिनका रुचि छनि तऽ ओहिसँ तऽ हुनका ओहिसँ रोजगारके माध्यमसँ बढ़िआँ
1: आ जिनका खूब नीकसँ खींचऽ आबै छनि एकटा सही तरीका जे कहि सकै छी तकनीकी रूपसँ।
0: आइ देखियौ फोटो केना आइ ब्याह दान होइए तऽ केना अपना सब लै छी तऽ कतेक ओहिसँ तऽ कमा लै छथि ने जिनका नीक फोटोग्राफी करबै छथि देखै छियै आब ओकरमे तऽ महत्वो कतेक छै। आइ काल्हि तऽ आब कोनो काजमे ब्याह दान तऽ अहाँ बहुत पैघ उत्सव कहलहुँ, छोटो छोट काजमे आइ काल्हि देखै छियै अपनासभ जे एकर महत्वपूर्ण भूमिका होइ छै, सभगोटा चाहै छथि जे हमर एकर फोटोग्राफी कराबी। तऽ कहबाक तात्पर्य इएह अइ तऽ आब देखियौ गपशप फेर अइ जे करब मुदा पहिने किछु सन्देश अइ से पहिने सुनि लै छी फेर आगू गपशप करब।
2: मैं हूं अमिताभ बच्चन, आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: तो लाल बहिन फिर से अपना सब बहिन सबके श्रोता लोकनिक स्वागत करै छियनि घर आंगन में। ई घर आंगन छै अपन सबके बहिने से चमकैत रहैत अछि, ओ जखन बहिन सब पायल पहिन कऽ छमछम करैत रहै छथिन, काज सब जे दौड़ दौड़ कऽ करैत रहै छथिन एकदम उत्साह सँ तऽ खूब मोन लागैत अछि,
0: ओहिसँ तऽ घर आंगन शोभा अछि
1: एकदम। तऽ आइ जे छै चर्चा अपना सब करबे करै छलहुँ जे विश्व फोटोग्राफी दिवस मना रहल छी, एकरा सङ्गे एकटा विशेष दिन आओर अछि। आइ जे अछि महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास के जयंती सेहो मना रहल छी। हिनकर जन्म जे छै से सावन मासक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि कऽ मानल जाइत अछि
0: जे आइए
1: ओ रामचरित मानस के जे छै रचना कऽ भगवान श्री राम के आदर्श आ भक्ति के संदेश जन जन तक पहुँचेलथि। ओ समाज में भक्ति सदाचार मर्यादा आ मानवता के संदेश देलथि। हुनकर रचना अखनो भारतीय संस्कृति आ साहित्यक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
0: ठीक है अहाँ कहलहुँ, तऽ देखियौ अपनासभ इहो आइ चर्चा केलहुँ आ आब की विचार अइ मोनी बहिन, पहिने किछु सन्देश जे सुनि लै छी तहन
1: विश्वनाथके आनन्द लेब,
0: तऽ सुनी हमरा लोकनि सन्देश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन, आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि देखिए सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन, आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है, कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी

0: फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो लाल बहिन सने सेहो सुनलो सने से पहले गीतनाथ के आनंद सेहो लेलो अपना सब तो किएक ने आप अपना सब श्रोता लोकन की जे बुध दिन प्रायोजित कार्यक्रम लोग आबे छी पारा मेडिकल है पारस
3: से सुनवा दे छियन तो सुनी हमरा लोकन प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: पैरा मेडिकल है पारस इसके एक और एपिसोड के साथ राजेश आप सबों के घर आंगन में आ गया बातें करने, युवा साथियों से, उनके माता पिता से, छोटे छोटे भाई बहनों से जिन्हें कल इंटरमीडिएट पास करना है, फिर अपने करियर के बारे में सोचना है। जी हाँ, हम बातें करते हैं इस कार्यक्रम में कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ सेक्टर में आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, निजी क्षेत्र में भी जा सकते हैं, यानी प्रचुरता ही प्रचुरता है, बशर्ते कि आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, अच्छे से, जी हाँ, लगन से आपने पढ़ाई की होगी और सब्जेक्ट्स को समझते होंगे। क्योंकि आम तौर पर अभी ऐसा देखा जा रहा है कि क्षेत्र में जितनी वैकेंसीज आती हैं, एप्लीकेंट जो है ना, उम्मीदवार, उससे करीब करीब थोड़ा कम ही रहते हैं। वैसी स्थिति में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो नौकरी मिलना अच्छा हो सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, और जो पढ़ेगा वो तो जीतेगा ही, ये शर्तिया है। और जो अपने मन के अनुसार पढ़ेगा, टेक्निकल पढ़ाई करेगा, विशेषज्ञता हासिल करेगा, वो तो निश्चित ही जीतेगा करियर में और रोजगार भी मिलेगा। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हाँ, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के बस स्टैंड रोड, अब पुराना बस स्टैंड हो गया है, लेकिन चक्कनपुर पुलिस स्टेशन यही है, उसके ठीक सामने ये संस्थान है। श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है, इसी ग्रुप का ये संस्थान है। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर आपके पास करियर से रिलेटेड कोई सवाल है या कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हाँ, तो आप इस पर जानकारियां ले सकते हैं। नंबर मैं बता रहा हूं, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, हाँ, डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत होगी और उनसे आप सारे समाधान ले सकते हैं। नंबर नोट करें, 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं, अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं। डिग्री लेकर सिर्फ नौकरी लेना आपका, हाँ, उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आप एक सफल इंसान होने चाहिए। और अगर जो पैरामेडिकल की पढ़ाई कर ली, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग, या इसी तरीके से और भी कोई कोर्स कर लिया आपने, फिजियोथेरेपी में मसलन कर लिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपने मसलन कर लिया, तो आपको सेवा का मौका भी मिलेगा, साथ में नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ मिलेगा। नंबर एक बार फिर, जो बहुत कॉमन है, आपको बता दें, 9155558888, 9155558888। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी को हम बुलाएं, उससे पहले एक दो बातें और कर लेना चाहते हैं। वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और सफल भी हुए, हाँ, नीट में उनका रोल नंबर भी आया, लेकिन किसी कारण से सरकारी कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं जा सकते अर्थाभाव के कारण, राजेश भी नहीं जा सकता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो उनसे कहते हैं कि रास्ते बंद नहीं हो जाते, रास्ते खुल जाते हैं। आप हेल्थ सेक्टर में ही जाना चाहते थे ना, आप हेल्थ सेक्टर में ही जाइए, और इसी नंबर पर 9155555

0: 8888 या 9162413233 इस नंबर पर बात कर लीजिए। जहां तक पैसे की समस्या है तो बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिस पर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पैसे मिलते हैं 4 लाख रुपए तक, आप वो लोन लेकर और बहुत ही कम ब्याज पर चुकाना पड़ता है, वो भी शायद हमें जहां तक पता है नौकरी मिलने के बाद, तो उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए आज कुछ जानकारियां लेते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से और आपके रास्ते, आपके सोचने के रास्ते को और आसान करते हैं, आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, किस मुद्दे पर बात करनी है?
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
0: जानकारियों का ही अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी।
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं, ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है, ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
0: कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपके लिए लगातार इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए जो किए हैं खास करके, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप बात कर सकते हैं, नंबर है 9155558888 और 9162413233। जी हाँ, इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से। एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही है कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है,

0: इसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
0: सही।
1: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
0: सही सही सही बात।
1: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
0: सही बात है।
1: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
0: बिल्कुल नहीं।
1: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। ये जानकारियां हमने सिर्फ दिलवाई कि आपको चुनने में, करियर चुनने में, कोर्सेज चुनने में आपको मदद की जा सके। आप फिजियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी, आप फिजियोथेरेपी, हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, नर्सिंग या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बीएससी नर्सिंग या पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी, किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करके अपने लिए एक मुकम्मल जहान प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे में हमारी ये बातें आपके लिए शायद मददगार होंगी। आते आते वर्षों गुजर गए, 10 साल से ज़्यादा हो गया इस प्रोग्राम को सुनकर बहुतों ने ये कोर्स ऑप्ट किया और आज अपने करियर में ऊंचाइयों पर हैं। हम बार बार कहते हैं जो पढ़ेगा, खास करके टेक्निकल पढ़ाई करेगा, वो जीतेगा ही, जीतना निश्चित है, ऐसा हम समझते हैं। आगे उसकी पढ़ाई और वो जाने। बहरहाल अधिक जानकारियां चाहिए तो 9162413233 ये नंबर है, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से। थैंक यू कहते हैं श्रीराज ग्रुप को, श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस लेकर आने का मौका दिया। अगर कुछ छूट गया होगा तो एक कार्यक्रम रोजगार भी है, आप सुन सकते हैं रविवार के दिन। फिलहाल राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्स

0: nursing training and paramedical institute.
1: श्रोता लोकन अखन अपना सब सुनी छलु लाल बहिन
2: प्रायोजित
1: कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस खुद नीक नीक जानकारी भेटल श्रोता लोकन ऐसे बहुत लाभान्वित हेता आप देखियो ना समय से लक्ष्य आ गेलै छै कि घर आंगन समेटी अपना सब आ कार्यक्रम खेती गृहस्थी में चली आ किसान भाई के स्वागत करै छियनि
2: तऽ हमरो तरफ से किसान भाई लोकन के स्वागत छन नमस्कार छन आ देखियो मोनी बहिन किसान भाई लोकन तऽ किछु ने किछु काज करते रहै छथि सदैत लागल रहै छथि कोनो ने कोनो काज में तऽ आइ जे अपना सब गप करब ओइ जे फूल कोबी के उन्नत खेती
1: ओना तऽ सब खेती किसान भाई उन्नत ढंग से आधुनिक ढंग से करै छथिन आ ओहो में जे छै आप जे आधुनिक ढंग से किसान भाई खेती करै छथिन तऽ जैविक खाद के बेसी से बेसी व्यवहार सेहो करै छथिन
2: आ उन्नत किस्म जहन लगबै छथिन तऽ ओहिसँ से उत्पादन बढ़िआँ होइ छनि जैविक खेती सँ सेहो ओकर जमीन जे छै से ओहो उपजाउ होइए उसर नहि होइए तऽ ओहो एकटा लाभ भेलै
1: फसल चक्र अपनाबैत छथि माटिक जाँच करबाबै सब चीज आब जेना बीया के जे अछि बीजोपचार
2: करै छथि
1: तऽ आब देखब जे बहुत एहि दिस अपन सबके किसान भाई एकदम जागरूक भऽ गेल
2: आ एकदम ओ सब बात आब बुझि गेलखिन हँ ओहि हिसाबसँ करै छथि तऽ ओहि हिसाबसँ करै छथि तऽ मेहनत कम होइ छनि खर्चा कम होइ छनि आ उत्पादन बढ़िआँ होइ छनि आ जखन उत्पादन जहन बढ़िआँ होइ छनि तऽ मोन प्रसन्न रहै छनि आ देखियौ फूलकोबीके माँग तऽ बाजारमे सब दिन बनल रहैए कि ओ तऽ सबके पसिन होइ छनि आ कोनो अपना सबके विवाह दान करू किछु काज करू तऽ ओ एकटा प्रमुख तरकारी रहैए आलू कोबीके तरकारी की रहैए ने
1: ओहिना अपना सब ओतऽ पाहुन आबै छथिन तऽ अपना सब एकटा आलू कोबीके तरकारी कोबीके तरुआ सब चीज आवश्यक रहैत अछि एहिमे आ सुन्दर सेहो लागैत
2: अछि
1: तऽ लाल बहिन कहब अपन किसान भाई के जे कोनो फसिल के उन्नत किस्म जे होइत अछि ओ बहुत आवश्यक होइत अछि
2: जखन लगाबी तऽ उन्नत प्रभेद लगाबी
1: आ सही तरीका सँ पटौनी संतुलित पोषण आ कीट रोग जे अछि कीट रोग प्रबंधन अपना के किसान भाई नीक उपजा प्राप्त कयल जा सकैत अछि
2: ठीक है कहलहुँ तऽ एहि तरहे जे ध्यान दऽ कऽ करता तखन
1: आ ई जे फूलकोबीके अपना सब चर्चा कऽ रहल छी किसान भाई तऽ ठंडा आ नम जलवायु जे छै से फूलकोबी के लेल उपयुक्त होइत अछि दोमट या बलुआ दोमट जाहिमे जतऽ जे खेत से नीक सँ पानि निकासी वाला माटि हुए
2: पानि जमा नहि होता
1: ओ सबसँ नीक मानल जाइत अछि आ माटिक जे पी एच मान अछि लाल बहिन ओ लगभग 5.5 से 7 उपयुक्त मानल गेल अछि एहि खेती के लेल
2: जे खूब फूलकोबी के लेल उपयुक्त अछि
1: आ अपन क्षेत्रक आ मौसम के अनुसार किस्मक जे छै किसान भाई चयन करबा के चाहे जे कोन किस्म लागत ओ अपन क्षेत्रक हिसाब से
2: चुन लेता ओ
1: आ किसान भाई स्वस्थ आ प्रमाणित बीयाक व्यवहार करी बीयाक बाग नीक से तैयार नर्सरी में करबा के चाहे तकर बाद खेती के लेल लगेबा के चाहे जखन नीक से बीया तैयार भ जाइए अपन सब नर्सरी में
2: तखन
1: तक ओ उन्नत रहैए बढ़िया तरीका से ओहिमे कीट व्याधि के लागे की कम संभावना रहैए
2: रोग रोधी भ जाइए
1: आ लगभग 4 से 6 सप्ताह के जे भ जाइ छै स्वस्थ पौध के खेत में किसान भाई रोपनी कऽ सकैत छथिन रोपनी जे छै से साँझक समय में करनाय नीक होइत अछि ओना तऽ ई सब गप किसान भाई अपन बुझिते छथिन आ जखन रोपनी करै छथिन ओकर तुरंत बाद कनी हल्लुक पटौनी अवश्य करबाक चाही
2: ठीक है हाँ कहलहुँ आ सङ्गे जखन खेतक ओरियान करी तैयारी करी तऽ खेतक माटिके से भुरभुरा कऽ ली नीक सरल गोबरक खाद कम्पोस्ट मिलाबीमे आ रासायनिक उर्वरकके मात्रा माटिक परीक्षण आ स्थानीय अनुशंसाक अनुसार करी मने जहन ओकरा माटिके जाँच करा ली तखने ओकर उपयोग करबाक चाही ओना नहि करबाक चाही
1: आ सेहो कहब जे समय देख रहल छी अखन जे कतेक बदलि रहल यऽ कखनो रौद कखनो मेघ तऽ पटौनीमे ध्यान राखब जे मौसम आ माटिक अनुसार सामान्यतः जे छै से 7 से 10 दिनक अंतराल पर पटौनी करी आ खेतमे पानि जमा नहि हुए एकर ध्यान जरूर से राखब
2: ई तऽ मोनी बहन पहिनेहे कहने रहै जे एहन जमीनमे करी जतऽ माटि पानि नहि जमै ओ देखियौ पानि तऽ ओना पहिने ई जमै छलै जहन बरखा होइ छलै आब तऽ बरखे नहि होइए तऽ पानि की जमत आ जहन पटौनी करै छी तऽ अपना हिसाबसँ लोक पटौनी करै छथि हल्लुक पटौनी करै छथि
1: आ फूलकोबीमे जे छै कीट व्याधि जेना माहू भऽ गेल खाय पत्ता खायवला कीट भऽ गेल मिल्ड्यू भऽ गेल एहन रोग लागैत अछि तऽ नियमित खेतके निगरानी करैके छै आ संक्रमित पौध जखने देखबामे आबे
2: तखन फेंक दी
1: ओकरा नष्ट कऽ दी आ उचित फसिल चक्र अपनेनाइ बड़ आवश्यक अछि
2: तऽ एहि तरहे

0: ध्यान रखा करब तऽ निश्चित रूपसँ से उन्नत किस्म लगायब तऽ आमदनी बढ़िआँ हैत आ बाजार भाव तऽ बने रहै छनि तऽ किसान भाइ लोकनिके मन प्रसन्न रहत।
1: प्रसन्न रहबाक लेल एकटा मनोरञ्जन सेहो बड़ आवश्यक छै,
0: ओ तऽ सबसँ बेसी आवश्यक छै। खाली काज करैमे थोड़े मन लगै छै, सङ्ग गीत सङ्गीत होइत रहै छै तखने मन लगै छै। किसान भाइ लोकनिके सुनबा दै छनि एकटा लोकगीत।

0: खूब झूमैत हेतै
1: आशा करै छी जे खूब नीक लागल हेतन आ जहन गीत संगीत नीक सब होइ छै तऽ आर ऊर्जावान भऽ जाइ छथि काज करैमे आओर बेसी मोन लगै छै ने
0: तऽ आब किसान भाई समय भऽ गेल अछि कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचनाके तऽ वाचन आ संकलन छनि सविता कुमारीके प्रस्तुति असद दाउदके तऽ सुनित छी
1: आजुक कृषि गतिविधिके सङ्ग हम उपस्थित छी लाल बहिन नव नव जानकारीक सङ्ग किसान भाइ बहिनके लेल एकटा आवश्यक गप छनि जे पटौनीके वास्ते डीजल अनुदानके लाभ किसान लोकनिके बैंक खातामे देबाक व्यवस्था कयल गेलनि हँ आवेदन प्रारम्भके तिथि अछि 17/8/2026 सँ शुरू कयल गेल अछि किसान भाइ लोकनि एहि योजनाके लाभ लेबऽ चाहैत छी तऽ आवेदन कऽ लिअ शारदीय खरीफ फसिलके डीजल चालित पम्प सेटसँ पटौनी करबाक लेल सरकार द्वारा किसानके डीजल अनुदान देबाक व्यवस्था कयल गेलनि अछि डीजल पम्प सेटसँ पटौनी हेतु 75 रुपैआ प्रति लीटरके दरसँ अनुदान देल जा रहल अछि एक एकड़के लेल 10 लीटर डीजलके आवश्यकताके आलोकमे शारदीय खरीफ फसिलके डीजल पम्प सेटसँ पटौनी करबाक लेल कीनल गेल डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपैआके दरसँ अनुदान देल जायत धानक बिचड़ा ओ जूट फसिलके बेसीसँ बेसी 2 टा पटौनीके लेल 1500 रुपैआ प्रति एकड़ देल जायत किसान भाइ लोकनि ध्यानसँ सुनी खरीफ फसलमे धान मकई ओ आन शारदीय खरीफ फसलक अंतर्गत दलहनी तिलहनी आ मौसमी तरकारी औषधीय ओ सुगंधित पौधके बेसीसँ बेसी 3 पटौनीके लेल 2250 रुपैआ प्रति एकड़ देल जायत एतबे नहि किसान भाइ लोकनि प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़के लेल डीजल अनुदान देल जायत ई लाभ परिवारके एक सदस्यके मात्र देल जेतनि डीजल अनुदानसँ खरीफ फसिलके पटौनीके लाभ सभ श्रेणीके कृषक रैयत गैर रैयतके देल जेतनि रैयत किसानके आवेदन करबा काल लगान रसीद अपलोड करब अनिवार्य हेतनि ओहन किसान जे दोसरके जमीन पर खेती करैत छथि गैर रैयत हुनका प्रमाणित सत्यापित करबाक लेल संबंधित वार्ड सदस्य वार्ड पार्षद मुखिया सरपंच पंचायत समितिमे सँ कोनो एक सदस्य ओ कृषि समन्वयकके द्वारा पहचान कयल जायतनि असत्यापित करबा काल ई ध्यान राखल जायत कि वास्तविक खेती करैवला जोतदारके अनुदानक लाभ भेटनि एहि लेल खेत पर लाभार्थी किसानके सङ्ग जियो टैगिंग फोटो खींच कऽ अपलोड कयल जायत एतबे नहि किसान भाइ लोकनि केवल ओहन किसान एहि योजनाके वास्ते आवेदन करता जे वास्तवमे डीजलके उपयोग कऽ पटौनी कऽ रहल छथि ओहनेके करबाक चाही डीजलके कीन कऽ वास्तवमे पटौनीके लेल उपयोग कयल गेल अछि के जाँच सम्बन्धित कृषि समन्वयक द्वारा कयल जायत अधिकृत पेट्रोल पम्पसँ डीजल किनबाक उपरान्त डिजिटल पावती रसीद डिजिटल वाउचर जाहिमे किसानके 13 अंकके पंजीकरण संख्याके अंतिम 10 अंक अंकित होबय से मान्य होयत अगर कोनो कारणवश पेट्रोल पम्प द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहि कयल जायत होबय तऽ किसान स्वयं पंजीकरणके अंतिम 10 अंक पर अंकित कऽ हस्ताक्षर करता ओ आवेदनके सङ्ग अपलोड करता सत्यापनके समय डीजल क्रयके मूल्य अभिश्रव समन्वयकके देव अनिवार्य होयत राज्यके बाहर अवस्थित पेट्रोल पम्पसँ कीनल गेल डीजल पर अनुदान नहि देल जायत जे बाहरसँ डीजल अगर किनता राज्यके बाहरसँ तऽ ओहिपर अनुदान नहि देल जेतनि किसान एक बेरमे 1 टा पटौनीके लेल आवेदन कऽ सकैत छथि डीजल पावती रसीदपर किसानके पूरा हस्ताक्षर ओ अंगूठाके निशान अनिवार्य अछि डीजल पावती रसीदपर अंगूठा

0: रेखा के निशान देवाक स्थिति मे ओहि पर कृषि समन्वय के सत्यापन करबा सँ किसान भाई आवेदन करैत आ ई दिनांक 30/10/2026 तक ई पटौनी के वास्ते किनल गेल डीजल के लेल ई मान्य रहत, जकर तिथि 30/10/2026 से याद राखब। एहि योजना के लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसान के देल जेतन। छोट छोट गलती के कारण आवेदन अस्वीकृत होबा पर किसान के फेर से आवेदन कऽ सकैत छथि। किसान भाई बहिन लोकनि, कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट के देल गेल लिंक पर डीजल अनुदान के वास्ते आवेदन कऽ सकैत छथि ओ आ एहि योजना सँ लाभ उठा सकैत छथि। आ एकटा महत्वपूर्ण गप अछि जे खुरपका आ मुँहपक्का जे बीमारी अछि, जे किसान भाई लोकनि पशु अपना खुट्टा पर रखने छथि, ओ लोकनि आशा करै छी जे ओकर टीका अपन पशु के निश्चित रूप सँ लगवा लेने हेता। आ जे केओ अगर छूटल छथि तो निश्चित रूप सँ खुरपक्का मुँहपक्का के टीका अपन पशु के लगा कऽ अपन पशु के सुरक्षित कऽ लेत। बस आ एतबे।
1: किसान भाई अखन अपना सब सुनित छलहुँ हैं कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना वाचना संकलन छलिन सविता कुमारी के प्रस्तुति असद दाऊद के। तो लाल बहिन एतेक नीक नीक जानकारी देलिए, किसान भाई के खूब लाभ भेटते इन ऐ सब जानकारी से किसान भाई के।
0: हाँ, लेकिन जागरूक भ के एकर लाभ उठाबैत
1: सबटा जानकारी हाँ। एक ठाम अहाँ साझा करै छिए तो बहुत ऐसे लाभ होइ छे किसान भाई के। आ संग संग मनोरंजन दिस सेहो चलै छै।
0: मनोरंजन त देखियो ओ त बहुत आवश्यक छै अपन प्रोग्राम में। आ कोनो काज में अपनो सब कोनो काज करै छी थाक जाइ छी तऽ होइया कि कनी गीत नाद के आनंद ली, तहने काज में फेर फुर्ती आबैया ने। तऽ अपन किसान भाई लोकनि के फेर सुनबा दै छियनि एकटा सुंदर सन लोकगीत।

0: हाँ एखन स्नेहा झाके स्वरमे हमरा लोकनि महेशवाणी सुने छलहुँ हँ आ आशा करै छी मोनी बहिन जे हमर किसान श्रोता लोकनिके सेहो खूब पसन्द भेल
1: एकदम गीत।
0: आ आप देखियौ पसन्द तऽ हुनका होइ छनि, हुनकर मौसमके जानकारी जहन रहै छनि तऽ हुनका सबके एकदम निश्चिन्त रहै छथि। तऽ मौसम की कहै छै से मोनी बहिन अपन किसान भाई लोकनिके कहि दियौ।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि मौसम विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जे मौसम के जानकारी आयल 23 अगस्त तक के अछि। पूर्वानुमान अवधि में मौसम ज्यादातर शुष्क रहबाक अनुमान अछि, हालांकि किछ स्थान पर एक दू दिन जे छै गरज के संगे बिजली चमकै के आ तेज हवा चलबाक संभावना बनि रहल अछि। आ अधिकतम तापमान जे छै से 30 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना छै। भिनसर के समय में सापेक्ष आर्द्रता भिनसर में 85 से 90% आ दुपहरिया में जे छै 55 से 60% रहबाक संभावना बनि रहल छै। पूर्वानुमान अवधि में मुख्यतः पूर्वा हवा चलत 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से, ई संभावना अछि मौसम के। आ एहि के लेल किसान भाई सब के जे छै से सुझाव देल जा रहल अछि इस समय के लेल, जे कि कम वर्षा के देखैत खरपतवार में बढ़ोतरी भऽ जाइत अछि, समय पर कमौनी निकौनी कऽ एकरा बाद 20 से 30 किलोग्राम जे छै नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के दर से उपरिवेशन करथिन। तना छेदक आ पत्ती लपेटक कीट के नियमित निगरानी करनाय आवश्यक अछि। जँ एकर प्रकोप देखबा मे आबय तऽ दुपहरिया के बाद क्लोरेट्रा नीलिप्रोल 4G दानेदार दवाई के 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव कऽ देथिन। आ एकरा संगे मकई में तना छेदक के प्रकोपक नियमित निगरानी करनाय सेहो आवश्यक अछि। जे प्रभावित पौध अछि मध्य कलिका सूख कऽ मुरझा जाइत अछि, तऽ किसान भाई एकर ध्यान राखथिन।
0: आब हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी आब समेटबाक बेर भऽ गेलै, तऽ हमरा लोकनि एकरा समेटी आ किसान भाई लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार मुनि बहिन।
1: नमस्कार लाल बहिन।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक मैसेज, एक कमेंट, एक मीम आपके लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स का मजाक हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो जिंदगी भर का इमोशनल दर्द बन सकता है। साइबर बुलिंग तब होती है जब किसी को ऑनलाइन बार बार ट्रोल किया जाए, धमकाया जाए, जलील किया जाए या फेक अकाउंट के जरिए परेशान किया जाए। सोशल मीडिया हो, गेमिंग हो या मैसेजिंग ऐप, हर जगह जिम्मेदारी जरूरी है। याद रखिए, जो बात आप सामने खड़े होकर नहीं कह सकते उसे ऑनलाइन भी मत लिखिए। Think before you type. Respect before you reply.
1: साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई बिहार विभाग द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। राज्य कैबिनेट ने दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार और मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना समेत 13 प्रस्तावों को दी स्वीकृति। छात्रों के मुद्दे पर राजद ने पटना में निकाला मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, विद्यार्थियों के हित में जारी रहेगा संघर्ष। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा खंड को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। लगभग 82 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड में किया जाएगा। इसके लिए 3,590 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी साझा की।
1: पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजन हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए।
0: राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में सड़क संपर्क को विस्तार देने के लिए बक्सर और भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को पारित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सुहेल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।
2: बक्सर भागलपुर 6-लेन सड़क बनेगा जो फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य सरकार स्वयं अपनी राशि से इसका निर्माण करेगी पीपीपी मोड के अधीन। और इसके लिए इसके आसपास जो बड़े भूखंड है उसका आर्थिक प्रयोजन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को प्राधिकृत किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से बिहार के बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर जिले से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी।
0: कैबिनेट ने एक अन्य फैसले के तहत राज्य में दूध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नस्ल सुधार योजना को मंजूरी दी है। श्री सुहेल ने बताया कि इसे कॉम्फेड के माध्यम से लागू किया जाएगा।
2: एजेंडा डेयरी मत्स्य पशु संसाधन विभाग का है, जिसमें अधिक दूध उत्पादन और पशु में के उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अधीन 63,92,95,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है।
0: मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़े नए अवसर और तकनीकों के विकास के लिए टायो इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 11,000 निजी नलकूप लगाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 35,82,00,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सुपौल जिले के दौरे के क्रम में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री चौधरी ने बलुआ बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के छातापुर प्रखंड के चैनपुर में निर्माणाधीन कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना का स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजना कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक के खिलाफ पिछले दिनों आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज पटना में लोक भवन मार्च निकाला गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में

0: गांधी मैदान के निकट जेपी गोलंबर से मार्च आगे बढ़ता हुआ डाक बंगला चौराहा पहुंचा। आयकर गोलंबर के करीब मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा भारती और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मार्च लोकभवन तक था, लेकिन बीच रास्ते में ही मार्च को रोक दिया गया। उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
1: लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स से ही रोक दिया गया है। जुर्म के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहे और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे।
0: इधर एनडीए नेताओं ने राजद के लोकभवन मार्च को फ्लॉप शो करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सहरावगी ने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर मार्च का ढोंग सबके सामने आ गया है।
2: राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप शो साबित, जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकारता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। यह राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक करियर बचाओ मार्च किया।
0: राज्य में सांप्रदायिक तनाव, हिंसक प्रदर्शन, सड़क जाम और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थितियों से निपटने के लिए सभी जिलों में जिला दंगा रोधी बल DARF और अनुमंडलों में दंगा नियंत्रण इकाई RCU का गठन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने इसकी घोषणा की है। इसके तहत पूरे प्रदेश में DARF की 49 कंपनियां तैनात की जाएंगी। इन कंपनियों को आवागमन और ऑपरेशन के लिए 294 वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय की योजना के अनुसार दंगारोधी दस्ते में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ अश्रु गैस दस्ता, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, चालक और वायरलेस ऑपरेटर भी शामिल होंगे। बल की आवश्यकता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जिलों और क्षेत्रों को A, B और C 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पटना, गया, रोहतास समेत 12 जिले ए श्रेणी में रखे गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कभी घर के अंदर की
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के पलासी मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों की तबीयत खराब होने के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जिलाधिकारी को मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। श्री तिवारी ने कहा कि यह गंभीर मामला है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी हेमचंद्र ने कहा कि इस मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और 3 रसोइयों की सेवा समाप्त कर दी गई है।
7: प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक, चूंकि वो मध्याह्न भोजन के संचालक होते हैं और 3 उस विद्यालय में पदस्थापित 3 रसोइया, जिनका मुख्य रूप से कार्य है कि वो बच्चों को सही रखरखाव में खाना खिलाना, तो 3 रसोइया को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक को

0: निलंबित कर दिया गया।
1: गौरतलब है कि कल दोपहर में बच्चों ने भोजन में नमक की जगह सर्फ जैसा स्वाद होने की शिकायत की थी। इसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पटना के ज्ञान भवन में आज से 5 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित इस मेले में 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मेले में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल समेत विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। रोजगार मेले से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-2965-656 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। इस अवसर पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। दक्षिण पश्चिम मानसून की कम दबाव वाली पट्टी ट्रफ रेखा पटना के दीघा से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा के हिलसा में सबसे अधिक 78.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका बनी हुई है।
2: दिनांक 20 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है।
1: उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश के कारण राज्य से होकर गुजरने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में लाल निशान के अत्यंत करीब पहुंच गया है। गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रेवा घाट, वैशाली के हाजीपुर और गोपालगंज के डुमरिया घाट में लगातार बढ़ रहा है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान को पार कर गया है। वहीं कटिहार के कुर्सेला और किशनगंज के तैयबपुर में भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बिहार के बॉबी कुमार जापान के आइची नागोयो में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय सेपक टाकरा टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार सेपक टाकरा एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है। खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण समेत विभिन्न खेल संघों ने बॉबी कुमार के चयन पर प्रसन्नता जताई है। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में कालीबाग मंदिर परिसर के खाली जगह पर नगर निगम द्वारा पार्क बनाने की घोषणा का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। आज टेंडर प्रक्रिया के दौरान नगर निगम कार्यालय में स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुवन की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ड्रोन के जरिए कीटनाशक और तरल उर्वरक के छिड़काव को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को केसीसी ऋण योजना से बड़े पैमाने पर जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में केंद्र सरकार प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 10 दिवसीय मशरूम और गोपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अरवल के पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थल स्थित तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। राज्य कैबिनेट ने दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार और मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना समेत 13 प्रस्तावों को दी स्वीकृति। छात्रों के मुद्दे पर राजद ने पटना में निकाला मार्च। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा विद्यार्थियों के हित में जारी रहेगा संघर्ष। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कभी घर के अंदर की हिंसा, कभी बाहर की बदसलूकी, अक्सर महिलाएं सोचती हैं मेरी बात कौन सुनेगा।
1: माँ अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो क्या करें?
2: बस याद रखो एक नंबर 181
0: बिहार महिला हेल्पलाइन 181 महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24/7 टोल फ्री सेवा है। मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दहेज प्रताड़ना, मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न जैसी किसी भी समस्या में करें कॉल।
2: हम आपकी बात सुनते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और जरूरत के अनुसार पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, कानूनी सहायता एवं अन्य संबंधित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी चाहिए, जवाब है 181। अब चुप्पी नहीं, जवाब है 181।
0: महिला हेल्पलाइन 181 हर महिला का भरोसेमंद साथी। समाज कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा चिन्हित में जारी।
3: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
4: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
6: अररिया जिले में 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के बीच मनाया गया। मुख्य समारोह नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां प्रभारी मंत्री सह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और विकास तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं विभाजन पीड़ितों की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला गया, जो समाहरणालय परिसर से चांदनी चौक होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा। जिले में प्रशासनिक स्तर पर कई उपलब्धियां सामने आई हैं। पोषण ट्रैकर के सभी सूचकांकों में अररिया पूरे राज्य में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जिले 26वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंचा है। जन शिकायतों के निवारण के लिए पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में नियमित सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। 18 अगस्त को 12 पंचायतों और 11 वार्डों में आयोजित शिविरों में शिकायतों का पंजीकरण किया गया और कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। भारत की जनगणना 2027 के लिए जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के निर्माण को लेकर क्षेत्रीय कर्मियों का प्रशिक्षण भी पूरा किया गया। आदि कर्म योगी अभियान के तहत पलासी प्रखंड की 5 पंचायतों के 10 टोलों में 13 से 15 अगस्त तक जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जनजातीय समुदायों की समस्याएं सुनी गई और पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर जिले, प्रखंड और पंचायत स्तर पर योजनाओं और नीतियों का प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 2,84,258 पेंशनधारियों के खातों में 32,59,00,000 रुपए की राशि भेजी गई। वहीं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित एक बच्ची को विधिवत पश्चिम बंगाल के एक दंपति को गोद दिया गया। मां दलित सविताओं की किशोरियों के लिए चौरी पंचायत में सखी वार्ता, मासिक धर्म स्वच्छता किट वितरण और नेतृत्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं फारबिसगंज में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सम्मान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। जिला नियोजनालय में आयोजित जॉब कैंप में सेल्स ट्रेनिंग के 20 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल अररिया में सोलर मेला आयोजित हुआ। करीब 800 लोगों ने इनमें विधिवत हिस्सा लिया। उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर पैनल, सब्सिडी और ऋण सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने मेला में उपस्थित बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने पर 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त अब बिहार सरकार द्वारा भी 10,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी की घोषणा की गई है। वहीं जिलाधिकारी के नेतृत्व में धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई समीक्षा बैठक में अवशेष धान के विरुद्ध शत

0: प्रतिशत सीएमआर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान शुरुआत की गई, जो कल तक चलेगा। वहीं 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक सघन एचआईवी एड्स जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई और स्तनपान दिवस का आयोजन किया गया। जिले में पिछले कुछ दिनों से उमस और भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। मानसून कमजोर रहने और बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। श्रावण की तीसरी सोमवारी पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कुर्साकाटा के सुंदरी धाम, मदनपुर के मदनेश्वर शिवधाम, रानीगंज के बसेठी शिव मंदिर और अररिया के माँ खड़गेश्वरी काली मंदिर परिसर स्थित शिवालय में नेपाल समेत विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजते रहे। वहीं कांवरियों के कई जत्थे बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर अररिया के बाजार सजने लगे हैं। रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी शुरू हो गई है। वहीं जन्माष्टमी को लेकर मूर्तिकार भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम तुम भी मरते हैं। फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया। अगला गाना सुनवाते हैं आपको फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से सोनू निगम को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हमको दीवाना कर गया फिल्म का ये गाना जिसे स्वर दिया था सोनू निगम ने। अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म सिर्फ तुमसे, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगर हारक संग हम नीतू। श्रोतागण आजुक कार्यक्रम में जखन हम सब संवेद भ गेलहुँ अछि तऽ एखन सँ लऽ कऽ आधा घंटा धरि हम सब बहुत रास गप करब। गप केलाके बादे एक दूसरक बीच संबंध स्थापित होइत अछि, एक दूसरकें नीक सँ बुझि पबैत छी। जेना ऋतु परिवर्तन के चक्र के बुझऽ मे समय लगैत अछि, ओहिना ऋतु अनुसारे स्वयं के बदलऽ पड़ैत अछि। एखन वर्षा ऋतु मे स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान राखऽ पड़ैत अछि। बरखा अयला सँ गर्मी सँ तऽ त्राण भेटैत अछि, मुदा ओतबे काल जतबा काल बरखा होइत अछि ओकर बाद उमस बढ़ि जाइत अछि। एहन समय मे स्वयं के शांत राखऽ पड़ैत अछि, धैर्य राखऽ पड़ैत अछि। एहन तकनीकी युग मे हाथक बिनल बीयन बड उपयोगी सिद्ध होइत अछि। तखन लागैत अछि जे कतौ सँ प्राण आयल, एहने भाव अबैत अछि। बरखाक फोहिक संग जँ गीतक समावेश भऽ जाय तऽ ऋतुक आनंद दुगुन्ना बढ़ि जाइत अछि। आ जखन गीत नादक हमसब चर्च कऽ लेलहुँ तऽ की विचार, कार्यक्रमक आरंभ एहि भगवती गीत सँ करी। तऽ सुनै छी ई भगवती गीत समवेत स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्ना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
3: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
6: श्रोता लोकन, ऐ संदेश सब पहिने ई भगवती गीत सुनलो संवेद स्वर में। श्रोतागण, गीत नादक प्रति हम सब सदिखन संवेदनशील रहलो एच। गीत नाद हुए आ कि काव्य कृति, ई सब हमरा सबक हृदय के सदिखन लगीच रहल एच। मानव सभ्यताक आदि काल सँ हमरा सबक यह प्रवृत्ति रहल एच। आ तैं काव्य हुए कि गीत रचना, हम सब ओकरा माध्यमे अपन हृदय केर भावना सब व्यक्त करैत रहलूं एच। काव्य केर चर्चा केलूं तो मोन परल जे आई 19 अगस्त एच आ आजुक दिन महाकवि आरसी प्रसाद सिंह केर जयंती छन। 19 अगस्त 1911 ईस्वी के समस्तीपुर जिलाक एरौत गाम में हिनक जन्म भेल छलन। काव्य संग्रह सूर्यमुखी लेल महाकवि आरसी प्रसाद सिंह के 1984 के साहित्य अकादमी पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल छलन। श्रोता लोकनि, आरसी बाबूक जयंती पर जखन हिनक पुण्य स्मरण हम सब कऽ रहल छी, तऽ किएक ने हिनके पर केंद्रित साहित्य सारथिक पूर्व प्रसारित अंक सुनैत छी, ओकर बाद फेर गप करब। तऽ सुनै छी साहित्य सारथी।
7: साहित्य सारथी।
8: लेसल माटिक दीप मातृ मंदिर सँ गेल अन्हार, मातृ गिरा मुख मुसकी पविते सूर्यमुखी भकरार। गमक उठल पूजाक फूल सँ अक्षर केर संसार, मधुर गीत आ हुंकित सँ फूजल सब बन्न केवार।
9: डेरा में लटकल ताला कहि दै छल जे कविवर कतौ गेल छथि आ घुरबा में कते समय लगतनि। नहीं नहीं, ताला में कोनो पुर्जा पुर्जी नहीं रहै छल। ताला सन निर्जीव वस्तु तो नहिए बजै छल, बस ताला टा लटकल रहै छल आ हुनका लग सँ जननिहार चिननिहार ताला देखते बुझि जाय छला जे कविवर कतबा काल में घुरि कऽ अयता अथवा आइ अयता आ कि नहि। ई सुनकर हठात विश्वास नहीं होय, मुदा ठीक ई 16 आना सत्य। तहिया पटना स्थित डेरा में कविवर असगरे रहै छला। हुनका अनुपस्थिति में के कहैत जे कतौ गेल छथि आ कते काल में घुरता, एकर बड़ रोचक निदान वो स्वयं बाहर कयलनि। एहन निदान जे डेरा में लटकल ताला कहि दैक जे कविवर लगे में कतौ गेल छथि आ कनेके काल में घुरि कऽ आबि जेता। ताला इहो जनतब दऽ दे जे कईवर नगरे में छथि मुदा आवास सँ दूर छथि आ घुरबा में अबेर हेतनि। ताला इहो जनतब दऽ दै छल जे कईवर नगर सँ बाहर गेल छथि। असल में बात ई छल जे कईवर डेराक लगे मोहल्ला में कतौ जायथि तऽ एकटा ताला लगा देथि, जो नगर में कतौ दूर जायथि जतौ सँ घुरबा में अबेर हेतनि तऽ डेरा में 2 ताला लगा कऽ बहरायथि, आ जो नगर सँ बाहर जाय थी तो 3।

तीनटा ताला लगा देथिन। आन लोग के तो नहीं, मुदा लगक लोग ताला देखते बुझ जाए जे कैबर के घुरबा में कते समय लगते। एहन नवीन आ रोचक उपाय के निहार कविवर छला महाकवि आरसी प्रसाद सिंह, जे डेरा में भने तीन तीन टा ताला लटकबै छला, मुदा अपन साहित्य महलक केवाड़ के कहियो उठगैबो नहीं कैलनि, कहियो साहित्य यात्रा पलो भर लेल ठमकलनि नहीं, कलम रुकलनि नहीं। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह अपन साहित्य यात्रा छात्र जीवने से आरंभ कऽ देलनि आ जीवनक अंतिम समय धरि अनवरत चलैत रहलनि। नाम छलनि आरसी, मने ऐना दर्पण। साहित्योकें तो समाजक आरसीए कहल जाइत अछि, से हिनक समग्र जीवन साहित्यमय छलनि। हिनक साहित्य आरसी में समाजक सब छवि झकझक नजरि अबैत अछि। आचार विचार, रीति नीति, चिंता चिंतन, प्राचीन गुण गरिमा, नव विमर्श, वैषम्य, कुरीति, विक्षोभ विद्रोह, माटिक ममता, स्वदेश प्रेम, भूभाषाक अभ्युन्नतिक कामना, जागरणक उद्घोष, अनितिक विरुद्ध हुंकार, सब किछु सरसता, सहजता आ स्वाभाविकताक गुण सँ भरल विमल प्रवाह हिनक रचना सब में भेटैत अछि। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह मूलतः छला गीतकार, लिखलनि छंदमुक्त कवितो आ गद्यो, मुदा मैथिली में गीतकारेक रूप में जानल चिन्हल जाय छथि। हिनक अक्षर संसारक परिधि बड़ व्यापक रहलनि। मैथिली हिंदी में लगभग 3 दर्जन सँ बेसी पोथीक अमार लगा देलनि। एकर अतिरिक्त लगभग 4 दर्जन पोथी एहनो अछि जे प्रकाशनक पथ सँ इरोते रहि गेल। मैथिली में 4टा पोथी प्रकाशित छनि, गीत कविता संग्रह माटिक दीप, पूजाक फूल आ सूर्यमुखी। एहि तीनूक अतिरिक्त महाकवि कालिदासक अमर कृति मेघदूतम केर मैथिली अनुवाद प्रकाशित छनि, जे पहिने 1973-74 में मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेल, पछाति 1976 में पुस्तकाकार सेहो भेल। संख्यात्मक दृष्टिसँ आ विधा वैविध्यक दृष्टिसँ हिनक मैथिली कृति हिंदीक तुलनामे कम अवश्य अछि, मुदा प्रभाव परिधि आ विषयक वैविध्यक दृष्टिकोणसँ एकर महत्व कनेको कम नहि अछि। एहिमे समेटल सहेजल गेल चिंतनक व्यापकता आ लय मात्र हृदयकेँ आलोड़िते टा नहि करैत अछि, अतीत आ वर्तमानक रेखांकने टा नहि करैत अछि, अपितु नव ऊर्जा आ उछाह सँ भरैत स्वस्थ सबल समाज ओ राष्ट्र निर्माणक भरोस सेहो भरैत अछि। कवि मानव मन के प्राकृतिक छवि छटा सँ जोड़ैत मातृभूमि आ मातृभाषाक प्रति अपन स्नेह, अपन अनुराग उपस्थित करैत छथि, तऽ एकर उपेक्षाक विरुद्ध हुंकारो करबामे विलम्ब नहि होइ छनि। 1958 में प्रकाशित अपन 29 गोट कविताक पहिले संग्रह माटिक दीप मे कवि आरसी अधिकार शीर्षकक अंतर्गत उद्घोष करै छथि। बैसी कंठ पर क्यो बल जोड़ी स्वर नहीं दाबी सकै अछि, मूंग दररी सदिखन छाती पर मुँह नहीं जाबी सकै अछि, लेब अपन अधिकार आब हम अपन महालक पानी, मांग रहल छी प्रथम आई हम अपन मातृ जनवाणी। महाकवि आरसी दू टूक कहै छथि, चलि नहि सकै अछि आब सवारी हौदा कसिक, ई अदराक मेघ ने मानत रहत बरसिक। 1967 में प्रकाशित अपन 30 गोट कविताक संग्रह पूजाक फूल में कवि गबै छथि, मेघ पड़ै छै बुन्न झरै छै नाचै छै मन मोर रे, कोन प्रिया कर काजर आँखि में आई भरल छै नोर रे। तो जीवन शीर्षक कविता में इहो कहै छथि, रक्त में जे उष्णता उत्साह कोनो कर्म में अछि, तेज वाणी में नयन में दीप्त जे विद्युत बनल अछि, पुरुष में पौरुष बनल नारित्व नारी में कहावे, धर्म प्राणक जे अचल से यह जीवन कण अनल अछि। भावक विविधता महाकवि आरसी प्रसाद सिंहक अन्यतम विशेषता छनि। एकरा

1981 में प्रकाशित काव्य संग्रह सूर्यमुखी में देखल जा सकैत अछि। एहिमे कुल 97 गोट काव्य रचना संकलित अछि। एहिमे 61 गोट रचना के स्वतंत्र शीर्षकक अंतर्गत आ 36 गोट उपशीर्षकक काव्य मुक्तक मुक्तावली शीर्षकक अंतर्गत अछि। एहि पोथी सूर्यमुखी पर हिनका 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान कयल गेलनि। एहिसँ पहिने 1983 में मैथिली अकादमी पटना सँ विद्यापति पुरस्कारो एहि संग्रहकेँ भेट चुकल छल। एहि पोथीमे विविध भावभूमिक गीत कविता गजलक माध्यमे कवि अरुणोदय होइत देखि अनुभव करै छथि। एक नव उष्मा रुधिरमे सुख बुगाहटि भरि रहल अछि आ उगैत सूर्यकेँ प्रणाम करै छथि जे हुनकामे चेतना तरंग उत्पन्न करै छनि। हरसिंगार के निहारैत कवि आरसीकेँ सनातन पुरुष मोन पड़ै छथिन आ शस्य ज्ञान सुनैत कहि उठै छथि, हम एक छी, हमर देश जागल अछि। जन जागरण करबा लेल राष्ट्रगीत गबैत, युवा शक्तिकेँ हाक लगबैत, ललकारा दैत मैथिली मंदिरमे पहुँचि प्रार्थना करै छथि। मैथिली वर देथि जे छथि मैथिली मंदिर पुजारी, माटि ने मिथिलाक छोड़थि बनि रहथि कल्याणकारी। आत्मज्योतिक अनुभव करैत, मनक बात साझी करैत, देश पुरातनक स्मरण करैत, सत्य आ स्वप्नक अंतर फरछबैत, बाढ़िक हकरोस सुनैत कही उठै छथि। फेर चौपट भेल जीवन, फेर उपवन ध्वस्त, भूखमरी सँ फेर जनता त्रस्त अस्तव्यस्त। फेर कोशी धार उमतली गंडकी में ज्वारी, बागमती कमला बलानो पुनि उठली ललकारी। विरोधाभासक अनुभव करैत आगा बढ़ै छथि तऽ आनंदक खुजल द्वारि देख उल्लसित भाव उठै छथि आ ठोर पर गुलाबी गजल मुसुकी उठै छनि। अहाँक आइ कोनो आने रंग देखै छी, बगे अपूर्व किछु विशेष ढंग देखै छी। चमत्कार कहू आइ कोन भेल अछि जगमे, कोनो विलक्षणे ऊर्जा उमंग देखै छी। दोहा दोहन करैत कवि आरसी यथार्थ सँ परिचित करबै छथि। वेतन भत्ता जेना जेना बढ़ल रूप हनुमान, महगी सुरसा तेना तेना बाउल बदन वितान। आ देश समाजक मतिभ्रम सँ व्यथितो होइ छथि। आरसी प्रसाद सिंह हमर स्वप्न सार्थक भेल सनसन संगीत रूपको लिखलनि आ ललित निबंध हमर जीवन संगनीक संग संस्मरण आ आत्मकथा सेहो, मुदा गद्य बड़ थोर लिख सकला। हिंदी जकाँ मैथिलीकेँ कथा आ बाल साहित्य नहि दऽ सकला, मुदा जह देलनि से अक्षय अमूल्य निधि देलनि, व्यवस्थित देलनि। सुव्यवस्थाक आग्रही छला, मुदा से नियति सँ निर्धारित जीवन यात्रामे नहि रहि सकलनि। से नेनपनेसँ शिक्षा ग्रहण करबा लेल बौआइत रहला। प्राथमिक पाठशाला एरौत, रोसरा मिडिल इस्कूल, KEHE हाई इस्कूल समस्तीपुर, जिला इस्कूल दरभंगा, शांति निकेतन बंगाल काशी, बिहार नेशनल कॉलेज पटना, नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ आ TNJ कॉलेज भागलपुर आजीविकोक सह स्थिति रहलनि। किछु दिन कोसी कॉलेज खगड़िया में अध्यापन कयलनि। 1956 में आकाशवाणी इलाहाबाद में सरकारी सेवा में अयला। अगले बरख स्थानांतरित भ लखनऊ चल गेला आ 1958 में नौकरी सँ त्यागपत्र दऽ देलनि। एकर बाद आकाशवाणी लेल अनुबंध पर काज करऽ लगला आ 1965 में ओहो छोड़ि देलनि। जीवन भरि भ्रमणशील रहला। जन्म भेल छलनि मिथिलाक सरैसा क्षेत्रक समस्तीपुर जिलाक एरौत गाम में। ओहि दिन 19 अगस्त 1911 के कृष्णाष्टमी छल, महाभारतक महानायक सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्णक जन्मोत्सव, जे सारथी बनला। आरसी प्रसाद सिंह सेहो सारथी भेला, साहित्य सारथी। इहो शोषण उत्पीड़न जाल के काटि फेकबा लेल कलम भजैत रहला, ताबत धरि जावत जीवन रथक पहिया ठमकि नहि गेलनि।
आरसी प्रसाद सिंह।

0: 15 नवंबर 1996 के एही संसार सँ विदा भऽ गेलाह। कहल जाइत अछि जे हिनक नाम छलनि रामचंद्र प्रसाद सिंह। अंग्रेजी में एकरा संक्षिप्त कऽ कऽ लोक कहनि आरसी बाबू। ई एकरा आरसी कऽ लेलनि। एही प्रसंग आन आन तथ्यक चर्चा सेहो अछि। असलीहत जे किछु रहल होय, हमरा लोकनिक आरसी अपन नाम के पूर्णतः सार्थक केलनि। हिनक साहित्य आरसी में तत्कालीन समाजक छवि छटा तँ अछिए, वर्तमान के भेयारि कऽ देखबा पर एकरो प्रतिबिम्ब भेटत। आ तकरा संग साहित्य आरसी में माने साहित्य दर्पण में आरसी स्वयं माने आरसी बाबू मंद मंद मुस्कियात भेटता। से ताबत जाबत आकाश में सूर्य चंद्रमा आ तारावलीक मुस्की बनल रहत।
1: साहित्य सारथी
0: एहि श्रृंखलाक अंतर्गत आइ हमरा लोकनि सुनलहुँ महाकवि आरसी प्रसाद सिंहक संबंध में। आलेख छल डॉक्टर अमलेन्द्र शेखर पाठक के, प्रस्तुति स्वर राकेश चंद्र नंदन।
2: श्रोतागण, एखन हम सब साहित्य सारथीक पूर्व प्रसारित अंक सुनि रहल छलहुँ, जे केंद्रित छल महाकवि आरसी प्रसाद सिंह पर। आ आब हम सब शब्द विमर्श दिस सेहो बढ़ब, मुदा ओहि सब पहिने ई संदेश।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। आप सभी से निवेदन में करना चाहता हूँ कि देखिए, सांप के काटने को हल्के में आप ना लें। क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में सांप के काटने से 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जो है वो गंवा देते हैं। तो सतर्क रहें और पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। याद रखें, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार। धन्यवाद।
6: ये जानकारी चिकित्सीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, चिंता या प्रश्न के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
2: हम सब कार्यक्रम में शब्द विमर्श दिस बढ़ब, मुदा ऐसा पहिने सुने छी ममता ठाकुर के स्वर में ई कज

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: आप बढ़े छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अबे तेज हौलव, माने बड़ दुबरा गे नै। बड़की काकी के देखलो है जे ए बीच में बड़ हेल गेली है। एकटा शब्द एज हहरब, कतेक गाछ में आम फरल छल मुदा देखते देखते सबटा आम हहर गेल, एकदम से निकन्नन भ गेल। तो अही शब्द विमर्शक संग आब अगला भेंट धरिक लेल आब नीतू के चलबाक आज्ञा दिया। नमस्कार।

अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

0: 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता, केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा

0: कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
1: सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द वे सिटीजंस रिसीव, शेयर एंड रेस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। यू शुड यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट ओनली टू इन्फॉर्म द एंगेज बट ऑल्सो टू लिसन, अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू कंसर्न्स ऑफ द पीपल।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट

0: newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states. also

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण युवा पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है।

0: इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं, जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
1: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हो, उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था। और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीधर मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री के है, एंड 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं, और जिस तरह हम बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो top 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये है कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन, दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं, जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना इम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है, कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजेक्शन जो 18 से 29 साल के बच्चे को, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं, तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करें, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
0: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है, उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है, उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। तो मशीनें काम नहीं कर सकती, और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि, और अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है, वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है, साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी, पहली बार लोन रहे, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर

0: इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन जहाँ बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ही ह्यूमन बींग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीज़ों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
0: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है, तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटीरियल रेडी हो रहा है जो मटीरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जिसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दिस पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडी वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए, वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कॉलो

0: है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा इसको।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खास तौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया,
1: जी
0: जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी गया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कि कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज के लिए, और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपी की वजह से कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपी को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है। तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलोअप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको वो जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते।
1: जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो ट्रेड के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों

0: ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काबू
1: हाँ
0: पाया
1: भाई,
0: जा सकता
1: सिर्फ
0: है।
1: ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो
1: जी
0: ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
1: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफ़ी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफ़ी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपकी बात सही है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, बट उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफ़ी, बैंक्स भी, हर बैंक अपने, देखा गया है अभी, हमें हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट, कि कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफ़ी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे, जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफ़ी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है, या कोई मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोला कि हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में है, तो इसलिए काफ़ी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमिडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www. ये साइबर, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहाँ जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफ़ी फास्टली, और यही कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलेगा।
0: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
1: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है, तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाया तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं। कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है, कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती हैं, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको, आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीज़ें आई हैं, जो बात वहाँ पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
1: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके, जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें, तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई।

0: कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है। तो कोलैबोरेशंस मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि आईटी और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है,
1: जी
0: टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए एक ऐसा मटेरियल बनेगा। और जैसे अश्विन सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोर स्टेप बैंकिंग है, तो अब वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, अब उसको बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी है या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विन जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंड सेट चाहिए। अगर आप उस माइंड सेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए वैसा आपका माइंड सेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्कफोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर एज पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां

0: वहाँ पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और बैंक्स के कई बैंक्स ने टाई अप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली है, बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन, एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, या जिनको उनको लगे कि यस उसके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा
1: बिल्कुल
0: रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का एक ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने हैं।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो
0: हाँ,
1: उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है, और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे, तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतना ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: कृष्ण जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती,
5: प्रस्तुत है लोक माध्यम।
4: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
6: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं, और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, थर्ड एंड फोर्थ लाइन, और 5वां प्रोजेक्ट है

0: मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर साइक तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है।
2: होती रही है।
1: पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश
2: ये मान्यता नहीं है, विश्वास है जिससे हमारा कार्य सफल हो जाता है।

श्रोताओं, ये महीना किसानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि इस दौरान होने वाली मानसूनी वर्षा खेतों में जान ला देती है, यानी कि फसलों को हरा भरा कर देती है। जी हाँ, इस समय बारिश से खेत हरे भरे हो जाते हैं। आपको पता है, फसलों के वृद्धि के लिए ये पानी सबसे जरूरी होता है, खासकर धान और मक्का जैसी खरीफ फसलों के लिए। सावन का पानी अमृत का समान होता है। जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है और पेड़ पौधों में नई जान आ जाता है, जिसे देखकर किसान लोग बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा भाव भरी किसानी गीत।

श्रोताओं, मिथिला की लोक संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ बच्चे के जन्म, शादी, त्यौहार और यहाँ तक कि हर मौसम के लिए खास लोकगीत बने हैं। जैसे चैत्र महीने में चैती गीत, इसी तरह जब तपती गर्मी के बाद जब आसमान में काले बादल घिर आते हैं और सावन की फुहार धरती को भिंगोती है, या मिथिला में ढोलक की थाप और मंजरे की खनक गूंजती है। कजरी सिर्फ एक लोक गीत नहीं बल्कि महिलाओं की उल्लास, सावन की खूबसूरती और गांव में बसी प्राकृतिक सुंदरता की कहानी है। सावन भादों के महीने में जब बारिश की फुहार धरती को भिंगोती है, तब महिलाएं और लड़कियां झूला झूलती हैं और कजरी गीत गाकर सावन का स्वागत करती हैं।

सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्यारा होता है, या फिर ये कहे कि भगवान शिव के आराधना का सबसे पवित्र महीना सावन होता है। ये एक ऐसा महीना है जब देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं। चारों तरफ शिव भक्तों की टोली बोलबम के नारे से सभा बांधते हुए नजर आते रहते हैं। वही लाखों कांवरियों गंगा जल लेकर यात्रा करते हैं, साथ ही भक्त पूजा अर्चना और जलाभिषेक के माध्यम से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन के सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। कुमारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। वही सुहागिन महिलाएं पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। 16 श्रृंगार करती है, हरे रंग के कपड़े पहनती है, हरी चूड़ियां पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती है, साथ ही झूला का आनंद लेती है। इस महीने में भगवान शिव भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। इतना ही नहीं, शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बनते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं,

क्या युवा, सभी वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के शिव भक्ति में लीन होकर कांवड़ यात्रा करते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।

अभी आपने जिन कलाकारों को सुना वो है अरविंद कुमार झा, पार्वती मिश्रा, रागनी कुमारी और शारदा सिन्हा। लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी आपको कैसा लगता है? आप अपना सुझाव एक पत्र के माध्यम से लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 846004। तो अब लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी से मितेश कुमार मिश्रा के साथ आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप लोक माधुरी सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है गीतों के रंग। गीतों के रंग कार्यक्रम में आज सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार तो होना ही था फिल्म का गाना, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा

0: लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth